शुभ सवेरा, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज गुरुवार है। विक्रम संवत 2083 के श्रावण मास की पहली तिथि और शक संवत 1948 के श्रावण मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। इस समय 7:04:40 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, यही कामना है हमारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का, लेकिन उसके पहले आज के दिन की बात। आज है 30 जुलाई, आज से श्रावण मास आरंभ हो रहा है। धरती ने मानो आज हरी चूनर ओढ़ ली है, दिशाएं मेघों की मधुर गर्जना से गूंज रही हैं, पवन में मिट्टी की सूंधी सी सुगंध मिल गई है और वृक्षों की डालियां नवजीवन के उल्लास में झूम उठी हैं। ऋतुओं का राजा नहीं बल्कि भावों का राजा बनकर आता है सावन। श्रोताओं, सावन केवल एक महीना नहीं, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। ये वो समय है जब प्रकृति स्वयं शिव की आराधना में लीन दिखाई देती है। बरसती बूंदे मानो गंगा जल बनकर धरती का अभिषेक करती हैं और हरियाली जीवन में आशा, प्रेम और नव सृजन का संदेश लेकर आती है। सनातन परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया था, तब देवताओं ने उन्हें शीतल जल अर्पित कर उनके कंठ की ज्वाला शांत की थी। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक की परंपरा आरंभ हुई। इस पूरे मास में शिवालयों में ओम नमः शिवाय का पावन मंत्र गूंजता है। कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और श्रद्धालु सोमवार का व्रत रखकर अपने कल्याण की कामना करते हैं। सावन केवल पूजा अर्चना का ही नहीं, लोक जीवन के उत्सव का भी महीना है। पेड़ों में झूले पड़ते हैं, गाँव में मल्हार गूंजती है, महिलाएं मेहंदी रचाती हैं, हरियाली तीज और नागपंचमी जैसे पर्व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, खेतों में लहलहाती फसलें किसान के चेहरे पर नई उम्मीद की मुस्कान बिखेर देती हैं। ये महीना हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की भी प्रेरणा देता है। जिस हरियाली का स्वागत हम गीतों और त्योहारों में करते हैं, उसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के संकल्प के साथ स्थायी बनाना हमारा दायित्व है। तो आइए इस पावन सावन में हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर शिव की तरह धैर्य, करुणा और कल्याण की भावना को अपनाएं, क्योंकि सावन की बूंद यही संदेश देती है कि जब मन भक्ति से भीगता है, तब जीवन में आनंद, शांति और मंगल स्वयं बरसने लगते हैं। तो आप सभी को पवित्र श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। और श्रोताओं, एक और खास बात आज के दिन की। कुछ रिश्ते जन्म के साथ मिलते हैं, कुछ रिश्ते जीवन स्वयं चुनता है। इन्हीं चुने हुए रिश्तों में सबसे अनमोल रिश्ता है मित्रता का, दोस्ती का। एक ऐसा बंधन जिसे न तो रक्त संबंध चाहिए, न किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता, ये केवल विश्वास, अपनत्व और स्नेह की नींव पर खड़ा होता है। आज का दिन इसी रिश्ते का जश्न मना रहा है। जी हाँ, हर साल 30 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी और इस विश्वास के साथ की कि मित्रता केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं बल्कि समाजों, संस्कृतियों और देशों के बीच शांति और सौहार्द का सशक्त माध्यम भी है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी सफलताओं में मुस्कान बनकर हमारे साथ खड़ा रहे, कठिन समय में संबल बनकर हमारा हाथ थामे। मित्रता वो दीप है जो निराशा के अंधकार में आशा का प्रकाश जलाता है। ये जीवन के संघर्षों को सरल और खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है। भारतीय संस्कृति में भी मित्रता का आदर्श अत्यंत ऊंचा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की निष्काम मित्रता, भगवान श्री राम और निषादराज का आत्मीय संबंध और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का विश्वासपूर्ण सखा भाव, सच्ची मित्रता पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति में नहीं बल्कि हृदय की निर्मलता से जन्म लेती है, यही बताता है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में जब संवाद के अनेक साधन हैं, तब भी आत्मीयता और संवेदना का महत्व कम नहीं हुआ है। मित्रता केवल संदेश भेजने का नाम नहीं है बल्कि समय देने, सुनने, समझने और हर परिस्थिति में साथ निभाने का नाम है।
तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर हम केवल अपने मित्रों को शुभकामनाएं ही न दें, बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग और करुणा के उन मूल्यों को भी अपने जीवन में स्थान दें जिनसे जीवन सुंदर बनता है और यही जीवन का अनमोल रत्न है। सच्चा मित्र वही है जो हमारे जीवन की हर ऋतु में साथ बनकर एहसास दिलाए कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, हम अकेले नहीं हैं, हमारे जीवन का मौसम खूबसूरत है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज के दिन का संदर्भ लेते हुए ही हम आपसे कहते हैं कि रेडियो के जरिए ध्वनि तरंगों के माध्यम से आपसे हमारी मित्रता है, रेडियो आज़ाद हिंद से आपकी मित्रता है, तो इस मित्रता को अवश्य बनाकर रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सभा में। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। वतन का राग ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे पर केंद्रित होगा। बाल सभा कार्यक्रम में सुबह 8:30 बजे बच्चे सुनेंगे भाषा की मर्यादा पर बातचीत। 9 बजे हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज हम चर्चा करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें आप सुन सकते हैं गायन जुगलबंदी आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार की। देश के संस्थान इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनिए MDL पर केंद्रित कार्यक्रम। 10:30 बजे आज़ाद हिंद कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे उजागर सिंह की। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 11 बजे। 11:10 पर सुनिए रेडियो रिपोर्ट। और 11:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रमों का सिलसिला आपके लिए शुरू होगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, कुछ बातें जो जीवन को देती हैं एक नई दिशा, कुछ घटनाएं जो सुलझा देती हैं मन की उलझने, महकती उन बातों को हम कहते हैं जीवन सौरभ। रेडियो आजाद हिंद की ओर से लीजिए सुनिए कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: जीवन सौरभ। हाथी और रस्सी की कहानी। एक बार एक व्यक्ति शहर में रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। अचानक ही वे एक सर्कस के बाहर रुक गया और वहां रस्सी से बंधे हुए एक हाथी को देखने लगा और सोचने लगा। वो सोच रहा था कि जो हाथी जाली, मोटी चेन या कड़ी को भी तोड़ देने की शक्ति रखता है, वे एक साधारण सी रस्सी से बंधे होने पर भी कुछ नहीं कर रहा है। उस व्यक्ति ने तभी देखा कि हाथी के पास एक ट्रेनर खड़ा था। ये देखकर उस व्यक्ति ने ट्रेनर से पूछा, ये हाथी अपनी जगह से इधर उधर क्यों नहीं भागता या रस्सी क्यों नहीं तोड़ता है? उसने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था तब भी हम इसी रस्सी से इसे बांधते थे और तब यह बार बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता था पर कभी तोड़ नहीं पाया। और बार बार कोशिश करने के कारण हाथी को यह विश्वास हो गया कि रस्सी को तोड़ना असंभव है। जबकि आज वो रस्सी को तोड़ने की ताकत रखता है, फिर भी वो ये सोचकर कोशिश भी नहीं कर रहा है कि पूरा जीवन में इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया तो अब क्या तोड़ पाऊंगा। यह सुनकर वो व्यक्ति दंग रह गया। उस हाथी की तरह हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कोशिश करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो पहले से ही बार बार कोशिश करने पर असफलता प्राप्त कर चुके होते हैं। उन्हें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये याद रखिएगा।
1: जीवन सौरभ।

मन की उलझनों को सुलझाता, जीवन को एक नई दिशा, नया चिंतन देता। ये था कार्यक्रम जीवन सौरभ।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 176 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणी, देवता हैं इंद्र, छंद है अनुष्टुप और त्रिष्टुप।
2: मत्सि नो वस्य इष्टय इंद्र मिंदो वृषा विष रिघायमाण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि। हे इंद्रदेव, ऐश्वर्य संपदा की प्राप्ति के लिए आप हमें आनंदित करें। हे बलदायक सोम, आप इंद्रदेव के शरीर में प्रविष्ट हों। शत्रुओं का संहार करते हुए आप देव शक्तियों के अंदर भी संव्याप्त हों तथा विकार रूपी शत्रुओं को समीप न आने दें। तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चर्षणीनाम अनुस्वधा यमुप्यते यवम न चरकृषद वृषा। जो इंद्रदेव संपूर्ण प्रजाजनों के एकमात्र अधीश्वर हैं, जिन इंद्रदेव के प्रति आप हविष्यान्न समर्पित करते हैं, जो शक्तिशाली इंद्रदेव किसान द्वारा जौ की फसल को काटने के समान ही शत्रुओं का संहार करते हैं, आप सभी उन्हीं इंद्रदेव की स्तुतियों द्वारा अर्चना करें। यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च क्षितीनां वसु स्पाशयस्व यो अस्मद्रुग दिव्ये वाशनिर्जहि। हे इंद्रदेव, आपके हाथों में पांचों प्रकार की प्रजाओं की वैभव संपदा है, ऐसे आप हमारे विद्रोहियों को परास्त करें और आकाश से गिरने वाली तड़ित विद्युत के समान ही उनको विनष्ट करें। असुन्वंतम समम जहि दूणाशम यो न ते मयः अस्मभ्यमस्य वेदनम दद्धि सूर्यश्चि दोहते। हे इंद्रदेव, जो आपके लिए सोमा भिषवण नहीं करते, जो यज्ञ कर्मों से विहीन दुष्कर्मी बड़ी कठिनाई से नियंत्रण में आने वाले हैं, ऐसे दुष्टों का आप संहार करें, उनकी धन संपदा को हमें प्रदान करें। आवो यस्य द्विबर्हसोर केशु सानश गसत आजा विंद्रस्येन्दो प्रावो वाजेशु वाजिनम। स्तोत्रों के उच्चारण के समय सदैव उपस्थित रहकर आपने जिन दो प्रकार के स्तोत्र ज्ञान यज्ञ आहुति परक हविर यज्ञ यज्ञों को संपन्न कराने वाले यजमानों की रक्षा की है, हे सोम, उसी प्रकार आप युद्ध के समय इंद्रदेव की तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के समय यजमानों की रक्षा करें। यथा पूर्वेभ्यो जरित्रिभ्य इंद्र मय इवापो न दृश्यते बभूथ ता मनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुम। हे इंद्रदेव, आप प्राचीन स्तोताओं के लिए प्यासे को जल और दुख पीड़ितों के सुख प्राप्ति की भांति ही आनंददायक और प्रीति युक्त हुए। आपकी उन्हीं प्राचीन स्तुतियों द्वारा हम आपको आमंत्रित करते हैं। आपकी कृपा से हम अन्न, बल और दीर्घ जीवन प्राप्त करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 176 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वालों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, समय अनवरत निर्बाध चलता रहता है। धरती सांस सांस गाती है नव सृजन का संकल्प, रचती है नया दिन, नई सुबह, नया जीवन। सुबह जैसे खुशी की सरगम है और शाम एक मध्यम सी मुस्कुराहट है जिंदगी की। सुबह एक शक्ति है जो सिखाती है जीने का मंत्र, दिखाती है कुछ नए रास्ते, और शाम जैसे पुनर्जीवन है, नए सिरे से नई राह पर जिंदगी की एक नई शुरुआत का चिंतन। शायद इसीलिए सुबह और शाम आराधना का विधान है। तो आइए हम और आप साथ साथ चलें आज की भजन यात्रा पर।

जो है जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना वंदना है। प्रयास और प्रयत्न से जो हो वो मन के पार नहीं ले जाएगी, क्योंकि सभी प्रयास मन का है। जिसे मन से कोशिश करके पाया वो मन के ऊपर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि परमात्मा को प्रयत्न से पाने का कोई उपाय ही नहीं, उसे तो अप्रयास से ही पाया जा सकता है।

ज्ञानी जन कहते हैं हम हवा पानी की तरह सहज हो जाएं, जो हो रहा है उसे होने दें, जो है उसे स्वीकार करें, सिर्फ होने का एक शांत ढंग पकड़ लें, होने का एक ढंग जिसमें प्रतीक्षा है, धैर्य है, होने का एक ढंग जो प्रार्थना पूर्ण है, यही ढंग सही मार्ग है, यही ढंग दरअसल आराधना है।

श्रोताओं, मन की सफलता जहां समाप्त हो जाती है, वहीं भक्ति आरंभ होती है, वहीं वंदना घटित होती है। जब तक मन सफल होता रहता है, माया जारी रहती है। मन का न होना ही मौन है, मन का न होना ही परमात्मा में खोना है, और इस खोने में ही उसे पाने की व्यवस्था है।

श्रोताओं, सुख दुख जीवन के अनिवार्य अंग हैं। या तो हमारे जीवन में सुख है या दुख है। जीवन में या तो कुछ है जो हम चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ है जिसका हम पीछा करना चाहते हैं, कुछ है जिससे हम बचना चाहते हैं। ये चाहना, ये मन का होना ही संसार है और ईश्वर संसार के पार है। जहां न सुख है न दुख है, उसी को हमने आनंद कहा। और इस ज्ञान की प्राप्ति भी उस परम शक्ति की कृपा से ही संभव है।

और श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। और अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय का। कहा गया है कि जिस तरह संसार की वस्तुओं को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है, उसी तरह पारलौकिक और आध्यात्मिक तत्वों को जानने के लिए वेदों की आवश्यकता है। वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अत्यंत गूढ़ विषयों का रहस्य सरलता से प्रकट कर देते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुति और स्मृति की परंपरा से वेदों की यात्रा आगे बढ़ी और कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का भव्य भवन वेदों पर ही टिका हुआ है। इसीलिए निरंतर वेदों की ओर चलने का आह्वान विद्वत जन करते रहे हैं। वेद हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। वेद हमारी संस्कृति का गौरव हैं। और इसी वैदिक साहित्य के विख्यात मर्मज्ञ थे डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय, जिन्होंने पुरातात्विक अनुसंधानों के कारण वैदिक युग के बदलते ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ वेदों को आधुनिक समय के समक्ष रखने का महान कार्य सिद्ध किया। गोविंद चंद्र पांडेय का जन्म 30 जुलाई सन 1923 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री पीताम्बर दत्त पांडेय और माता जी का नाम प्रभावती देवी था। इस परिवार का संबंध अल्मोड़ा के पिलखा गांव से था, जो वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश के काशीपुर में बस गया था। यहीं उनकी स्कूली शिक्षा आरंभ हुई। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। यहाँ पंडित रघुवीर दत्त शास्त्री और पंडित रामशंकर द्विवेदी जैसे विद्वानों के सानिध्य ने उन्हें और प्रखर किया। उन्होंने व्याकरण, साहित्य और शास्त्रों का पारंपरिक रीति से गहन अध्ययन किया। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद गोविंद चंद्र पांडेय ने इलाहाबाद से एमए किया। अपनी संपूर्ण शिक्षा के दौरान वो सदा सर्वोच्च अंक प्राप्त किया करते थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनका मार्गदर्शन किया। इस तरह प्रोफेसर चट्टोपाध्याय के सानिध्य में गोविंद चंद्र पांडेय ने तुलनात्मक भाषा शास्त्र, धर्म, दर्शन और इतिहास का गहन अध्ययन किया। यूं भारतीय संस्कृति की महक में उनका तन मन रंगने लगा और भारत भूमि के प्रति मन श्रद्धा से झुकने लगा।

डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय को गढ़ने में प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं के मार्गदर्शन में गोविंद चंद्र पांडेय ने डीफिल की उपाधि प्राप्त की। इस शोध के दौरान ही उन्होंने पाली, प्राकृत, फ्रेंच, जर्मन और बौद्ध चीनी भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया और कुछ समय के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 10 वर्ष सेवाएं देने के बाद सन 1957 में गोविंद चंद्र पांडेय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातात्विक विषय के प्रोफेसर आचार्य होकर गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वो राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ के अध्यक्ष और इलाहाबाद संग्रहालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। भारत सरकार की अनेक महत्वपूर्ण समितियों में सदस्य के रूप में जुड़कर उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसके साथ ही देश विदेश में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बौद्धिक संगोष्ठियों में भागीदारी करके उन्होंने अपने ज्ञान और विचार से उन्हें समृद्ध किया। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ साथ डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय का अध्ययन और शोध का कार्य भी निरंतर जारी रहा। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में उन्होंने 40 के करीब ग्रंथ लिखे। इसके साथ ही उनके लगभग 200 शोध प्रबंध प्रकाशित हुए। उनका संपूर्ण सृजन एक धरोहर की तरह है, जिससे भारतीय संस्कृति की आत्मा झांकती है और मन राष्ट्र गौरव से भर उठता है।

भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य और इतिहास उनके चिंतन और सृजन का केंद्रीय विषय थे। इन विषयों पर उनके लिखे अनेक आलोचनात्मक शोध ग्रंथ, काव्य ग्रंथ तथा विविध शोध आलेख भारत के साथ ही विदेशों में भी प्रकाशित हुए। डॉ. गोविंद चंद्र पांडेय की प्रमुख रचनाएं हैं भारतीयता के मूल स्वर, दर्शन विमर्श, सौंदर्य दर्शन विमर्श, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, मूल मीमांसा, साहित्य संस्कृति और सौंदर्य, शंकराचार्य विचार और संदर्भ, भारतीय समाज, भक्ति दर्शन विमर्श, भागीरथी, वैदिक संस्कृति आदि। उन्होंने ऋग्वेद के तीसरे से सातवें मंडल तक का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाएं उनकी चिंतन परिधि को व्याख्यायित करती हैं। उनके ग्रंथ वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक के इतिहास, धर्म और दर्शन का तार्किक अनुशीलन प्रस्तुत करते हैं। उनके लेखन में कोई पूर्वाग्रह या वैचारिक संकीर्णता नहीं है। डॉ. गोविंद चंद्र पांडे एक तरफ बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं तो दूसरी तरफ आदि शंकराचार्य की विचारधारा पर विमर्श भी करते हैं। वो एक तरफ संस्कृति के अध्येता हैं तो दूसरी ओर समाजशास्त्र की उपेक्षा भी उन्होंने नहीं की। वो सामान्य तौर पर परंपरावादी कहलाते हैं, जबकि वो स्वयं परंपरा को सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह मानते हैं। उनकी पुस्तक वैदिक संस्कृति में धर्म, दर्शन और विज्ञान की सामग्री के विश्लेषण में आधुनिक पाश्चात्य और पारंपरिक भारतीय दोनों प्रकार की व्याख्याओं की समन्वित समीक्षा की गई है और यही शैली उनकी अन्य रचनाओं में भी दिखाई देती है। सच तो यह है कि उनकी वृत्ति सर्वग्राही है। वो प्राचीन भारतीय संस्कृति को सभी विचारधाराओं की सलीला मानते हैं। एक बार उनके एक मित्र ने पूछा कि वेदों पर इतना कुछ लिखा जा चुका है, फिर आप नया क्यों लिख रहे हैं? इस पर डॉ. गोविंद चंद्र पांडेय ने कहा, एक तो नए पुरातात्विक अनुसंधानों के कारण अब वैदिक युग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, दूसरे औपनिवेशिक युग के विद्वानों ने जो वेद पर लिखा है उनमें अधिकांशतया वैदिक देवाख्यानों पर तुलनात्मक मिथकी विज्ञान की दृष्टि प्रधान रही है, तत्व जिज्ञासा की दृष्टि नहीं। समूचे वैदिक धर्म का आकलन भी इन विद्वानों के लिए इस परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए जिसमें धर्म के इतिहास की कल्पना मैक्स मूलर और अन्य विद्वानों, विशेषकर मानव विज्ञानियों ने की है। डॉ. गोविंद चंद्र पांडेय ने इसी जमीन पर अपना शोध और लेखन किया। उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों के साथ साथ भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 21 मई सन 2011 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, फूल, रंग, तितली, बादल और मुस्कुराता हुआ सतरंगी इंद्रधनुष। जी हाँ, ये संसार है बच्चों का अलबेला सा संसार, एक ऐसा संसार जहाँ वक्त का कोई हिस्सा कभी मुरझा नहीं सकता है। तो चलिए, बच्चों के इसी अलबेले संसार में आपको लिए चलते हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आज़ाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है भाषा की मर्यादा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं बातों की बात की। आप सोच रहे होंगे ना ये कौन सी बात हुई, लेकिन यही बात है बच्चों कि हम बात कैसे करते हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, बात करते करते कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते कि हम इतना कैजुअल हो गए हैं कि किसी से कुछ भी बोले दे रहे हैं, क्या हम अपनी भाषा में बुरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या हमने अपनी बोली में पूरी मर्यादा रखी हुई है, या हम कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो फिर अब हम आपको आज इसी बारे में बताने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है, है ना। एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है, और वो दोहा है, रहमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूत खात कपाल, है ना। कितनी बड़ी बात है। रहीम जी कहते हैं कि जीभ बड़ी पागल है, या ये कह लीजिए कि बावली है, जो बिना सोचे समझे स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें कह जाती है। और खास बात ये है कि ये जीभ तो बिना विचारे बोलकर तुरंत मुंह के अंदर छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसके द्वारा कहे गए जो कड़वे या गलत शब्द हैं उनके कारण मार किसको पड़ती है, हमारे सिर को, है ना। मतलब कहे कोई और भोगे कोई, कह रही है जीभ, भोग रहा है सिर, तो फिर तो गलत बात हो गई ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि ये जीभ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। एक और बात है, जो आपके शब्दों के बाण होते हैं ना, वो ज्यादा तेजी से घायल करते हैं किसी और चीज से, तो इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात कहते हैं वो ये कि कही गई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं आपको इतनी सारी छोटी छोटी कहावतें, इतनी सारी बातें आज आपको बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि हमें जब भी बात करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात करने के लिए मुझे कहाँ से दिमाग में आया, तो कहानी बड़ी सिंपल है। मैं आप जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं खेल रहे होते हैं, कभी मंदिर के मैदान में, कभी कॉलोनी के पार्क में, कभी किसी के मोहल्ले में, अगर मैं जाती हूँ किसी से मिलने तो वहाँ जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत मिलती हूँ ये आपको पता है, तो बस जब मुझे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बाल सभा में आप लोगों से ये बात करनी है। तो हुआ ये कि मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में बैठी हुई थी, दो बच्चे खेल रहे थे, हालांकि टीम उनकी बहुत बड़ी थी, 10-12 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दो बच्चों को मैंने देखा जो खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ पड़े। तो ठीक है, बच्चों में झगड़ा होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो झगड़े बहुत जल्दी से सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले भाले भी होते हैं, है ना। आप सब आज लड़े कल दोस्ती, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अब लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक बच्चा बोला कि तुम पागल हो क्या, तो दूसरा बच्चा बोला कि तुमने मुझे पागल क्यों कहा। अब पहले बच्चे के पास कोई जवाब ही नहीं था कि पागल क्यों कहा, उसने कहा कह दिया तो कह दिया। वो बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने खेलने से मना कर दिया ये कह के कि नहीं, ऐसे कैसे कह दिया तो कह दिया। मेरी माँ कहती हैं कि किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो गलत हो। मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, पर मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुमको बुरी लगे, तुमने मुझे पागल क्यों कहा। और आप भी जानते हैं बच्चों कि कितनी बार हम इस शब्द का दिन भर में इस्तेमाल कर देते हैं, कभी स्कूल में, कभी लंच टाइम में, कभी शाम को बच्चों के साथ खेलते वक्त। अब आप सोचिए कि क्या ये कहना सही है, मतलब दोनों ही बच्चे हैं, वो बच्चा कह रहा है अरे कह दिया तो कह दिया, चल मैं तेरी दोस्ती हूँ, उसने कहा नहीं, पहले आप ये बोलो कि आज के बाद इस भाषा का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आप देखिए कि वो बच्चा अपनी जगह कितना सही है। वो न सिर्फ आपकी दोस्ती के लालच में वो किसी गलत बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है दोस्ती, सारी चीजें, खेलना सब साइड में है। पहले ये बताओ कि तुमने जो आज बात कही है वो कल कहोगे? वो कह रहा है अरे यार ये तो मुंह से निकल जाता है। अब देखिए दूसरी बात में ही क्या निकल गया, यार। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप में भाषा की मर्यादा नहीं है। फिर उस बच्चे ने टोक दिया कि देखो अभी तुमसे पागल कहने को रोका, अभी तुम बातों बातों में यार पे आ गए। तो बोला कि नहीं, बात अच्छे से करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी तुमसे दोस्ती हो जाऊंगा, मैं अभी तुमसे गले मिल लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अंत में बच्चों मुझे उस लड़ाई के बीच में पड़ना पड़ा। मैंने फिर दोनों बच्चे को समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की दोस्ती हो जाओ। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है कि आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना। तो वो बच्चा जानते हैं मुझसे क्या बोला? वो बच्चा मुझसे बोला, आंटी मैंने कोई मारा थोड़ी है जो ये इतना नाराज हो रहा है। अब आप सोचिए कि भाषा की, बोली की मर्यादा उस बच्चे के लिए मायने ही नहीं रखती जिसने ये कहा कि मैंने तुमको मारा थोड़ी है जो तुम इतना बुरा मान रहे हो। ये सब तो चलता है। नहीं चलता बच्चों, नहीं चलता, बल्कि मैं ये कहूंगी कि नहीं चलना चाहिए। मेरे संगत में जो जो बच्चे आते हैं, मैं हर एक को एक ही बात सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपका इम्प्रेशन होता है आप खुद, उसके बाद जैसे ही आप अपने शब्दों से कुछ अच्छी बात बोलते हो आपका इम्प्रेशन दोगुना हो जाता है, और जैसे ही आपने कुछ खराब बात की आपका इम्प्रेशन आधा रह जाता है। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपको एक प्रभावशाली बच्चा बनना है, चाहे वो क्लास हो, स्कूल हो, आपका कोई स्कूल का ग्राउंड हो, या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो, अगर आप बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। तो बच्चा बोला कि आंटी आप इतनी देर से मुझे समझाए जा रही हैं, आप इसे क्यों नहीं समझा रही हैं? मैंने कहा बेटा समझा तो मैं उसको भी रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें दोबारा गलती नहीं करनी है। तो बस ना तुम ये गलती करोगे ना बात बिगड़ेगी, क्योंकि तुम अगर ये कह रहे हो कि मैंने मारा थोड़ी, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात मारना है, उसके पहले की कोई भी गलतियां तुम्हारे लिए गलतियां हैं ही नहीं, है ना। तब उसको समझ में आया कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। तब उसने कहा सॉरी, तब उसने उस बच्चे से भी सॉरी कहा, और उन दोनों बच्चों की दोस्ती हो गई। तो चलिए भाई, हमारी तो बात यहाँ शुरू हो गई है कि हमने बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए। लेकिन आज का ये जो विषय है, आपको पता है ना, ये आपकी किताब में भी बहुत बार आता होगा, है ना। बहुत सारी जब आप हिंदी की कहानियाँ पढ़ते हैं उसमें भी ये बात आती है। इनफैक्ट मैंने आपको एक बार तोते की कहानी सुनाई थी इसी बाल सभा में, वो भी इसी बात पर थी कि एक तोता राजा को बहुत प्रिय था, याद आ गई होगी आपको सुनते सुनते ना, और एक तोता राजा को बिल्कुल अप्रिय था। दोनों में अंतर ये था, दिखने में दोनों एक जैसे थे, पर दोनों तोते जो थे उनकी भाषा में बहुत अंतर था। एक बहुत मीठा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता था, और वहीं दूसरा बहुत गंदा, बहुत तेज, बहुत चिल्लाकर, बहुत चीखकर, और बहुत एनोइंग था। तो अब आप सोचिए बच्चों कि ये सब चीज़ें कितना महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। हाँ, अभी मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और ये कविता आपको समझ में आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसका छोटा छोटा सा जो अर्थ है वो हमारी बात को और बल देता है। तो कविता यहाँ से शुरू होती है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। इस बात का मतलब समझे आप कि भले ये शक्ति विज्ञान में है जिससे अमावस की रात भी पूर्णिमा जैसी बन जाती है, लेकिन विश्व पर आज क्यों दिन में ही अमावस जैसा अंधेरा छा जाता है। कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं कवि। आगे लिखते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। कितनी सुंदर बात है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्हीं ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब अगर हम अपनी बात को इस बात से करेंगे तो ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन तिमिर का मतलब बच्चों अंधेरा होता है, और जो दीप स्नेह के दीप की बात जलाने की कर रहे हैं कवि, वो यही है कि भले ही हम साइंस ने विज्ञान ने जो बल्ब जला दिए हैं, जितना आविष्कार हुए हैं, वो बल्ब जो जल रहे हैं अगर हम उन्हें बुझा दें, तो हमें जो विद्युत के बल्ब हैं उन्हें बुझा कर असली बल्ब यानी हमारे भीतर की असली रोशनी को, स्नेह की रोशनी को प्रकाशित करना है, प्रकाशमान बनाना है संसार को, है ना। बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लाइट हैं उनसे आपको असली रास्ता असली पथ नहीं मिलेगा, बल्कि असली पथ आपको किससे मिलेगा, उस दिए से जो स्नेह का दीपक है। जब किसी अनजान आदमी से मुस्कुराकर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं या नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, तब स्नेह का दीपक दोनों तरफ चलता है, है ना। आगे कवि कहते हैं कि मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। आगे लिखते हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब एक दीपक भी अगर रह गया स्नेह का प्रेम का, तो आप यकीन करिए कि जो रात है उससे सवेरा वापस लौटेगा, मतलब अंधेरे की रात स्नेह के दीपकों से काली रात खत्म हो जाती है, और जो स्नेह का सूर्य है स्नेह का दीप है उससे सारा तिमिर सारा अंधकार भाग जाता है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की कविताएं, इस तरीके की कहानियां जो हिंदी साहित्य में हमारे पास बहुत हम लोग समृद्ध हैं, अगर हम पढ़ें ना बच्चों तो हमारे शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर कभी आप सोच के देखिए कि अभी आपने ये कविता सुनी है ना, अगर आप ये कविता में से दो शब्द बहुत अच्छे चुनना हो आपको, तो आप

को हम आवश्य। तो कभी कभी अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य भी हमारी भाषा को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? बच्चों, मर्यादा का अर्थ सम्मान होता है, संयम होता है और शालीनता होता है। जब हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात करते हैं और ऐसे शब्द चुनते हैं जो किसी को चोट ना पहुंचाए, बस वही भाषा की मर्यादा कहलाती है, है ना? वो कहते हैं ना कि मीठे बोल अमृत समान और कटु वचन तीर और जहर के समान होते हैं, है ना? एक बच्चा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी भाषा अच्छी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। इसके साथ मत खेलना। आपने देखा होगा ना, कई बार मम्मियाँ निकलती हैं, वो कहती हैं देखो उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलोगे, वो बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और तुम भी वैसे ही बोलने लगोगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि संगत का असर पड़ता है और बहुत तेज़ी से पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे वही बोलते हैं जो वो घर में सुनते हैं। यदि घर में धन्यवाद, कृपया, क्षमा कर दीजिए जैसे शब्द सुनाई देंगे तो बच्चा वो सीखेगा, और यदि घर में हर समय ऊंची आवाज़, क्या कर रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो, इधर आओ, यहाँ बैठो, अगर ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा ना बच्चों से, तो बच्चे भी वही बात करेंगे। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इतना एक्सपोजर आप लोगों के लिए बच्चों अच्छा नहीं है। हम जो कार्टून देख रहे हैं आज, जो वीडियो देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब में आप देखिएगा कि भाषा की मर्यादा धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। मतलब कई बार मैंने देखा है कि आजकल बच्चे चल भग जा तू, इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, हट यहाँ से, सुना ही धीरे धीरे बच्चों को इसमें मज़ा नज़र आने लगता है। हाँ, वो इसको अपनी भाषा का हिस्सा ही बना लेते हैं। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि कैसे हैं आप, तो कैसा लगेगा आपको? और मैं ये कहूँ और बता सब ठीक चल रहा है, कैसा लगेगा आपको? कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहला वाला ना, क्योंकि उसमें आपके लिए भी एक सम्मान है। आप उम्र में छोटे हो लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ आप ठीक हो ना, घर से कुछ खाकर आए हो। अब यहाँ पर कोई मैं पूछ लूँ तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, भूखा भूखा तो नहीं है? दोनों बातें एक हैं, ठीक, लेकिन क्या है, दोनों बातों में सबसे बड़ा अंतर है लहजे का, सबसे बड़ा अंतर है भाषा की मर्यादा का। और बच्चों ये तो हमने सीखना होगा, क्योंकि हमें तो बहुत आगे जाना है ना। कवि भी कह रहे हैं ना, अभी जो कविता सुनाई उसमें, कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। हवा को पवन कहते हैं। उसने कई बार ऐसे खूबसूरत स्नेह के दीप बुझा दिए हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, बार बार स्नेह का दीपक जलाना है, और जो मैंने आपसे कहा उसका भी ख्याल रखना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो फिर आपको और ध्यान से भाषा का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं एक घर में गई थी, वहाँ पर दादी बार बार कह रही थी कि बेटा बेटा हमारा सीरियल लगा दो, और बच्चा लगातार एक ही बात कह रहा था, दादी चुप करो यार, बहुत बोलती हो आप, नहीं लगा रहा मैं आपका। जो माता पिता थे उन्हें क्या लग रहा था, बच्चा लाड़ में बोल रहा है ना, कि ठीक है मैंने जब बोला ये बोल कैसे रहा है, तो जानते हैं उनके उस बच्चे के माता पिता ने मुझसे क्या कहा, अरे ये और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें तो ये सब पूरे दिन चलता है, हम तो यहाँ बैठ के मज़े लेते हैं। ये बात हो सकता है कि किसी को अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। अगर दादी दोस्त हैं तब भी, दादी दादी तो पहले रहेंगी ना, दोस्त तो बाद में बनेंगी ना। दादी की उम्र, दादी का इतना लंबा अनुभव, वो सब इस भाषा के लायक है क्या? चुप रहो दादी, बहुत बोलती हो आप, इसके लायक हैं दादी? ना, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और आपको किसी से भी, मैं तो बोलती हूँ अपने दोस्तों से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दादी बहुत बड़ी बात होगी, दादी से तो बहुत और आपका रिस्पेक्ट भी दुगना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी पापा की मम्मी है, तो आपको उस लिहाज से बोलना चाहिए, है ना। और कभी ये प्रेम नहीं कहता कि आप अपनी भाषा का संयम भूल जाए, है ना। कभी कोई किताब ये नहीं कहती कि किसी के प्रेम में पढ़कर या किसी से लाड़ में आप भाषा की मर्यादा भूल जाएं। क्योंकि बच्चों जो बातें अभी आपको मजाक लग रही हैं, वो थोड़ा बड़ा और हो जाओ आप लोग, फिर आपको लगेगा सब टोकेंगे, किसी के घर जाओगे सब टोकेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, एक और भाषा है, वो भाषा है ब्रो, वो भाषा है सिस,
वो भाषा है क्या है? अधूरी भाषा। हाँ, जब हमारे पास पूरे शब्द हैं, हमारी भाषा समृद्ध है, तो हमें जरूरत नहीं है कि बच्चों हम जो चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करें, है ना। आजकल लिख भी अधूरा अधूरा रहे है ना। प्लीज लिखना है तो PLZ लिख के काम चला लेंगे, सिस्टर लिखना है तो SIS लिख कर काम चला लेंगे। आपको किस चीज की जल्दी है सोचिए। यहाँ तो हमारे लिखने की भाषा भी कैसी होती जा रही है। लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि ये चलता है, पर अगर सब कुछ अगर आप चलाने लगे ना तो आप ही चलते हो जाओगे। मतलब आप अपना स्थान बनाकर नहीं रख पाओगे, आपकी जो खूबियां हैं उसको समेट के नहीं रख पाओगे। आप भी वो भेड़ चाल चलोगे, और भेड़ चाल का तो आपको पता ही है कि भेड़ चाल का मतलब क्या होता है। भेड़ चाल मतलब एक भेड़ अगर गलत दिशा में चल दी तो सारी भेड़

0: मतलब सिरे से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको आप बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के या हर वक्त उसका मजाक उड़ाकर उसे संबोधित करो कि अरे छोड़ो इससे क्या होता है, ऐसे नहीं चलता बच्चों। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए, आपको आनंद आएगा, है ना। और आज आपसे मैंने जो तीन भाषाओं की बात की, एक बोलचाल की भाषा, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मैटर करती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मैडम कुछ पढ़ा रही होती हैं और आप पेन को ऐसे करके खटपट करते रहते हो, सुनाई आ रहा है आपको, सुनाई आया हुँ? मैं आपसे बात करूं और बीच में ये डिस्टर्बेंस आता रहे, अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। ऐसे ही जब आपसे कोई बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, आप नज़रें झुकाए बैठे हो, आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की हमारा इग्नोरेंस जाहिर करता है। तो हमें इस पर भी काम करना है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि शब्दों की ताकत कितनी होती है, है ना। जैसे बच्चों को देखा है आपने, कुछ बच्चे हम कहते हैं ये बहुत ताकतवर बच्चा है, कहते हैं ये कुछ भी सामान उठा लेता है, ये बहुत एक्सरसाइज करता है, ये बहुत दूर तक दौड़ लेता है, कहते हैं। वैसे ही अब मैं आपको शब्दों की ताकत से परिचय करवाती हूँ। जैसे आपको बुखार होता है तो डॉक्टर दवा देता है, वैसे ही जब आप शिक्षक के पास जाते हैं वो ज्ञान देता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से एक नहीं कई लोगों का मन जीत लेता है, बहुत लोगों का मन जीत लेता है। अब आप सोच के देखो, आप कोई काम करो और आपसे आपकी मम्मी बोले शाबाश बेटा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। आपका मन करता है कि आप दोबारा काम करो, है ना, और अच्छा करके दिखाओ। और वहीं एक बच्चा काम करके आए और उसकी मम्मा ये बोले ठीक है दोबारा जब करो तो थोड़ा और ठीक करना, तो उसका क्या होता है, मनोबल हल्का सा टूट जाता है। ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है, आप उसको ये कह दो धन्यवाद, तो कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी ओर कोई कोई चीज़ दे और आप एकदम से पलट कर चल दो, उसको क्या लगता है, अरे मैंने इसको इतने अच्छे से चीज़ दी और इसने तो मतलब उसे जताया भी नहीं कि उसको कैसी लगी, उसको अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ नहीं। फिर एक बार अगर गलती हो जाए कोई और आप एक बार में बिना किसी बहस के बोल दो ठीक है इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, कितनी बड़ी ताकत है ये। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है एक सॉरी बोलने से, कितनी सारे लोग आपसे एक बार में इम्प्रेस हो जाते हैं एक गुड मॉर्निंग करने से, एक नमस्कार करने से, एक सुप्रभात बोलने से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपनी वोकैबुलरी पर बहुत काम कीजिए बच्चों, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए, है ना। रोज़ 5 नए अच्छे शब्द सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, बड़ों से आदरपूर्वक बात कीजिए, गुस्से में भी बोलने से पहले 10 तक गिनिए ताकि आपके पास कोई बुरा शब्द आपकी जीभ से निकलना भी चाह रहा है तो वो 10 तक की गिनती उस शब्द को रोक ले। अब शब्द की जगह सम्मानजनक शब्दों का चुनाव कीजिए। एक बार की बात सुनाती हूँ बच्चों, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तकिए की रुई हवा में उड़ा दो। शिष्य ने ऐसा कर दिया। फिर गुरु ने कहा अब सारी रुई वापस इकट्ठी कर लो। शिष्य बोला यह तो असंभव है। गुरु मुस्कुराए और बोले बेटा शब्द भी ऐसे ही होते हैं, है ना, एक बार मुंह से निकल जाए ना वापस नहीं आ सकते। जैसे तकिए की रुई एक बार आप निकाल दो, फिर आप कितने भी उसको तकिए के भीतर डालने की कोशिश करो या तो शेप बिगड़ जाएगा या तो वो तकिया पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही जब आप किसी से बुरे शब्द बोल देते हो, भले ही वापस आप जुड़ जाओ, दोस्ती हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में गांठ पड़ जाती है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग संकल्प लेते हैं आज बाल सभा में, हर बार ही करते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, मैं जो जो बोलूंगी अब उसे आप दोहराएंगे। आज से हम सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर रोज नए 5 शब्द सीखें। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई कहानी या कविता पढ़कर ही सोएं। आज से हम कोशिश करेंगे कि नियमित पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करेंगे, और अपने बड़ों से, अपने साथ के दोस्तों से, सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे। आंखें खोल लीजिए और अब अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में इतना ही बच्चों, है ना। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, है ना। और हाँ, जो जो बातें मैंने आज आपसे कही है ना, उनको प्लीज़ फॉलो करना, उनका ध्यान रखना और उन पर अमल करके मुझे ज़रूर अगली बाल सभा में जब मैं आऊँ तो मुझे पता चलना चाहिए किसी न किसी बात से आपकी, कि आप घर में अच्छा व्यवहार कर रहे हो, है ना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बताओ तभी पता चलेगा, मुझे तब भी पता चल जाएगा जब आपके बड़े आपसे खुश रहेंगे, है ना। तो बस अपने घर में कोशिश करिए कि सबसे अच्छे से बात कीजिए। हाँ, चलती हूँ, बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: ये था बच्चों का अलबेला सा संसार, जहाँ जुगनू सी मुस्कुराहटें हर पल तैरती रहती हैं। उम्मीद है बाल सभा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, एक बात जो सर्वविदित है वो ये है कि हमारा देश, ये भारत भूमि सदियों से अहिंसा और शांति का संदेश पूरे विश्व को देती आई है। मानवता और विश्व बंधुत्व हम भारतीयों का स्वभाव रहा है और इन्हीं जीवन मूल्यों को हम भारतीय पीढ़ी दर पीढ़ी जीते आए हैं और आज भी इन्हीं पर विश्वास करते आए हैं। लेकिन श्रोताओं, आज़ादी के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, समय के साथ साथ अपने अनुभवों और परिस्थितियों से हमने ये सीखा कि अपने राष्ट्र की अखंडता और अस्मिता की सुरक्षा के लिए ये जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है कि हमारी शांति प्रियता और अहिंसा की नीतियों का किसी के भी द्वारा गलत फायदा ना उठाया जाए। हमारे संयम और आत्मनियंत्रण को कोई भी हमारी कमजोरी ना समझे। श्रोताओं, आजादी के बाद युद्ध की कई विभीषिकाओं को झेल चुका भारत ये जानता है कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम विकल्प ही होता है और यही सत्य भी है। और इसीलिए कई बार शत्रुओं के उकसाने और सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ करने, उपद्रव करवाने जैसी गंभीर परिस्थितियां निर्मित होने के बावजूद हमारी सशस्त्र सेनाएं बेहद ही संयमित और सुनियोजित जवाबी कार्यवाही में ही विश्वास रखती हैं। श्रोताओं, हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए ऐसे कई ऑपरेशंस का अपने कार्यक्रम में हम पहले भी जिक्र करते आए हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विगत कुछ वर्षों में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं जो हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा देश की सुरक्षा के लिए चलाए गए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और अपनी सेवाओं के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित भी किए हैं। स्वागत है सर एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। बहुत सही कहा आपने
2: जी
3: कि जो हमारा संयम है और जिस शांति से रहना चाहते हैं
2: जी,
3: वो शायद काफी लोगों को भाता नहीं है
2: जी।
3: हमारी हमेशा ये पुरजोर कोशिश रही है कि हम कभी किसी को तंग ना करें
2: जी।
3: लेकिन इसके साथ साथ जो है, अगर आप देखें हमारी देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उसके लिए टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी इज अ मेजर चैलेंज। बीते कुछ इयर्स में हमने देखा है कि खासकर जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है
2: जी,
3: उसने जो है हमारे देश में काफी जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है
2: जी।
3: और ये बात सच है कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए हैं, पर फिर भी कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि हमें भी लगा कि ये हमारा जो संयम है, जो आत्म नियंत्रण है, इसकी हद पार हो चुकी है
2: जी। हाँ, हर बार संयम की परीक्षा ली जाती है।
3: इसके लिए मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है
2: जी, बिल्कुल।
3: खासकर कि आप देखते हैं कि आपके सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, उनको बेदर्दी से मारा जा रहा है
2: जी।
3: तो हर एक को जो है एक वक्त आता है जब एक मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है
2: जी, बिल्कुल।
3: और आई मस्ट से कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर काफी अच्छे डिसीजन लिए हैं
2: जी।
3: दे केम आउट विद वेरी इन अ फर्म एंड रिजोल्यूट मैनर टू डील विद ऑल द टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट अटैक्स
2: जी।
3: ठीक है, आई एम वेरी श्योर पूर्वा जी, आपको भी ऑप सिंदूर के बारे में याद होगा
2: जी, बिल्कुल,
3: जो पिछले साल हुआ था।
2: हाँ जी सर, बड़ी हृदय विदारक घटना थी वो
3: जी, बिल्कुल। 22 अप्रैल की बात है जो है पहलगांव में,
2: हाँ
3: श्रीनगर में, एक बैसरान वैली में जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट जो है जगह जगह से जो आए हुए थे वो उस वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से अपना आनंद ले रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग द लाइफ देयर एंड ऑल ऑफ अ सडन दे वर अटैक्ड बाय फोर मिलिटेंट्स, ठीक है, जिनके पास की बहुत ही ऑटोमेटिक एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, M4 राइफल्स, AK-47s थी, और उन्होंने अचानक आके इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब ये निहत्ते लोग उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं, तो दे एक्चुअली किल्ड ऑलमोस्ट 26 टूरिस्ट और इसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब मोर देन डजन पीपल वर एक्चुअली इंजर्ड ऑल्सो। हमने सबने देखा था, टीवी पे भी देखा था, ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने पूछ पूछ के मारा है लोगों को कि क्या आप हिंदू हो या मुसलमान हो, पॉइंट ब्लैंक पे उन्होंने मारा था जो है लोगों, मतलब ये एक तरह से मतलब इट इज कॉवर्डिस, ठीक है, ये बहुत ही मतलब जो है ना एक तरह से कायरतापूर्ण हरकत है। एंड जब आप उसकी डिटेल्स में जाते हैं, हमने देखा था कि दिस अटैक वॉज प्लान्ड, वेरी वेल प्लान्ड, इट वॉज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, और इसको मतलब जो है पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये किया था उन्होंने प्रॉपर इसकी जो है एरिया की रेकी करी थी, मतलब उन्होंने देखा था कि इस इलाके में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, जगह जगह से आते हैं, और उसके बाद इनके यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से जो है उन लोगों के पास कुछ हो नहीं रहता है, कोऑर्डिनेटेड। हाँ, एंड ये उस समय हुआ कि जब पीक टूरिस्ट सीजन चल रहा था अप्रैल के महीने में, उनका एम तो मतलब ये था कि मतलब इस अटैक से जो कश्मीर में जो पीस है, जो शांति बरकरार थी कश्मीर वैली में, उसको भंग हो जाए, लोगों के अंदर एक दहशत फैले, और जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है उसको इंटरनेशनलाइज करें वो। तो इस इंसिडेंट के बाद जैसे आपको भी याद हो गया, मतलब पूरा जो कंट्री है इट वाज शॉक्ड, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, एंड होल नेशन डिमांडेड ओनली वन थिंग कि देयर शुड बी अ सॉलिड एंड प्रॉपर काउंटर टू दिस टेररिज्म, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो मतलब एक्टेड इन ए वेरी रिजोल्यूट मैनर, उन्होंने जो है इसके लिए प्लान करना शुरू किया, क्योंकि देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता एक झटके में तो नहीं होता है, यू हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्टेप्स, ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू टेक लॉट ऑफ पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स से थे उसको एक्टिवेट किया गया। तो उनका मेन ये था कि जो पाकिस्तान है उसका ये जो सपोर्ट है टेररिस्ट को उसको एक्सपोज करा जाना चाहिए, एंड साथ ही साथ उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिससे कि वो दोबारा करने से पहले एक बार सोचे कि ये मतलब हम अगर करेंगे तो हमारा भी कोई नुकसान कर सकता है। अभी तक तो हमेशा ऐसा लगता था कि पाकिस्तान को कि ठीक है जब होता है तो इंडिया कुछ नहीं करता,
4: वही संयम वाली जो बात है,
3: बिल्कुल। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वी विल कैरी आउट अ रिटेलिटरी एक्शन, जिसमें कि जो वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंप्स, लोकेशन है, उसके ऊपर अटैक करेंगे। देखिए ये जो है देश में स्ट्रेटेजिक लेवल यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये प्लानिंग चल रही थी कि कौन कौन से टारगेट्स हैं जहाँ पे कि ये टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में, कहाँ उनके सेफ हेवन्स हैं, कहाँ उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे भी वो लोग करते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है। तो ये सब टारगेट्स वगैरह प्लान हो रहे थे। इस बीच में जो ग्राउंड के ऊपर जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था इसके लिए जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ की उनके ऑपरेशंस चल रहे थे। इट वाज अ वेरी इंटेंस ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड कि उनको जो है हमको पकड़ना है और उनको खत्म करना है। तो एग्जैक्टली आफ्टर वन मंथ 22 मई को बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस पता लगा था कि श्रीनगर के पास एक एरिया है उसको बोलते हैं दाचीगाम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। तो वहाँ इंटेलिजेंस थी कि यहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था। ये ऑपरेशंस में प्राइमरीली जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
4: अच्छा,
3: उसके अलावा भी थे एंड इनको जो हाइड आउट था उसको मतलब दे वर एबल टू लोकेट इट एंड दे किल्ड ऑल द थ्री वहां पे तीन उनको टेररिस्ट मिले थे, उनको तीनों को मार डाला था. एंड बाद में जो है पता चला था कि ये जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने कि ये पहलगाम का अटैक किया था और ऐसे पूरे मतलब वहां से प्रूफ भी मिले थे कि ये पाकिस्तान से आए थे जो है. लेकिन ये टेररिस्ट मारने से ही जो है रिटेलिएशन खत्म नहीं हुआ
4: जी,
3: था
4: समस्या का हल भी नहीं हो सकता
3: नहीं हुआ था. तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई ये तो मतलब टेररिस्ट थे लेकिन उनको जिसने सपोर्ट किया है, जो उनको बार बार सपोर्ट कर रहा है, उसको मतलब वी मस्ट गिव अ सीवर ब्लो
4: जी, बिल्कुल
3: उनके ऊपर भी मतलब एक दमदार हथौड़ा तो मारना चाहिए है. उनको भी मतलब लगे कि जो है अगर ऐसा कुछ होता है
4: जी,
3: तो हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा, भारत जो है इसके ऊपर जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा. एंड इसी के कारण जो है ऑप सिंदूर लॉन्च किया गया था. आप देखिए सिंदूर नाम रखा
4: जी,
3: ये उन सारी जो महिलाएं हैं
4: जी सर
3: जो विधवा हुई थी
4: जी जी जी,
3: ये उनकी तरफ से ये एक बदला था
4: जी. वो तस्वीरें तो कभी भूल नहीं सकते सर हम.
3: एग्जैक्टली जो है
4: वो बिलकती महिलाएं और बच्चे जो है
3: बिल्कुल उनकी तस्वीरें, तो ये उनका रिवेंज था
4: जी.
3: ऐसे टारगेट्स मतलब सेलेक्ट किए गए कि जिनके बारे में हमें रिलायबल इंटेलिजेंस थी, वहाँ पे जो है टेररिस्ट का वो है कैंप्स है
4: जी,
3: या उनके जो है हेडक्वार्टर से ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं. तो ये जो टारगेट्स थे इसमें LOC के पास भी थे, IB के पास भी थे
4: जी,
3: कुछ डीप इनसाइड भी थे. कहते हैं कि 9 टारगेट्स सेलेक्ट किए थे
4: जी.
3: ये ऑपरेशन हमारा 7 मई को शुरू हुआ था एंड विद इन नेक्स्ट 25-30 मिनट्स जो है इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने जो उनको डेजिग्नेटेड टारगेट्स दिए गए थे उन पे एक साथ जो है हमला किया. जो है इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी ड्रोन्स और जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वेपन्स होते हैं उनसे जो है टारगेट्स को एंगेज किया था. और उसी के साथ साथ उसी समय जो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी उन्होंने जो डीप इनसाइड पाकिस्तान में जो टारगेट्स थे उनके ऊपर अटैक किया था.
4: अच्छा।
3: कोई याद होगा कि उस समय राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था एंड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स जो है लॉन्च हुई थी, मिनिशंस यूज हुए थे. इट वॉज अ वेरी मतलब एडवांस्ड काइंड ऑफ ऑपरेशन. एंड एक जो बहुत अच्छी बात थी इस ऑपरेशन में, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ध्यान में रखा गया था कि हमारा एम किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना,
4: वहां के आम नागरिकों पर कोई लक्ष्य नहीं था,
3: नहीं था लक्ष्य नहीं था
4: जी.
3: दूसरा हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हम इसके कारण जो है एक वॉर एस्केलेट करना चाहते हैं, सिचुएशन एस्केलेट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांटेड टू प्रोजेक्ट इट
4: जी
3: दैट इफ समथिंग हैपेंस वी आर केपेबल एंड वी विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज ऑफ इट
4: जी.
3: दैट वाज अ क्लियर कट मैसेज व्हिच वाज देयर. एंड तीनों जो हमारे सर्विसेज हैं क्योंकि एट द सेम टाइम नेवी वाज अलर्टेड तो दे वर एक्टिव इन अरेबियन सी कि अगर वहां से कुछ हो सकता है तो उसमें मतलब जो है वो एक्शन ले सके. तो जितने जो हमारे टारगेट थे डेजिग्नेटेड टारगेट्स थे दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड.
4: यहाँ पर सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, इसका यह मतलब है कि हमारी भारतीय यानी विशेष रूप से थल सेना ने सीमा पार करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें हमारे हथियारों से ही हमने वो काम कर डाला.
3: एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो लोकेशंस थी ऐसी थी जो हमारे जो वेपन्स हैं हमारे पास आर्टिलरी है उसमें स्पेशली ड्रोन्स का काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ था, वो उसके हद में थे जो आर्मी को टारगेट्स मिले थे. तो देयर वाज नो नीड टू क्रॉस ओवर. एंड जैसे मैंने अभी जिक्र किया जो वेपन्स जैसे यूज किए थे बहुत एडवांस तरह के वेपन्स थे ना, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, एक लॉयटरिंग एमिनेशन करके बोलते हैं जो जाके उस जगह के ऊपर अब टारगेट ढूंढ के ही हिट करता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरिया कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स थे ना, तो काफी एडवांस मतलब जो थे. देन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो इस्तेमाल हुए थे. अब जब भी हुआ तो नेचुरली इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि एक पाकिस्तान से रिटेलिएशन भी होगा
4: जी, बिल्कुल है ना? कुछ तो प्रतिशोध लिया जाएगा,
3: हो गया होगा एंड हुआ भी. उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट पाकिस्तान ने जो है ड्रोन्स अटैक किए थे और आर्टिलरी फायर हुआ था LC के ऊपर, लेकिन उससे हमें इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड थे
4: जी.
3: एंड हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है मल्टी लेयर्ड है जो होता है वो इट वाज वेरी इफेक्टिवली वाज एबल टू मतलब जो है जो ड्रोन्स थे उनके अटैक्स थे
4: उनके हमलों को नाकाम
3: कर पाया जो है. तो ये मतलब बहुत सक्सेसफुली रहा था.
4: और तो सर ये प्रणाली जो थी जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की है वो हमारी स्वदेशी प्रणाली है,
3: उसमें स्वदेशी भी है और उसमें इम्पोर्टेड भी है. उसके बाद जो है पाकिस्तान फर्दर लॉन्च्ड एयर अटैक्स जो उन्होंने किया था एयरफील्ड्स पे हमारे जो अटैक किया था, हाउएवर हमें कोई डैमेज नहीं रहा था एंड उसके काउंटर के लिए 10th मई को फिर से जो है इंडियन एयरफोर्स ने बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है लॉन्च किए थे, है ना, जिसमें कि उनके पाकिस्तान के एयरफील्ड्स और उनके काफी वाइटल इंस्टॉलेशंस थे जिसको कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। ये जब हुआ है 10th को, देन पाकिस्तान प्रपोज्ड सीज फायर, बिकॉज वो भी इस कंडीशन में नहीं था कि वो उसको
4: आगे बढ़ाए
3: ठीक है। एंड सी इंडियंस का जैसे जो इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन गवर्नमेंट का राज जो है बिल्कुल एम बहुत क्लियर था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, वी डोंट वांट इट टू एस्केलेट टू अ वॉर, लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, जो ये कायरतापूर्ण आप जो हरकत कर रहे हैं, आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट आ रहे हैं क्योंकि उनके पास जो हथियार मिलते हैं जिस तरह से तैयारी के साथ आते हैं तो पता चलता है कि उनको किसी ने सिखाया है, उनको बताया है, उनको पूरी इंटेलिजेंस है, उनको इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने आप नहीं कर सकते। आई मस्ट से सो इट वाज अ मेजर विक्ट्री एंड इट एक्चुअली डिस्प्लेड जो रिजोल्यूटनेस है हमारी गवर्नमेंट की, उनका डिटर्मिनेशन है कि भाई अगर ऐसा आप करेंगे तो हम भी आपका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस ऑपरेशन में अगर आप देखें तो टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय हुए, काफी जो की टेररिस्ट थे वो मारे गए एंड हमने जो एक आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है जो है कि क्रॉस बॉर्डर प्रिसिशन के साथ अटैक करने की कैपेबिलिटी वो हमने दुनिया को दिखाई
4: बिल्कुल
3: कि हम ये कर सकते हैं। इट वाज ए वेरी कोहेसिव काइंड ऑफ ऑपरेशन जिसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इसमें सिर्फ तीनों आर्म फोर्सेस ही नहीं इन्वॉल्व थी, और भी जो पुलिस फोर्सेस थी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो काफी लेवल पे जो है, तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इन दैट आल्सो कि इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल जॉइंट ऑपरेशन, ठीक है। एंड एक तरह से मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो पहलगाम में हुआ वहाँ पे और जो वहाँ पे शहीद हुए जो
4: पर्यटक थे
3: शायद कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मा को शांति मिली होगी,
4: बिल्कुल सर,
3: उनके परिवार वालों को भी एक तो महसूस हुआ होगी कि कोई उनके साथ खड़ा है।
4: तो सर आपने अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया वो तो अभी बिल्कुल वर्तमान की घटना है समझ लीजिए, क्या ऐसे ऑपरेशंस भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा और भी किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में?
3: बिल्कुल, अगर हम पीछे जाते हैं
4: जी
3: मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में हमने जो है उग्रवादी है उनके अगेंस्ट म्यांमार में ऑपरेशन किया था।
4: अच्छा,
3: वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जो हैं जहाँ पे कि काफी समय से जो है इंसर्जेंट एक्टिविटी
4: उग्रवादी समस्या
3: रही है और चल रही है।
4: जी जी,
3: तो ऐसे ही क्या हुआ था कि 4 जून को एक उग्रवादी संस्था है,
4: अच्छा,
3: उन्होंने चंडेल डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर के एक एम्बुश किया था,
4: अच्छा,
3: जिसमें कि एक इन्फेंट्री बटालियन के 18 सोल्जर्स मारे गए थे एंड ये एम्बुश करने के बाद जो है ये लोग म्यांमार की तरफ चले गए थे क्योंकि म्यांमार में इनके पास जो है सेफ हेवन्स थे, वहाँ पे इनके हाइड आउट्स थे
4: जी।
3: तो उस समय एक ऑपरेशन जो है हम किया गया था जिसमें कि आर्मी ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन लॉन्च किया था,
4: अच्छा,
3: ठीक है। अगेन इट वाज कोऑर्डिनेटेड एट वेरी हाई लेवल, अगेन इट वाज अ डिसीजन वाज टेकन कि ओके वेदर दे आर इन म्यांमार, मतलब वो दूसरी कंट्री में हैं, फिर भी लेकिन हम जाएंगे और उनको एक जो है सबक जरूर सिखा के आएंगे।
4: तो सर यहाँ पर मैं एक प्रश्न ही आता है कि जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो क्या हम वहाँ की सरकार को इसके बारे में सूचित करते हैं?
3: बिल्कुल करते हैं, जैसे अगर वो फ्रेंडली कंट्री है तो डेफिनेटली जो है हम बिल्कुल किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहने देना चाहते हैं, इसीलिए वही कारण है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एट हायर लेवल जो है। तो इसमें जो है ईस्टर्न थिएटर में हमारी जो एलिट स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जो है 70 कमांडोस थे,
4: अच्छा,
3: जो कि गए और सरप्राइज मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है ये पूरा पैदल गए थे।
4: अच्छा, सर मैंने सुना 50 किलोमीटर के आसपास था।
3: हाँ, उतना था, 20 से 30 किलोमीटर के करीब जो लोग गए थे, था जो कैंप हाइडआउट्स थे एंड सिंस मैं वहां रहा हूं मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इट इज नॉट सो इजी कि रात के अंधेरे में आप जो है दूसरी जगह जा रहे हैं जंगल के बीच में से जहां आपको रास्ते नहीं पता है, आपको ये किसी तरह का और सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बट यू नो कि यहां पे हमने करना है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, एक तो इन्फिल्ट्रेशन होता है अंदर जाना, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूशन होता है ऑपरेशन करना, तीसरा एक्सफिल्ट्रेट करना होता है
4: वापस आना।
3: जी, तो ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं बहुत ही सक्सेसफुली वहाँ पे जो हाइडआउट्स थे उनको रेड किया, और रेड करने के बाद जो है ऑलमोस्ट 38 to 40 इंसर्जेंट्स मारे थे एंड सक्सेसफुली दे इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम देयर जो है. दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट एक्चुअली ऑन 9th ऑफ जून तब हुआ था एंड अगेन इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन. यू कैन वेल इमेजिन इसके लिए यूनिट को एक कीर्ति चक्र, एक शौर्य चक्र और 5 सेना मेडल बहादुरी के लिए जो है करेज के लिए नवाजा गया था. तो दिस वाज वन ऑपरेशन व्हिच वाज कैरिड आउट ठीक है द सेम काइंड. फिर 2016 में अगर आपको याद हो उरी अटैक हुआ था.
4: जी सर,
3: उरी अटैक में भी अगेन जो है 18 सितंबर को जो टेररिस्ट हैं, चार टेररिस्ट हैं उरी में, हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसमें 19 सोल्जर्स को मारा था. तो अगेन इसमें जो है गवर्नमेंट ने ना रिजॉल्व प्रॉपर किया था कि भाई हमको जो है इसका जवाब देना है एंड इट वाज डिसाइडेड कि उस समय डिसाइड किया कि जो काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करेंगे अक्रॉस द LOC स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बेस्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो टेररिस्ट लोकेशन थी. क्या होता है कि जो उस इलाके में अगर आप देखेंगे LC जो है वहां से जहां से भी ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो उसके पीछे इनके जो है बेसिस होते हैं,
4: बेस कैंप्स होते हैं
3: वहां से लॉन्च पैड्स बोलते हैं वो भी होते हैं जहाँ से लोग आते हैं. तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है अगेन हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है इन्होंने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था
4: जी.
3: और 28 सितंबर को
4: जी.
3: ये जो ऑपरेशन था मतलब इसकी खासियत ये थी कि एक बहुत बड़े स्केल पे था ये.
4: अच्छा,
3: मतलब इट वाज नॉट ए स्पेसिफिक जगह पे किया था, ऑलमोस्ट ओवर अ स्प्रेड ऑफ अराउंड 80-90 किलोमीटर के स्प्रेड में. तो काफी सारी जो टीम्स थी
4: जी अलग अलग भागों में बटे हुए
3: अलग अलग उसमें गई थी
4: जी जी.
3: एंड जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो टेररिस्ट कैंप्स थे
4: जी
3: उनको डिस्ट्रॉय किया था. और उसको करने के बाद जो है सक्सेसफुली दे केम बैक विदाउट एनी कैजुअल्टी.
4: एक ही रात के अंदर,
3: एक ही रात में जो आए थे ये लोग. एंड इट वॉज अगेन ए मेजर ब्लो टू द टेररिस्ट एंड पाकिस्तान आर्मी. ये जो है मतलब जैसे हम बताना चाहते हैं कि मतलब सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस पहले से चले आ रहे थे. मतलब इन द सेंस पूर्वजी ये 2015 से शुरू हुआ था. म्यांमार के बाद जो है हमने नेक्स्ट अगर आपको याद हो उरी अटैक के बाद 2016 में किया था जिसका भी हमने जिक्र किया. एंड फिर 2019 में जब 14 फरवरी को पुलवामा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें कि 40 हमारे बहादुर जवान CRPF के मारे गए थे, शहीद हुए थे. ये जो हमारे 40 बहादुर जवान शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए और साथ में जो है अगेन मतलब इट वाज अ रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट की जो है हमें मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए. 26 फरवरी को इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट करी थी और ये जो है बाय एयरफोर्स हुई थी. एयरफोर्स ने अटैक किया था जिसमें कि बालाकोट में टेररिस्ट का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था उसको जो है सक्सेसफुली बर्बाद किया था, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बर्बाद हुआ था और उसके अलावा जो है काफी सारे टेररिस्ट मारे गए थे. मैं जिक्र करना चाहूंगा उस समय विंग कमांडर अभिनंदन जी का, वो इस ऑपरेशन में शामिल थे और उनका MiG-21 जो है वो शॉट डाउन हुआ था जिसमें वो सक्सेसफुली बेल आउट हुए थे. लेकिन जब वो नीचे मतलब जमीन पे जब उनके पैर लगे तो उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान में है. बट अगर आपको याद हो उनका चेहरा उस समय भी जो है इट वाज मतलब कोई उनके चेहरे पे डर नहीं था, कुछ नहीं था, शिकन भी नहीं थी और पाकिस्तानी उनसे लगातार पूछ रहे थे आप कौन है क्या है, तो जितना वो बता रहे थे मेरा नाम ये है, मेरा रैंक ये है, दैट्स ऑल एंड वंडरफुल. मतलब जो है
4: वो ये तो सर प्रशिक्षण का कमाल है
3: बिल्कुल. और सच में इस बहादुर अफसर के लिए तो मतलब तारीफ ही निकलती है मुझसे. एंड ये देखिए उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट का कितना फर्म मतलब जो स्टांस था एंड डिप्लोमेटिकली कितना मतलब जो है एफर्ट्स थे कि विंग कमांडर अभिनंदन जी जो है दो दिन के बाद मतलब जो है ऑन 1st March मतलब ही केम बैक सेफ एंड साउंड टू इंडिया.
4: इतना दबाव बना कि उन्हें वापस उनको करना पड़ा
3: ठीक है. तो ये कुछ ऑपरेशंस का जिक्र किया है मैंने जो हुए हैं, इसके अलावा भी हैं
4: जी.
3: बट एक जो सब बातों से जो पता चलता है कि जो हमारा गवर्नमेंट का स्टैंड है कि अगर आपने हमारे पे कुछ किया तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, दैट इज अ मेजर थिंग व्हिच हैज कम आउट ऑफ दिस.
4: अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं
3: बिल्कुल. हम शांति प्रिय हैं ठीक है, जैसे आपने शुरू में बोला था
4: जी,
3: लेकिन जो है अगर आप हमारी शांति भंग करेंगे तो आपको उसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा. एंड आने वाले वक्त में भी अगर कुछ होता है तो आई एम वेरी श्योर कि वी विल ऑलवेज स्टैंड एंड विल अटैक देम. हम जो है किसी भी चीज का बदला जरूर लेंगे.
4: वो कहते हैं ना सर कि यदि सशक्त है सेना तो सुरक्षित है सीमा.
3: एग्जैक्टली. अरे वाह
4: जी. तो श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपने आधारभूत ढांचे और मिलिट्री तकनीक को बेहद ही मजबूत नहीं किया, अपने इरादों को भी साफ किया है. उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही भारत का अब न्यू नॉर्मल है. आतंकवाद, उग्रवाद के नेटवर्क और उनके प्रायोजकों को स्पष्टता के साथ निशाना बनाकर इन ऑपरेशंस के माध्यम से भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि आतंकियों और उग्रवादियों को जवाब सीमाओं या कूटनीतिक जटिलताओं की परवाह किए बिना त्वरित और उचित तरीके से दिया जाएगा. यहाँ पर शेर है जो कि साहिर साहब का है, उसे कहना यहाँ पर बेहद ही लाजमी रहेगा. सर, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ. हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ. अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही.
3: बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने. This is what the policy is.
4: तो सर, इसी शेर के साथ आज हम इस कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं. आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: थैंक यू पूर्वा जी एंड थैंक यू श्रोताओं. जय हिंद.
4: जय हिंद सर. तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का. और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले. तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत. 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए.
5: हमारी सेना हमारा गर्व. अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे. सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम. ये है देश का चैनल, देश के लिए.

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन जुगलबंदी। कलाकार हैं आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।

0: ये गायन जुगलबंदी हुई भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में।
1: राधे राधे। प्रेक्षागृह में उपस्थित आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, गुणीजनों को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्रणाम। सबको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे लिए आज एक बहुत ही खास अवसर है, क्योंकि भोपाल की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। ग्वालियर का जन्म, भोपाल में आगे की सारी परवरिश, और 14-15 साल की थी तब पुणे चली गई थी आगे गाना सीखने के लिए। तो बचपन से ही भारत भवन एक बहुत ही खास मंच रहा है मेरे लिए। बड़े बड़े उस्तादों को, पंडितों को, गायकों को सुना है, उनसे इंस्पायर हुए, ऐसा लगा कि यहाँ पे गाना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए। तो आज गुरु कृपा से, परमेश्वर कृपा से आज यहाँ हैं। कई बार आती गई भारत भवन गाने के लिए, आज फिर से हैं हम लोग यहाँ पे। आज आस्था मेरी परम सखी, हम लोग दोनों यहाँ पे हैं। तो आज हम लोग राग मेघ से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पारंपरिक बंदिश है मध्य विलंबित झपताल में, जिसके बाद द्रुत बंदिश पंडित अरुण भादुरी जी की रचना है। आज हमारे लिए संगत में रामेंद्र जी हैं, नितिन भाई हैं, महेश भाई हैं। हम लोग शुरू करते हैं।

0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी की गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और BDL के बारे में। ये किस तरह हमारी सेनाओं की आंख, कान, तकनीकी और दिमाग बनकर देश की सुरक्षा को मजबूत करती है। रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से BEL ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: लेकिन आज एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि अगर BEL सैनिकों को तकनीकी शक्ति देती है, हाल आकाश में उड़ने वाले विमान बनाती है, तो समुद्र की विशाल लहरों पर भारत की शक्ति का निर्माण आखिर कौन करता है, कौन बनाता है? वो विशाल युद्धपोत जो हजारों टन वजनी होते हैं, कौन तैयार करता है वे पनडुब्बियां जो समुद्र की गहराइयों में रहकर देश की सुरक्षा करती हैं?
0: इन सारे प्रश्नों के उत्तर माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में छिपे हुए हैं। आइए चलते हैं रुचि और दादू के पास। रुचि के सवाल और दादू के उत्तर से हम और बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या है। और श्रोताओं, अब हमारी रुचि बिटिया भी सियानी हो गई है, वो कॉलेज जाने लगी है। तो आइए सुनते हैं देश के संस्थान।
2: दादू, ये आप कितनी अच्छी जगह मुझे लेकर आए हैं। ये समुद्र कितना दूर तक फैला हुआ है ना, जहाँ तक नजर घुमाओ वहाँ तक बस नीला पानी। थैंक यू सो मच दादाजी मुझे यहाँ लाने के लिए, वरना मुझे तो लगा था इस बार मेरी छुट्टियाँ यूं ही बर्बाद हो जाएंगी।
3: मुझे लगा इस बार मैं बिटिया रानी को क्यों ना एक संस्थान की कहानी सुनाने की बजाय दिखाई दूं। अब तुम कॉलेज ज्वाइन करोगी तो फिर तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा हैं? अपने दादू के साथ कहीं घूमने जा पाओ।
2: अरे दादू, आप भी ना, मैं कॉलेज जा रही हूँ अपने ही शहर में, आपसे कहीं दूर थोड़े जा रही हूँ।
3: वो देखो बेटा, समुद्र में दूर एक जहाज भी है।
2: कहाँ है दादू?
3: अरे वो देखो, एकदम सामने।
2: हाँ हाँ हाँ, दिखा दिखा। वाव दादू, कितना बड़ा शिप है। अच्छा दादू, पिछली बार आपने मुझे BEL BDL के बारे में बताया था। रडार, मिसाइल प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन दादाजी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई।
3: कौन सी बात बिटिया?
2: ये बात कि यदि कोई युद्धपोत समुद्र में तैनात हो और उस पर BEL की तकनीक लगी हो, तो सवाल ये है कि उस युद्धपोत को बनाता कौन है?
3: भाई तुमने तो आज का पूरा विषय ही पूछ लिया, यही देखने तो आज हम यहाँ पर आए हैं बेटा।
2: सच में दादू?
3: हाँ हाँ बेटा, सच में। तो चलो, आज हम ऐसे संस्थान की कहानी जानेंगे जो भारत की समुद्री शक्ति का निर्माता है।
2: और उसका नाम क्या है?
3: उसका नाम है बेटा माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे संक्षेप में MDL कहा जाता है।
2: सच में दादू? आज आप MDL की कहानी सुनाने वाले हैं?
3: क्या तुम जानती हो? हाँ भाई, हम तो जमीन पर रहते हैं, फिर समुद्र की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
2: ये तो मैंने सोचा नहीं दादू।
3: देखो बेटा, भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है, और ये सब तो तुम जानती ही हो।
2: आपने पहले बताया था दादू।
3: तो ये भी याद रखो कि दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता हुआ जाता है। भारत का भी बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। तेल, गैस, मशीनें, खाद्यान्न और अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं जहाजों से ही आती जाती हैं बच्चे।
2: तो दादाजी, समुद्री मार्ग सुरक्षित ना हो तो समस्याएं हो सकती होंगी।
3: बिल्कुल बेटा, इसीलिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उनके लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाता है माझगांव डॉक।
2: अब समझी दादाजी मैं। अच्छा ये बताइए ना कि ये MDL की स्थापना कब की गई थी?
3: इसकी कहानी बहुत पुरानी है। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तभी इसकी शुरुआत हो चुकी थी।
2: सच में?
3: 18वीं शताब्दी में मुंबई क्षेत्र में एक छोटे जहाज निर्माण और मरम्मत यार्ड के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी बेटा।
2: 18वीं शताब्दी दादाजी? इसका मतलब उस समय भी जहाज बनाए जाते थे?
3: बिल्कुल, समुद्री व्यापार उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे ये यार्ड विकसित होता गया, लेकिन बेटा इसके पहले ये कई विदेशी कंपनियों के अधीन भी रहा। फिर 1934 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में संगठित किया गया।
2: तो फिर आजादी के बाद क्या हुआ?
3: 1960 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद से इसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया, भारत के लिए युद्धपोत बनाना, भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
2: यानी दादाजी, पहले ये सामान्य जहाजों पर काम करता था जो समुद्री व्यापार के काम आते थे, और बाद में युद्धपोतों का निर्माण शुरू हुआ होगा।
3: बिल्कुल बेटा, और यही बदलाव इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्ड बनाता है।
2: दादू, तभी लोग इसे राष्ट्र का पोत निर्माता कहते होंगे।
3: हाँ बेटा, क्योंकि भारत के अनेक प्रसिद्ध युद्धपोत और पनडुब्बियां इसी संस्थान में बनी हैं।
2: मतलब भारतीय नौसेना की शक्ति का बड़ा हिस्सा यही बनाया गया है।
3: बिल्कुल बेटा, लेकिन बिटिया, युद्धपोत निर्माण कोई आम काम नहीं है, क्योंकि एक आधुनिक युद्धपोत में लाखों पुर्जे, हजारों किलोमीटर तक फैली तारें, अत्याधुनिक रडार, मिसाइल प्रणाली, हेलीकॉप्टर, डेक और कंप्यूटर नेटवर्क लगे होते हैं बेटा।
2: दादू, मतलब ये समुद्र में चलता फिरता कोई शहर जैसा होता होगा।
3: एकदम सही कहा बेटा, वास्तव में आधुनिक युद्धपोत एक तैरते हुए तकनीकी नगर की तरह ही होता है।
2: दादू, माझगांव डॉक का पहला बड़ा युद्धपोत कौन सा था?
3: INS नीलगिरी।
2: और उसकी खास बात क्या थी?
3: वो आधुनिक भारत में निर्मित प्रमुख युद्धपोतों में से एक था बेटा। उसका निर्माण ब्रिटिश तकनीकी सहयोग से हुआ था, लेकिन उसके निर्माण ने भारतीय इंजीनियरों को युद्धपोत निर्माण की बारीकियां सीखने का अवसर दिया।
2: मतलब ये भारतीय इंजीनियरों के लिए युद्धपोत निर्माण सीखने की शुरुआत थी।
3: बिल्कुल, अक्टूबर 1968 में उसका जलावतरण हुआ बेटा, और 1972 में वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया।
2: दादाजी, ये जलावतरण क्या होता है?
3: अरे बुद्धू रानी, नाम से समझ नहीं आया क्या?
2: क्या दादू, आप भी?
3: अरे बेटा, जब जहाज पहली बार पानी में उतारा जाता है उसे जलावतरण कहते हैं।
2: अब समझी मैं। अच्छा ये बताइए, क्या उस समय लोगों को विश्वास था कि भारत इतने बड़े युद्धपोत भी बना सकेगा?
3: हर कोई विश्वास नहीं करता था। कई लोगों का मानना था कि भारत को हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने मेहनत की, दिन रात काम किया, नई तकनीक सीखी, और जब INS नीलगिरी समुद्र में उतरा तब वो केवल एक जहाज नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था बेटा।
2: वाह दादू, इसका मतलब वो दिन किसी सपने के पूरा होने जैसा था।
3: बेटा,
2: तो फिर हमारा बिना किसी बाहरी सहयोग के बनाया गया पहला युद्धपोत कौन सा था दादाजी?
3: INS गोदावरी। इसका जलावतरण मई 1980 में हुआ बेटा, और दिसंबर 1983 में इसे नौसेना को सौंप दिया गया।
2: अच्छा दादू, इसके बाद क्या भारत ने और भी युद्धपोत बनाए थे?
3: हाँ बिटिया, नीलगिरी की सफलता ने भारतीय इंजीनियरों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय नौसेना ने देखा कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक युद्धपोत बनाने में सक्षम है, इसीलिए आगे और बड़ी जिम्मेदारियां माझगांव डॉक को सौंपी गईं।
2: दादू, ये श्रेणी क्या होती है? मैंने कहीं सुना था कि नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी।
3: बेटा, युद्धपोतों में श्रेणी का मतलब होता है एक जैसे डिजाइन और विशेषताओं वाले जहाजों का समूह।
2: अच्छा।
3: जैसे किसी परिवार के कई सदस्य एक ही परंपरा से जुड़े होते हैं, वैसे ही एक ही डिजाइन पर बने कई युद्धपोत एक श्रेणी के कहलाते हैं।
2: यानी नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी अलग अलग पीढ़ियों के युद्धपोतों के समूह थे।
3: हाँ बच्चे, और हर नई श्रेणी अपने से पहले वाली श्रेणी की तुलना में कुछ नई क्षमताएं लेकर आती थी।
2: दादू, ये गोदावरी श्रेणी की जिम्मेदारी क्या थी?
3: बेटा, नई पीढ़ी के युद्धपोत विकसित करने की। ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक आधुनिक, अधिक सक्षम और अधिक स्वदेशी तकनीक से बने हों।
2: दादू, तो क्या गोदावरी श्रेणी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी?
3: हाँ बेटा, क्योंकि ये केवल एक नया युद्धपोत नहीं था बल्कि भारतीय नौसेना और भारतीय अभियंताओं के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था।
2: वो भला कैसे?
3: नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोतों के निर्माण में विदेशी सहयोग अपेक्षाकृत ज्यादा था, लेकिन गोदावरी श्रेणी में भारतीय नौसेना, भारतीय डिजाइनरों और अभियंताओं की भूमिका कहीं अधिक बढ़ गई थी।
2: यानी भारत केवल युद्धपोत नहीं बना रहा था बल्कि उन्हें खुद भी डिजाइन करना सीख रहा था दादाजी।
3: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
2: अच्छा, और गोदावरी श्रेणी की क्या खासियत थी?
3: देखो बेटा, इन युद्धपोतों का आकार पहले की तुलना में बड़ा था। इनमें अधिक हथियार और उपकरण लगाए जा सकते थे, साथ ही इन पर दो बड़े हेलीकॉप्टर संचालित किए जा सकते थे, जिससे समुद्र में उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती थी।
2: वाह दादाजी, यानी ये केवल बड़े जहाज नहीं थे बल्कि चलते फिरते समुद्री सुरक्षा केंद्र जैसे थे।
3: हाँ बेटा, इनमें बेहतर रडार, उन्नत संचार प्रणालियाँ और अनेक आधुनिक सुविधाएं थी।
2: यानी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में ये भारत की एक नई छलांग थी।
3: हाँ, नए प्रकार के युद्धपोत विकसित करने की छलांग। ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक आधुनिक और अधिक स्वदेशी हों।
2: दादाजी, यानी नीलगिरी श्रेणी की तरह ही गोदावरी श्रेणी भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी।
3: बिल्कुल, इसे भारतीय युद्धपोत निर्माण की परिपक्वता का प्रतीक माना जाता है।
2: फिर
3: इसके बाद INS गंगा और INS गोमती बनाए गए। इन युद्धपोतों ने वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की बेटा।
2: दादाजी, एक बात समझ में नहीं आई मुझे।
3: पूछो पूछो बेटा।
2: क्या सभी युद्धपोतों के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे?
3: हाँ बच्चे, भारत की महानदियों के नाम पर, ताकि वे हमारी संस्कृति और शक्ति दोनों का प्रतीक बन सके।
2: अच्छा, चलिए दादाजी, और बताइए ना कि युद्धपोत और क्या क्या करते हैं।
3: देखो बेटा, जरा कल्पना करो कि समुद्र में हजारों जहाज चल रहे हैं। कुछ व्यापारिक हैं, कुछ मछली पकड़ने वाले हैं, लेकिन उनमें से किसी में कोई दुश्मन की गतिविधि भी हो सकती है। बस इसीलिए हमारे युद्धपोत ऐसी घुसपैठ से बचने के लिए निगरानी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, समुद्री डाकुओं से मुकाबला करते हैं और आपदा के समय सहायता पहुंचाते हैं और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते हैं बेटा।
2: मतलब हमारे युद्धपोत समुद्र के प्रहरी हैं दादाजी।
3: बिल्कुल बिल्कुल प्रहरी हैं बेटा।
2: अच्छा दादू, युद्धपोत निर्माण तो मुझे समझ में आया, लेकिन उसके बाद इस डॉक को कौन सी बड़ी परियोजना मिली है?
3: इसके बाद इसे दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व मिला बेटा।
2: विध्वंसक, ये क्या होता है दादाजी?
3: देखो बेटा, हर युद्धपोत का काम एक जैसा नहीं होता। कुछ जहाज सैनिकों और सामान को ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ समुद्र में गश्त करते हैं और कुछ दुश्मन पर तेज और प्रभावी आक्रमण करने के लिए। विध्वंसक, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
2: अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर।
3: हाँ, ऐसा ही एक शक्तिशाली युद्धपोत होता है बेटा वो।
2: तो उसका मुख्य काम क्या होता है दादाजी?
3: इसका काम अपने बेड़े की सुरक्षा करना होता है, दुश्मन के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों का सामना करना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं आक्रमण करना होता है। इसीलिए इसे नौसेना के सबसे सक्षम और बहुउद्देशीय युद्धपोतों में गिना जाता है।
2: यानी एक ही युद्धपोत कई तरह की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
3: इसमें अत्याधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, टॉर्पिडो, हेलीकॉप्टर और उन्नत संचार प्रणालियां होती हैं बच्चे। इसीलिए इसे समुद्र का एक चलता फिरता युद्ध केंद्र भी कहा जा सकता है।
2: वाह दादाजी, यानी दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक बनाना किसी भी शिपयार्ड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी।
3: हाँ, जब किसी भारतीय शिपयार्ड को इतने उन्नत युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी मिलती है तो ये केवल उस संस्थान पर नहीं बल्कि भारतीय अभियंताओं, डिजाइनरों और तकनीकी क्षमता पर देश के विश्वास का प्रतीक भी होता है बेटा। अंग्रेजी में इसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये सामान्य युद्धपोतों से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है।
2: सच में? कितना शक्तिशाली दादाजी?
3: लगभग 6,700 टन वजनी। उस समय एशिया के क्षेत्र में बने सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक था बेटा, और इस श्रेणी का पहला पोत था INS दिल्ली। इसका जलावतरण 1991 में हुआ और 1997 में ये नौसेना में शामिल हो गया।
2: और उसके बाद?
3: उसके बाद INS मैसूर और INS मुंबई ये तीनों भारतीय नौसेना शक्ति के प्रतीक बने।
2: दादाजी, क्या इन पर मिसाइलें भी होती हैं?
3: हाँ बेटा, आधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, हेलीकॉप्टर और भी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ।
2: दादू, मैंने कार्वेट का नाम भी सुना है, ये बताइए ना ये क्या होता है?
3: कार्वेट छोटे आकार का युद्धपोत होता है बच्चे, लेकिन उसकी गति और कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है।
2: मतलब छोटा लेकिन ताकतवर, मेरे जैसा।
3: बिल्कुल, माझगांव डॉक ने INS खोखरी और INS कुठार जैसे कार्वेट भी बनाए बेटा।
2: और दादाजी, ये मिसाइल बोट?
3: ये छोटे लेकिन बेहद तेज युद्धपोत होते हैं। इनका मुख्य हथियार मिसाइलें होती हैं बच्चे।
2: दादू, ये कितने घातक होते हैं?
3: इतने घातक कि दुश्मन को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता।
2: वाह।
3: INS विभूति, विपुल, नाशक और प्रबल जैसी मिसाइल बोट भी माझगांव डॉक ने बनाई है।
2: दादू, क्या ऐसी कोई घटना आपको याद है जिससे हमें भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा लग सके?
3: 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर साहसिक हमला किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम है?
2: ऑपरेशन ट्राइडेंट।
3: हाँ, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पूरी दुनिया को उस समय भारतीय नौसेना की क्षमता दिखाई थी।
2: क्या उस समय भी स्वदेशी जहाजों का महत्व था दादाजी?
3: हाँ बेटा, उस युद्ध ने भारत को ये समझा दिया कि समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बाद में युद्धपोत निर्माण को और अधिक गति दी गई।
2: दादू, मुझे सबसे ज्यादा पनडुब्बियों के बारे में जानना है आपसे। वो कैसी होती हैं, किस तरह से काम करती हैं?
3: पनडुब्बी समुद्र के भीतर चलने वाला युद्धपोत है। ये पानी की सतह के नीचे कई दिनों तक रह सकती है
2: और दिखाई भी नहीं देती।
3: हाँ, इसीलिए इसे समुद्र की अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है।
2: वाह दादाजी, वाह। दादू, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिक कैसे रहते होंगे?
3: बहुत अनुशासन के साथ, क्योंकि उसमें सीमित जगह होती है बच्चे। हर वस्तु का उपयोग सोच समझ कर किया जाता है। पनडुब्बी में दिन रात का अंतर भी महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए उन कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं बच्चे।
2: सचमुच दादाजी, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
3: इसीलिए तो पनडुब्बी निर्माण दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। बिटिया, आप जब भी तुम समुद्र में किसी बड़े जहाज को देखो तो केवल उसका आकार मत देखना, उसके पीछे हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, डिजाइनरों और श्रमिकों की मेहनत को भी देखना।
2: जी दादाजी, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगी। अच्छा ये बताइए कि माझगांव डॉक में काम करने वाले कितने मेहनती होते हैं?
3: बहुत मेहनती होते हैं बेटा, उनकी यही मेहनत और समर्पण राष्ट्र की समुद्री शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: दादू, माझगांव डॉक ने नीलगिरी, गोदावरी, दिल्ली, खुकरी और अनेक युद्धपोतों के माध्यम से भारतीय नौसेना को नई शक्ति प्रदान की है। ये भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की नई शुरुआत थी। आगे चलकर कई प्रसिद्ध युद्धपोत श्रेणियां विकसित हुईं। इसका मतलब है कि माझगांव डॉक का भारत को दुनिया के बड़े युद्धपोत निर्माताओं की श्रेणी में पहुंचाने में एक बड़ा और सराहनीय योगदान रहा होगा।
3: लेकिन बेटा, एक प्रश्न अभी भी बाकी है जो तुम पूछना भूल गई हो।
2: अब कौन सा प्रश्न है दादाजी?
3: वो ये कि आखिर इतना विशाल युद्धपोत बनता कैसे है? क्या इसे किसी कार की तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है?
2: सच में दादू, मैं आपसे ये वाला सवाल बस पूछने वाली थी कि एक युद्धपोत को किसी इमारत जितना बड़ा होता है, उसे आखिर बनाया कैसे जाता होगा?
3: लेकिन तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछ लिया। युद्धपोत बनाना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में गिना जाता है बच्चे।
2: इसका मतलब ये किसी एक इंजीनियर के बस की बात तो नहीं है दादाजी?
3: अरे नहीं बिटिया, एक युद्धपोत के निर्माण में हजारों लोग मिलकर काम करते हैं। नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, वेल्डर, टेक्नीशियंस, गुणवत्ता विशेषज्ञ और कई सारे वैज्ञानिक।
2: दादू, जब मैं इतने बड़े बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में आपसे सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या साधारण परिवार का कोई बच्चा भी भविष्य में ऐसे बड़े संस्थान का हिस्सा बन सकता है?
3: क्यों नहीं बिटिया, ये सभी लोग एक साधारण परिवार से ही आते हैं। दरअसल माझगांव डॉक BEL, हाल DRDO, इसरो इन सभी संस्थानों की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा ही तो हैं। यहाँ काम करने वाले ये अधिकांश वैज्ञानिक, इंजीनियर और अधिकारी कभी तुम्हारी तरह ही स्कूल में पढ़ने वाले आम बच्चे थे।
2: इसका मतलब कि मेहनत करके कोई भी यहाँ पहुँच सकता है?
3: बिल्कुल पहुँच सकता है। सफलता का रास्ता हमेशा मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा से होकर गुजरता है बेटा।
2: समझ गई दादाजी। अच्छा ये बताइए ना कि नेवल आर्किटेक्ट क्या होता है?
3: नेवल आर्किटेक्ट बेटा जैसे कोई वास्तुकार भवन का नक्शा बनाता है, वैसे ही नेवल आर्किटेक्ट जहाज का नक्शा बनाता है। वो तय करता है कि जहाज कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना वजन उठाएगा और समुद्र की ऊंची लहरों का सामना कैसे करेगा।
2: मतलब जहाज का जन्म सबसे पहले कागज पर होता है?
3: हाँ, लेकिन पहले कागज पर होता था, अब आजकल कंप्यूटर पर बेहद आसानी से कोई भी डिजाइनर मिनटों में बना जाता है।
2: सही कहा दादाजी आपने, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है।
3: CAD, CAM इसी से संबंधित है बिटिया। CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर की सहायता से किसी भी वस्तु का डिजाइन या नक्शा तैयार कर सकते हो। और वहीं पर CAM का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कंप्यूटर की सहायता से उस डिजाइन के अनुसार वस्तु का निर्माण कर सकते हो।
2: यानी दादाजी CAD और CAM में अंतर है। अच्छा इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना।
3: समझाता हूँ बच्चे। मान लो तुम एक घर बनाना चाहती हो, पहले उसका नक्शा बनाओगी, फिर उसी नक्शे के अनुसार निर्माण होगा। CAD कंप्यूटर पर नक्शा तैयार करता है और CAM उसी नक्शे के अनुसार मशीनों को निर्देश देता है, ऑर्डर देता है।
2: दादाजी इससे तो किसी भी निर्माण में गलती की संभावना बहुत कम हो जाती होगी।
3: हाँ बेटा, इसीलिए तो आज आधुनिक युद्धपोत अत्यंत सटीकता से बनाए जाते हैं।
2: और जब डिजाइन तैयार हो जाता है उसके बाद क्या होता है दादाजी?
3: फिर आती है स्टील की बारी। विशाल स्टील प्लेटों को विशेष मशीनों से काटा जाता है।
2: ये किस तरह की मशीन होती है?
3: माझगांव डॉक में CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन जैसी अत्याधुनिक मशीन है बेटा।
2: दादू CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन, ये तो कोई कमाल की मशीन लगती है।
3: हाँ बेटा, ये वाकई कमाल की मशीन है। CNC का अर्थ है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें कंप्यूटर मशीन को निर्देश देता है कि धातु या अन्य सामग्री पर कहाँ कट लगानी है, कितनी गहराई तक कट लगानी है और किस आकार में काटना है। यानी कमांड देने पर सब कुछ मशीन ही तय करती है।
2: मतलब मशीन इंसानों की कमांड पर काम नहीं करती बल्कि कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करती है।
3: हाँ बेटा, कंप्यूटर द्वारा दिए गए सटीक निर्देशों के अनुसार इस मशीन से कटाई और निर्माण का काम बेहद तेज, सटीक और गुणवत्ता पूर्वक होता है। माझगांव डॉक की ये प्लाज्मा कटिंग मशीन स्टील, एल्युमिनियम और कई अन्य तरह की धातुओं को काट सकती है।
2: लेकिन दादू जहाज तो गोलाकार और घुमावदार होता है, फिर एक सीधी प्लेट से ये आकार कैसे बनता होगा?
3: बेटा यहाँ काम आती है प्लेट बेंडिंग मशीन। ये भारी स्टील प्लेटों को मोड़कर जहाज के ढांचे का आकार कर देती है।
2: यानी जैसे कागज मोड़ते हैं?
3: हाँ, सिद्धांत लगभग वही है, बस यहाँ कागज की जगह कई टन वजनी स्टील प्लेट होती है।
2: और फिर इन टुकड़ों को कैसे जोड़ते होंगे?
3: वेल्डिंग के द्वारा।
2: वेल्डिंग? हाँ, ये काम तो मैंने कई बार होते देखा है दादाजी, हमारे लोहा मार्केट की कई लोहा दुकानों पर। लेकिन दादू जहाज को जोड़ने के लिए तो ये बहुत ही सावधानी से किया जाता होगा।
3: बहुत सावधानी से किया जाता है बेटा। यदि वेल्डिंग कमजोर हो तो पूरा जहाज खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए माझगांव डॉक में सैकड़ों अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीनें काम करती हैं।
2: दादू ये तो मुझे समझ में आ गया, अब आप मुझे स्टील्थ युद्धपोत के बारे में बताइए।
3: स्टील्थ का अर्थ है बेटा दुश्मन की नजर से यथासंभव छिपा रहना।
2: दादू इतना बड़ा जहाज भला छिपाया कैसे जा सकता है?
3: पूरी तरह नहीं छिपता, लेकिन उसकी डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि रडार पर उसका संकेत बहुत कम दिखाई दे।
2: जैसे कोई जादू?
3: ये जादू नहीं है बेटा, विज्ञान है। रुचि बेटा तुमको पता है भारत का पहला स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट था INS शिवालिक, इसका निर्माण माझगांव डॉक में हुआ था।
2: दादू ये हमारी विशेष उपलब्धि थी?
3: बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि दुनिया के केवल कुछ ही देश ऐसी तकनीक विकसित कर पाए थे जो इसके निर्माण में उपयोग की गई थी।
2: दादू, क्या केवल इंजीनियर ही जहाज बनाते हैं?
3: नहीं, युद्धपोत निर्माण एक टीम वर्क है। इसमें नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर, इन सब के विशेषज्ञ लगे होते हैं बेटा। फिर पाइपिंग विशेषज्ञ, गुणवत्ता निरीक्षक, डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सबसे बेहतरीन टेक्नीशियंस, ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं।
2: मतलब हर व्यक्ति का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3: हाँ, एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है और एक पूरे जहाज को डुबा सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा।
2: दादू, यदि कोई छात्र ऐसे जहाज बनाने में अपना योगदान देना चाहे तो उसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए?
3: उसे पढ़ना चाहिए गणित, भौतिकी और विज्ञान की मजबूत नींव बनाना चाहिए। फिर नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषय चुने जा सकते हैं।
2: दादू, क्या लड़कियां भी इस क्षेत्र में जा सकती हैं?
3: क्यों नहीं जा सकती, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती बेटा।
2: सो तो है।
3: क्यों नहीं बेटा, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती। भारत की अनेक महिला इंजीनियर युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: दादू, क्या आत्मनिर्भर भारत में माझगांव डॉक की बड़ी भूमिका है?
3: बहुत बड़ी। जब हम अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां स्वयं बनाते हैं तो विदेशों पर निर्भरता कम होती है, देश का धन बचता है, नई तकनीक विकसित होती है और हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है।
2: दादू, रोजगार तो समझ में आता है मुझे, लेकिन एक डॉक यार्ड देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता होगा भला?
3: बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हो। देखो बेटा, एक युद्धपोत केवल लोहे की चादरों से नहीं बनता, उसके लिए इस्पात, विद्युत उपकरण, केबल, रडार, इंजन, कंप्यूटर प्रणालियां और हजारों छोटे बड़े पुर्जों की आवश्यकता होती है।
2: मतलब एक जहाज के निर्माण से बहुत सी दूसरी कंपनियां भी जुड़ जाती होंगी।
3: बिल्कुल, जब माझगांव डॉक किसी युद्धपोत का निर्माण करता है तो देश भर की अनेक उद्योग इकाइयों, आपूर्तिकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों को भी काम मिलता है।
2: यानी लाभ केवल डॉक यार्ड को नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र को होता होगा।
3: हाँ, सही कहा बेटा, इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, नए कौशल विकसित होते हैं और देश के भीतर ही तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ती जाती है।
2: और यदि वही युद्धपोत विदेशों से खरीदा जाए तो?
3: तब बेटा अधिकांश धन दूसरे देश की कंपनियों और उद्योगों के पास चला जाता है। लेकिन जब निर्माण भारत में होता है तो वही धन भारतीय उद्योगों, भारतीय कामगारों और भारतीय वैज्ञानिकों के विकास में योगदान देता है।
2: यानी एक युद्धपोत का निर्माण केवल सुरक्षा का विषय नहीं है दादाजी, बल्कि आर्थिक विकास का भी विषय है।
3: हाँ बेटा, यही कारण है कि माझगांव डॉक जैसे संस्थान देश की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: अब समझ में आया आपकी रुचि को कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल अपने लिए कोई निर्माण करना नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए अवसर पैदा करना भी है।
3: शाबाश, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला बच्चे।
2: दादू, युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता, ये भी मुझे समझ में आया है। उसमें वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और देशभक्ति की भावना भी जुड़ी होती है।
3: बिल्कुल बिटिया, और यही कारण है कि माझगांव डॉक को राष्ट्र का पोत निर्माता कहा जाता है।
2: अच्छा दादू, क्या ऐसी कोई कहानी आप मुझे सुनाना चाहेंगे जो विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सके?
3: हाँ बेटा, कई साल पहले एक युवा इंजीनियर ने शिपयार्ड में प्रशिक्षण शुरू किया। वो एक छोटे से कस्बे से आया था। शुरुआत में उसे विशाल मशीनों और बड़े जहाजों को देखकर डर लगता था। उसे लगता था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता, कुछ ना कुछ नया करता रहता। वरिष्ठ इंजीनियरों से मार्गदर्शन लिया और कुछ वर्षों बाद वही युवक एक महत्वपूर्ण युद्धपोत परियोजना की टीम का हिस्सा बन गया।
2: मतलब दादू, आत्मविश्वास और मेहनत बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल
2: दादू, सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना।
3: अब समझी बिटिया रानी, मैं बार बार क्यों कहता हूँ हाँ? अच्छा चलो अब वापस चलें, शाम होने वाली है। भाई तुम्हारे मम्मी पापा रिसोर्ट में हमारा रास्ता देख रहे होंगे।
0: और बेटा अभी तो हमें पूरा का पूरा गोवा घूमना है।
2: समझ रही हूँ मैं आपको, रिसोर्ट में क्यों ले जाना चाहते हैं आप, आपकी चाय का वक्त भी है। वैसे दादू मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अगली बार आप किस संस्थान के बारे में बताएंगे।
3: तुम विषय चुनो और उसके बारे में बताने का काम मेरा है रुचि बेटा।
2: ठीक है दादाजी, चलिए चलते हैं।
3: चलो बेटा।
1: श्रोताओं, माझगांव डॉग की कहानी हमें बताती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और श्रमिकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। समुद्र की लहरों पर तैरते युद्धपोत केवल जहाज नहीं होते, वे भारत की शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के प्रतीक होते हैं। इसी संदेश के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देश के संस्थान। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। ये वही अनूठा कार्यक्रम है जिसमें हम बातचीत करते हैं स्वतंत्रता के उन परवानों के विषय में जो देश हित में लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनकी याद में समर्पित करते हैं जो देशभक्ति के महान जज्बे में आकंठ डूब देश के ही लिए हंसते हुए मौत के मुंह में समा गए। ये कार्यक्रम उन्हीं महान देश प्रेमियों के नाम है।
1: जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, याद आती हैं ये पंक्तियाँ जब युवा खून की बात निकलती है, और बात निकलेगी तो फिर तो बड़ी दूर तलक जाएगी। यही हाल होता है जवानी के जोश का। युवा शक्ति होती ही इतनी तीक्ष्ण है, पल में आसमान छूले पल भर में जमीन पर आ जाए। फिर लड़कपन में एकदम से ये समझ में भी नहीं आता कि कई काम गंभीर से होते हैं, न कि तुरंत प्रतिक्रिया दे देने से।
2: एक बात बड़ी सही ये भी लगती है कि अगर युवावस्था या कैशौर्य का प्रतिक्रियावाद न होता तो गंभीर की परवाह भी किसे होती है कि प्रकृति में सभी कुछ एक संतुलन में होता है। इसी तरह युवावस्था के जोश और विवेकहीनता के बदले प्रकृति में बड़प्पन की गंभीरता और मंथरता है। पर इतिहास हम इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि
1: सही मतलब ढूंढ रही हो तुम तारी। हम आज कुछ युवा क्रांतिकारियों की ही बात करेंगे, ऐसे युवा जिन्होंने अपनी समझ और सोच के बल पर ही वो काम कर डाले जो बड़े बड़े न कर पाते। इनकी उम्र में खून का जो उबाल रहता है शायद यही इनसे ये सब करवाता होगा।
2: अरे रहने दो, तुम और मैं तो समय के परे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम युवाओं की उम्र को ही सारा दोष दे लोगे। केवल जवानी के जोश से नहीं इतिहास, ये तो कर्म के महान सिद्धांत का भी फल है कि ये क्रांतिकारी छोटी आयु में भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं।
1: हाँ हाँ, मैंने कहा मना किया। खैर तो चलो अब हम श्रोताओं को बता ही दें कि आखिर ये बातें हो किसकी रही हैं, ठीक है?
2: हाँ क्यों नहीं, पर पहले बारी है इस देशभक्ति के गीत की। आओ सुने ये खूबसूरत देशभक्ति का तराना और डूब जाए मातृभूमि के लिए समर्पित मधुर संगीत में।

0: एक प्रचंड अग्नि जैसे रुद्र का ही रूप हो, बढ़ चले हैं काल जैसे खुद का एक स्वरूप हो, दानवों का हो दमन और सच का सब अनंत, देश के लिए ही जन्मे देश हित ही अंत हो।
1: अरे वाह, कितने सुंदर तरीके से सब कह दिया, देश हित में अपने अंत का इजहार, वाह।
0: अब श्रोताओं को अधिक इंतजार न करवाओ, जल्दी से बता भी दो कि हम किन की बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में।
1: हाँ हाँ जरूर, तो श्रोताओ आज हम बात कर रहे हैं उजागर सिंह नाम की नवयुवक की। ये अमृतसर के रहने वाले थे और वहाँ के कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ के विद्यार्थियों को ये शक था कि उनके प्राचार्य महोदय अंग्रेजों से मिले हुए हैं। पुलिस से मिले होने के कारण ही वे जानबूझकर उन शिष्यों को गिरफ्तार करवाते हैं जो जरा क्रांतिकारी स्वभाव के हैं।
0: शक का बीज एक बार पड़ जाए तो उसे बड़ा होकर पेड़ बनने में वक्त नहीं लगता, भले ही वो बीज गलत ही क्यों ना पड़ा हो। फिर ये लोग तो क्रांतिकारी ठहरे, वो भी युवा क्रांतिकारी जिनके रक्त में वैसे ही बहुत गर्मी रहती है। फिर संदेह गलत भी तो नहीं था। आए दिन ही पुलिस महाविद्यालय से छात्रों को गिरफ्तार करके ले जाती रहती। रोज ही कुछ न कुछ इस तरह का कार्यक्रम चलेगा तो संदेह तो प्राचार्य पर आना ही है।
1: इसी संदेह के चलते इन्होंने प्राचार्य को दंडित करने की ठानी। इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए प्रताप सिंह ने बीड़ा उठा लिया। उन्हें मालूम पड़ गया था कि कॉलेज में कोई उत्सव होने को है, तो उन्होंने अपनी योजना को उसी दिन निभाने का मन बना लिया।
0: रात्रि में जब कॉलेज का उत्सव चल रहा था तो चुपके से प्रताप सिंह अपनी जेब में एक बम छुपाए प्रांगण में दाखिल हो गए। जद्दोजहद के बाद प्रिंसिपल की कुर्सी तक भी पहुंच गए। उसी वक्त उनका साथी उजागर सिंह बिजली गुल कर देने के लिए नियुक्त था। नियत समय पर उजागर सिंह ने बिजली का स्विच बंद कर दिया और पूरा प्रांगण घुप अंधेरे में डूब गया।
1: मौके का फायदा उठाकर प्रताप सिंह ने बम का पिन खींच प्राचार्य पर फेंकना चाहा, पर कुछ विलंब हुआ।
0: पर हुआ कुछ और ही, क्या हुआ कैसे हुआ इस बारे में हम बात करेंगे कुछ देर के बाद। फिलहाल सुनिए ये गीत जो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है।

0: मौके का फायदा उठाकर प्रताप सिंह ने बम का पिन खींच प्राचार्य पर फेंकना चाहा, पर कुछ विलंब हुआ और दुर्भाग्य से वो बम प्रताप सिंह के हाथों में ही फट गया।
1: विस्फोट की आवाज से उजागर सिंह प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि बम निशाने पर यानी प्रिंसिपल साहब पर फेंक दिया गया है और उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया। इस बात को समझकर उन्होंने बत्ती पुनः चालू कर दी और प्रांगण एक बार फिर रोशनी में नहा गया।
0: पंडाल में रोशनी आने के बाद सभी ओर अफरा तफरी मच गई। देखने पर मालूम पड़ा कि खून के तालाब के बीच अचेत अवस्था में प्रताप सिंह पड़ा है। थोड़ी देर मौत से लड़ने के बाद वहीं पंडाल में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए।
1: मुख्य स्विच के पास तैनात उजागर सिंह सकते में खड़ा था। धमाके के बाद की सारी परिस्थिति और फिर अपने साथी प्रताप सिंह की इस हालत को देखकर वो बहुत गहरे सदमे में आ गया था। अपनी जगह से हिला तक नहीं, जबकि चारों ओर सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और पंडाल लगभग खाली हो गया था। अपने साथी की इस हालत ने उसे सुन्न कर दिया था।
0: मुख्य स्विच के पास उजागर सिंह को देख पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला समझ में आते देर न लगी और उजागर सिंह पर हत्या का षड्यंत्र करने के आरोप में मुकदमा चला।
1: मुकदमे के फलस्वरूप उजागर सिंह को फांसी की सजा मिली। एक गद्दार को सजा देने की योजना में प्रताप सिंह ने अपनी जान दे दी, साथ ही उसके साथी उजागर सिंह को भी फांसी के तख्ते पर उसका साथ देने के दोष में झूल जाना पड़ा। दोनों साथी नसीब और अपनी उम्र के जोश के तूफान में खो गए, हमेशा हमेशा के लिए।

0: विवेक आयु की परिपक्वता के साथ ही आता है। पर बताओ, अगर इन सब घटनाओं में विवेक का इस्तेमाल किया गया होता तो क्या हमारे तुम्हारे पास कहने के लिए इतना कुछ होता तारीख?
1: मैं तो बस यही कहूंगी इतिहास, कहने को बहुत हुए अफसाने, यूं ना हुआ कि कुछ बदहवास हो, न हो जिंदगी में कुछ बचकाना सा, तो क्या फिर एहसास हो। मर जाएंगे हम भी तुम्हारी ही तरह एक दिन यारों, न हो कोई परवाह नहीं, और हो तो हमारी मौत भी खास हो।
0: वाह वाह, क्या बात है। और इसी के साथ अब हमारे चलने का समय हो गया है। मिलते हैं आजाद हिंद के अगले कार्यक्रम में। तब तक आपके लिए पेश है ये देशभक्ति गीत।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ। श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को ट्राइबल म्यूजियम में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शास्त्रीय संगीत और कथक की मनमोहक प्रस्तुतियों ने गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत कर दिया। संस्कृति विभाग के आयोजन में कर्नाटक के युवा शास्त्रीय गायक सिद्धार्थ बेलमन्यू और इंदौर की कथक नृत्यांगना डॉक्टर निवेदिता पंड्या की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। सिद्धार्थ बेलमन्यू ने प्रस्तुति की शुरुआत राग मारवा से की। उन्होंने विलंबित एक ताल में पिया मोरे आनत, मध्य तीन ताल में गुरु बिन ज्ञान और द्रुत तीन ताल में तराना प्रस्तुत कर राग का सौंदर्य उभारा। इसके बाद राग गौण मल्हार में विलंबित तिलवाड़ा ताल की काहे हो बंदिश तथा द्रुत तीन ताल में झुकाई बदरिया और मेहरवा बरसे प्रस्तुत किया। समापन मराठी अभंग गुरु कृपा विण और भैरवी के भजन से हुआ। डॉक्टर निवेदिता पंड्या और साथियों ने कथक प्रस्तुत किया। उन्होंने ताल पक्ष का प्रदर्शन करते हुए शबरी का अपने गुरु मतंग ऋषि के प्रति समर्पण और श्री राम से मिलन के प्रसंग को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद जयंती पर 31 जुलाई को सुबह 11 बजे हिंदी भवन में वीरेंद्र तिवारी कक्ष में युवा संवाद मंच और हिंदी भवन के संयुक्त तत्वावधान में कहानी पाठ और परिचर्चा आयोजित है। इसमें भोपाल के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं और युवा साहित्य प्रेमी भाग लेंगे। कार्यक्रम प्रेमचंद की नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर और जिहाद कहानियों के पाठ से संपन्न होगा। उनकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता पर भी चर्चा की जाएगी। और श्रोताओं, सदियों पुरानी जमीन के नीचे पानी पहुंचाने वाली कुंडी भंडारा व्यवस्था को फिर से संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे बचाने और दोबारा उपयोगी बनाने के लिए मैनेट की एक्सपर्ट टीम ने मौके पर जाकर स्थिति को देखा है। आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा के आज के अंक से अब अनुमति दें सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां 29 जुलाई की शाम गुरु पूर्णिमा पर्व में दो प्रस्तुतियां हुई। पहले शास्त्रीय गायन हुआ, कलाकार थे सिद्धार्थ बेलमन्यू और साथी
1: गोडमलार।

0: और गुरु पूर्णिमा पर्व की दूसरी प्रस्तुति रही कथक की। कलाकार थीं डॉक्टर निवेदिता पंड्या और साथी।
1: यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन पर्व पर मुझे प्रस्तुति के लिए यह पवित्र मंच प्रदान किया गया। मैं अपनी शिष्याओं के साथ अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके समक्ष राम शबरी प्रसाद।

रघुवीर यहाँ पर बलकल भेष धराए, सिर पर होगी जटा, हाथ में भारी धनुष उठाए, मुख पर होगा तेज मगर आंखों में सहज उदासी, रक्षक पितु सम लगेंगे तुझको और ममता फिर मासी, चंदन का एक तिलक भाल पर होगा कुछ सिमटा सा, अधरों पर मुस्कान तो होगी पर मन कुछ बिखरा सा, पांव खड़ाऊ नहीं मिलेंगे नंगे पग शत दल से, ऐश्वर्य कोई ना दिखेंगे बिल्कुल सहज सरल से, श्वेत बिंदु श्यामल मुखड़ी पर और लटा एक बिखरी, आएंगे वे यही पूछते कहाँ है माता शबरी, कहाँ है माता शबरी, कहाँ है माता शबरी।

और श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

पिछले कार्यक्रम में नटखट विवेकानंद के बाल्यावस्था की बातें जानकर आपको भी हंसी आ गई होगी। बचपन से ही वे किसी बात को बिना सही तरह से समझे नहीं मानते थे। प्रश्न पे प्रश्न कर वे अगर जवाब से संतुष्ट होते तो ही बात को मानते थे। छुआछूत जातिगत भेदभाव से वे घृणा करते थे। शरारती तो वे थे, पर मनपसंद की बातें हो तो घंटों ध्यान लगाकर सुनते या करते थे। आइए उनके बचपन की कुछ और बातें जानें।

0: एक पेशावरी मुस्लिम नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ बाबू के मुवक्किल थे। वे नरेंद्र के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। उनके आने का समाचार पाते ही नरेंद्र उनके पास आ जाता और उनकी गोदी में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़े और ऊंट की सवारी की भ्रमण कहानियां एकाग्र चित्त से सुनता।
1: चाचा जी, वहाँ लोग ऊंट की सवारी क्यों करते हैं? वहाँ बग्गियाँ नहीं चलती क्या?
2: ओए नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ओए वहाँ तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान, ओए सड़कें ज्यादा है नहीं, सो लोग ऊंट पर ही एक जगह से दूसरी जगह को जाती है।
1: हाँ, पर ऊंट तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना।
2: ओ इसीलिए तो मेरा बच्चा, वो वहाँ पहुँचने में बहुत महीना लग जाते
1: हैं। फिर वो खाते पीते क्या है, लंबे सफर से थक जाते होंगे।
2: ओए होए, ओए वहाँ बीच बीच में सराय बना होती, वहीं पर हम रुकते है, आराम करता है, ओए फिर चलना शुरू करते है, और सफर भी रात को ठंडा ठंडा में करते है, दिन में बहुत तेज गर्मी होते है और तेज धूप होते है।
1: पर बड़ा मजा आता होगा ना चाचा जी, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना, मैं भी ऊंट की सवारी करूँगा।
2: ओए हमारा बच्चा, ओए तुम अभी बहुत छोटा है, बस दो उंगल बड़ा होने को मांगते है, फिर हम तुमको जरूर ले जाएगी।
0: आग्रह की अधिकता से वो कभी कभी दूर से ही बोलता।
1: चाचा जी देखिए, मैं रात भर में दो उंगल बढ़ गया हूँ, अब आप मुझे ले चलिए।
2: ओए देखूं तो, ओए हमारा बच्चा वाकई में बहुत बड़ा हो गई, अरे तुम तो दो उंगल ऊंची हो गई, ओए अब तो ले जाना ही पड़ेगी, ले जाना ही पड़ेगी। ओए हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, ओए तब तक ये मिठाई खा लो बच्चा, ओए तुम्हारे ही वास्ते लाए है, तुमको पसंद है ना?
1: लाइए लाइए, कहाँ है, मैं दोनों ही खाऊंगा।
0: नरेंद्र बड़े चाव से चाचा की गोद में बैठकर मिठाई खाते और वहां बैठे दूसरे लोग इस अनाचार को देखते और सिहर जाते। परिवार में भी इस बात को लेकर बवंडर मचता, पर विश्वनाथ बाबू कट्टरपंथी ना थे, वे इस बात को हंसकर टाल देते।
3: विश्वनाथ बाबू के दफ्तर में भिन्न भिन्न समाज के मुवक्किल आते थे, उनके लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी। एक दिन कमरा खाली देखकर नरेंद्र वहां आया और हुक्के की नली में मुंह लगाकर कश खींचने लगा। विश्वनाथ ने मुवक्किलों के साथ कमरे में दाखिल होकर नरेंद्र को हुक्का पीते देख लिया।
4: बिले, ये क्या हो रहा है?
1: बाबा, सब कहते हैं दूसरी जाति के लिए रखा हुआ हुक्का नहीं पीना चाहिए। मैं तो देख रहा था, ऐसा करने पर क्या होता है, मैं तो वैसा ही हूँ, ये छत टूट तो नहीं पड़ी। मैं तो परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो क्या होगा।
5: नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है।
1: क्यों, क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का क्यों नहीं खाता? बाबा कहिए ना, क्या होता है?
0: विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए उसे प्यार से कहा।
4: बिले, तू बड़ा दुष्ट हो गया है रे।
3: नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति को तोड़कर दूसरे ही दिन उसके स्थान पर एक शिव मूर्ति की स्थापना कर दी। माता का अनुकरण कर वे प्रतिदिन शिव पूजा करते थे, कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिव मूर्ति को घेरकर ध्यानस्थ होकर बैठे रहते। यह खेल नरेंद्र को बहुत भाता था। उस समय उनके मन में क्या चलता था वही जाने। एक दिन ध्यान से उठकर उदास होकर माँ के पास गया और कहा,
1: माँ मुझे शिवजी के दर्शन क्यों नहीं होते? सचमुच क्या मैं दुष्ट हूँ? इसीलिए शिवजी ने मुझे अपने पास से हटा दिया है।
6: ऐसा किसने कह दिया रे तुझे?
1: मैं अगर साधु हो जाऊं तो क्या शिवजी मुझे अपने पास लौट आने देंगे?
6: हाँ हाँ क्यों नहीं।
3: यह बात परिवार की महिलाएं सुन रही थीं, वे अवाक रह गईं।
7: बहू ये तुमने क्या कह दिया है बेटे से? एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी संन्यास लेने को कह रही हो? कैसी माँ हो तुम?
3: यह बात अनजाने में कह जाने के बाद माँ का हृदय किसी अनजान डर से कांप उठा। उसी पर किसी के टोकने पर वह और विचलित हो उठी। अपने दादा की तरह अगर नरेंद्र भी संसार छोड़कर चला गया तो? पर मन ही मन शिव का ध्यान लगाकर उन्होंने इस डर को मन से हटा दिया और कहा,
6: देखो भाई भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना, मैं उसमें बाधा देने वाली कौन हूँ?
1: तब तो मैं सन्यासी ही बनूंगा।
0: बचपन से ही लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते उन ग्रंथों का बहुत सा भाग उन्हें याद हो गया था। वे कभी कभी सुमधुर स्वर में उन्हें सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। कभी कभी भिक्षु गायकों से सीखे हुए राधा कृष्ण या सीताराम के गीतों को गाकर घर वालों और अपने पिता के मित्रों को आनंद प्रदान करते। लाड़ प्यार से पले नरेंद्र स्वतंत्रता प्रिय होने पर भी उनके बाल चरित्र में अपने माता पिता के नाना प्रकार के सद्गुणों का समावेश हो गया था। घर में नीति शास्त्र एवं लोकाचार का कठिन नियम ना होने पर उनका चरित्र अपनी स्वाभाविक मधुरता के साथ स्वतः ही विकसित हो रहा था।
3: श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के अलौकिक कार्यों की कथाएं सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। माता से उन्होंने सुना कि हनुमान जी अमर हैं, वे अभी भी जीवित हैं। तब से उन्हें देखने के लिए नरेंद्र के प्राण छटपटाने लगे। एक दिन वे माता के साथ कथा सुनने गए। कथाकार पंडित जी नाना प्रकार से हास्य रस मिलाकर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कथा खत्म होने पर नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा,
1: पंडित जी आपने कहा हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में ही रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनके दर्शन पा सकूंगा?
8: हाँ बेटा, केले के बगीचे में ढूंढने पर तुम उन्हें पा सकते हो।
3: फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर के पास वाले केले के बगीचे में केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया पर हनुमान जी नहीं आए। अंत में लाचार होकर शाम ढलते घर वापस आए। माँ को सारी घटना सुनाकर इसका कारण पूछा। बालक के विश्वास पर चोट न करना ही माता ने उचित समझा और बेटे को प्यार से चूम कर कहा,
6: ओले बेटा बेटा तुम दुखी मत हो, शायद देखो शायद आज हनुमान जी वो राम जी के किसी काम से कहीं दूसरी जगह पर चले गए होंगे, हाँ इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिले, किसी और दिन मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओ बेटा मेरा।
0: बालक शांत हुआ। उसने फिर कभी हनुमान जी से मिलने की कोशिश की या नहीं ये तो ज्ञात नहीं, पर हनुमान जी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव उनके मन से कभी लुप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक युवक को विवेकानंद कहा करते थे,
9: महावीर के चरित्र को आदर्श बनाओ। हर घर में महावीर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इस दुर्बल जाति के सम्मुख उन्हीं का आदर्श रखना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के लोदों से। मैं चाहता हूं हर युवा महावीर जैसा ताकतवर हो।
3: बोध या विचार शक्ति के कुछ और बढ़ने के बाद उनमें साधु या भिखारियों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण दिखाई पड़ा। उनके आने पर वे उनके निकट दौड़ जाते, उन्हें कोई रोक नहीं पाता और जो भी मिलता उन लोगों को दे देते थे। एक दिन नई धोती पहनकर साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज हुई।
10: नारायण हरि, नारायण हरि, अरे कोई है?
1: आओ बाबा, अंदर आओ।
10: बेटा, कुछ पहनने ओढ़ने का मिल जाए तो।
1: हाँ हाँ, लो ना, मेरी यह धोती बिल्कुल नई है, आज ही तो पहना है, ये ले लो।
10: तुम्हारी ये छोटी सी धोती मैं कैसे पहनूंगा बेटा? पर तुम्हारा दिया दान मेरे सर आंखों पर, लाओ मैं इसे अपने माथे पर लपेट लूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
0: साधुओं के आने पर नरेन को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर खिड़की से वे उन्हें बुलाकर जो कुछ मिलता दे देते थे और घर के लोगों को हरा दिया समझकर खुश हो जाते।
3: दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी और स्वर्णमयी को वे हमेशा छेड़ा करते। दोनों हैरान परेशान होकर नरेन को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती, पर पकड़ न पाती। उन्हें और भी तंग करने के लिए नरेन किसी गंदे नाले में उतर जाता या किसी कूड़े के ढेर पर चढ़ जाता। बहनें उनका पीछा करती।
7: रुक जा बिले, इधर आ, आज तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी। मेरे कपड़े में अपना गंदा हाथ क्यों पोछा, बोल। ओह, मेरी किताब तूने ही छुपाई है, निकाल निकाल दे जल्दी, नहीं तो मैं माँ को कह दूंगी। एक बार पकड़ लूं तो तेरी खैर नहीं बिले। स्वर्ण, तू उधर से जा, उधर जाकर पकड़, मैं इधर से इसका रास्ता रोकती हूँ।
1: आओ आओ ना, आओ पकड़ो मुझे, इस गंदी नाली में उतरो, तब तो पकड़ पाओगी मुझे। अच्छा चलो, मैं ही निकल आता हूँ, पर मेरे कपड़े और पैर गंदे हो गए हैं, मुझे छुओगी क्या?
7: हाँ हाँ पकड़ूंगी, रुक, बिल्कुल पकड़ूंगी।
1: पकड़ोगी तो ये लो, मैं कूड़े के ढेर पे चढ़ गया, अब आओ यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
11: माँ, देखो ना परेशान कर रहा है माँ।
3: दोनों बहनें हार कर रोते रोते अंदर चली जाती हैं।
0: दत्त भवन में अनेक पालतू जानवर थे। नरेन को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। विलायती सफेद चूहा, बंदर, बकरा, कबूतर, काकातुआ और अनेक तरह तरह की चिड़िया थी। घर की गाय के साथ नरेन की पक्की दोस्ती थी। उसके गले में माला पहनाकर, माथे में सिंदूर लगाकर, शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और वो गाय भी उनके शरीर पर मुंह रगड़कर प्यार जताती थी।
3: सन्यासी होने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुआ वस्त्र को कॉपीन की भांति लपेटकर वे घूम रहे थे। उसे देखकर माँ ने पूछा,
7: क्यों रे बिले, हैं? ये क्या कर रहा है?
1: माँ, मैं शिव हो गया हूँ। अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ।
7: अरे क्यों भला?
1: मैंने सुना है कि ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों के बालों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। पर मैं तो कल भी ध्यान करने बैठा था, मेरे बाल तो बड़े ही नहीं, ना ही जमीन में घुसे। क्यों माँ?
7: बेटा, एक आध घंटा या एक दो दिन में जटाएं नहीं बढ़ती, कई साल लग जाते हैं।

0: नरेंद्रनाथ के पास खेलों की कमी ना थी। उनका एक प्रिय खेल था राजा बनने का खेल। अपने संगी साथियों के साथ पूजा घर जाने वाली ऊंची सीढ़ी पर यह खेल चलता था।
1: मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठूंगा। तू मंत्री है, इस पर बैठ। तू तो कोतवाल है, वहाँ बैठ। सेनापति, तुम इधर आकर बैठो। और तुम सब सभासद हो, नीचे बैठो। अब दरबार शुरू होगा, सब लोग मुझे प्रणाम करो।
2: प्रणाम महाराज।
1: मंत्री, राज्य का क्या समाचार है?
3: प्रजागण परम सुखी है महाराज।
1: सेनापति, कहो क्या कहना है?
4: महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, आए दिन हमला करके प्रजा को लूट लेता है।
1: उस दुष्ट आत्मा का सर काट दो।
0: तुरंत कुछ बच्चे डाकू को पकड़ने दौड़ते और वो सदर दरवाजे से भागकर जान बचाता। राजा सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते।
5: जल्दी भागो, पकड़ लो उसे।
6: भगवान, कहाँ?

0: निर्भीक और साहसी थे। उसके एक सहपाठी पड़ोसी के घर चंपा का एक पेड़ था। अक्सर नरेन उस पेड़ पर चढ़कर डाली में पांव फंसाकर और सिर नीचे लटकाकर झूलता था। एक दिन उस घर के मालिक दादाजी राम रतन बसु ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा चंपा की नरम डाली टूट जाने पर नरेन को चोट लग जाएगी। वो बाहर आकर नरेन को समझाते हुए कहते हैं,
1: बेटा नरेन, इस तरह चंपा की डाली पर नहीं झूलते, नीचे आ जाओ, मत चढ़ो पेड़ पर।
2: क्यों क्यों, इस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है?
1: नीचे तो उतरो, बतलाता हूँ।
2: ये लीजिए, आ गया, अब बताइए।
1: उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भयानक गुस्सेल है, पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़ देता है।
2: अच्छा दादाजी।
0: दादाजी के अंदर जाते ही नरेन फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा।
3: नरेन, सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? ब्रह्म राक्षस गर्दन मरोड़ देगा।
2: अरे आने दे ब्रह्म राक्षस को, मैं उसके शरीर पर थूक कर उसे वशीभूत कर दूंगा।
3: नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
2: तू भी जैसे गधा है, कोई आकर एक बात कहके डरा गया और तू उसी पर विश्वास करने लगा।
3: तो तू नहीं मानता ब्रह्म राक्षस को?
2: तेरे दादाजी की बात अगर सही होती तो वो बहुत दिनों पहले ही मेरी गर्दन मरोड़ देता। मैं तो अक्सर झूलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा वो। जा जा जा, डरपोक कहीं का।
0: बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्ध प्रगतिशील मन, अतः उनका मानसिक विकास और भी तेजी से और समृद्ध हुआ था। रामायण और महाभारत की कहानी, देवी देवताओं की कथा एवं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन में लाड़ प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनके सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा चित्र खिंच गई थी, इसलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं सुंदर भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे।
4: रामायण पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि एक बार घर के पास रामायण गायकों के एक दल द्वारा एक पद विशेष को गाते समय कई पंक्तियां भूल जाने से अशुद्ध रूप से गाने पर नरेंद्र ने पदों को शुद्ध रूप से गाकर सभी लोगों से प्रशंसा पाई थी। गायकों ने भी अपनी भूल मानकर श्रोताओं से माफी मांगी थी और नरेंद्र को मिली थी ढेर सारी मिठाइयां।
0: उनके महाभारत पाठ के संबंध में भी एक मर्म स्पर्शी घटना जानी जा सकती है। सन 1869 में दत्तग्रह के तत्कालीन मुखिया नरेंद्रनाथ के छोटे दादाजी काली प्रसाद दत्त मृत्युशैया पर पड़े थे। आखिरी समय में उनमें एक अंतिम इच्छा जगी कि मृत्यु पूर्व परिवार के बच्चों में से किसी के मुख से महाभारत का पाठ सुनेंगे। लज्जावश कोई भी बालक या बालिका पाठ करने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने सबसे छोटे नरेंद्र से पाठ करने के लिए कहा। वे तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में विशाल काय महाभारत को समाहित किए हुए दादाजी के कमरे में आए और अपनी मधुर वाणी में महाभारत के कई पन्ने पढ़कर सुना दिए।
4: केवल अंतिम घड़ी में ही नहीं, उसके पहले भी दादाजी ने नरेंद्र के मुख से कई दिनों तक संपूर्ण रामायण का पाठ सुना था। पाठ के समय माँ भुवनेश्वरी देवी भी उपस्थित रहा करती थी।
0: परलोक की ओर आंखें पसारे हुए वृद्ध ने अपने इस कुल तिलक के महाभारत पाठ से उल्लासित होकर आशीर्वाद दिया।

0: मेरे बेटे को यही आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सच के पथ पर चले और मानवता की सेवा करे।
1: तुम्हारी जैसी माँ पाई है इस बालक ने, इसे कौन रोक सकेगा? अवश्य ही ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा।
0: बिले बेटा, दादाजी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करोगे?
2: हाँ माँ, दादाजी प्रणाम।
1: जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो।
3: अरे

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आज आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, सभा समापन का समय हो रहा है, लेकिन उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे की। प्रसारण का समय रहेगा शाम 6 बजे। 6:30 बजे बच्चे सुनेंगे बाल सभा कार्यक्रम, इसमें आज बात होगी भाषा की मर्यादा पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, चर्चा का विषय सर्जिकल स्ट्राइक। हमारा विशेष कार्यक्रम शाम 7:30 बजे प्रसारित होगा, इसमें गायन जुगलबंदी सुनिएगा कलाकार आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार। देश के संस्थान इस कार्यक्रम में MDL पर चर्चा होगी रात 8 बजे। 8:30 बजे आज़ाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे उजागर सिंह की। रेडियो रिपोर्ट का वक्त होगा रात 9 बजे और 9:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है, दिन के प्रसारण जारी रहेंगे। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

गाने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से प्रस्तुत है रूस के महान कहानीकार चेखव की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी ए जोक, यानी एक छोटा सा मजाक का रेडियो रूपांतरण। कहानी का ताना बाना कुछ इस प्रकार है।

19वीं शताब्दी के रूस में एंटोन चेखव नाम के एक महान कथाकार हुए। वे कहते थे, साहित्य मेरी प्रेमिका है। उनकी कहानियां दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। उनकी कहानियां संवेदना को झिंझोर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आंखों देखी घटना सुना रहा हो। चेखव कहते थे कि लेखक को वही लिखना चाहिए जो उसने देखा और भोगा हो, वो भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। श्रोताओं, चेखव का साहित्य विशाल है, जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अजोक, एक मजाक। ये मजाक नायक नायिका के साथ करता है। इस मजाक का क्या अंजाम होता है, इसे जानने के लिए सुनते हैं कहानी अजोक, एक मजाक का रेडियो नाच रूपांतर। श्रोताओं, इस नाटक में चेखानते हैं जो कि कहानीकार हैं, और साथ ही इस कहानी में दो पात्र होंगे, चेखव और नात्या पित्रोना।

0: सर्दियों की खूबसूरत दोपहर, सर्दी बहुत तेज है, नादिया ने मेरे बाह पकड़ रखी है, उसके घुंघराले बालों में बर्फ इस तरह जम गई है कि वे चांदनी की तरह झलकने लगे हैं, उसके ओंठों के ऊपर भी बर्फ की एक लकीर सी दिखाई देती है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है, ढलान पर बर्फ की चादर बिछी है, सूरज की रोशनी उस पर ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे में पड़ रही हो। हमारे नज़दीक ही एक स्लेज पड़ी है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है।
1: श्रोताओं, ये रूस है जहाँ ठंड बेहद पड़ती है, यहाँ बर्फ पर फिसलने वाली बिना पहियों की गाड़ियां होती हैं, जिन्हें हम स्लीज कहते हैं। टंड्रा क्षेत्र में इन गाड़ियों को कुत्ते खींचते हैं। लेकिन ढलान पर खुद ब खुद नीचे फिसलती हैं ये गाड़ियां। ये खेल है, जैसे जैसे गाड़ियां नीचे उतरती जाती हैं, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। ऐसे में अगर कोई खूबसूरत साथी साथ हो तो फिर क्या कहने, और रोमांस दुगना हो जाता है।

0: नादिया नादिया।
1: हाँ जेकब।
0: आओ नादिया एक बार फिसलते हैं। आओ।
1: नहीं जेकब, मुझे नहीं फिसलना यहाँ से।
0: अरे सिर्फ एक बार आओ ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं आना।
0: अरे घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुँच जाएंगे। आओ।
1: उफ देखो तो कितनी ठंड है यहाँ पे और मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो देखो, डर के मारे पीला पड़ गया है।
1: डर के मारे पीला तो पड़ेगा ही, उफ देखो तो कितनी ऊंचाई पर है हम।
0: अरे मैं हूँ ना, डरो मत। आओ आओ यहाँ बैठो, आओ आओ ना। आओ
1: ठीक है, तुम कहते हो तो चल चलती हूँ।
2: मैं महसूस करता हूँ कि स्लेज पर बैठने के नाम पर नादिया का जैसे दम निकल जाता है, लेकिन तब क्या होगा जब यह खतरा उठाकर स्लेज पर बैठ जाएगी। ये तो डर के मारे मर ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है।
0: नादिया नादिया मेरी बात मान लो नादिया, डरो नहीं। आई नो कि तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, आओ नादिया।
1: नहीं जेकब नहीं। अच्छा अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: आओ यहाँ आओ, आ जाओ।
2: वो मान जाती है, मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूँ। साफ दिखता है कि जैसे उसने मौत का खतरा उठाकर ही मेरी ये बात मानी है। वो डर के मारे सफ़ेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बिठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता हूँ। हम उस गहराई में फिसलने लगते हैं। बंदूक की गोली की तरह स्लेज नीचे उतर रही है। बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा चीरती हुई सीटी बजा रही है। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदन को चीर रही है, वो जैसे हमारा सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज व ठंडी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़कर नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीजें जैसे एक तेजी से लकीर में बदल जाती है।

0: आतिया,
1: ये कैसी आवाज है? क्या चीखा?
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ आतिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नातिया। आई लव यू नातिया, आई लव यू नातिया।
1: क्या क्या चीखा ने मुझसे कहा?
0: आई लव यू नातिया, आई लव यू।
2: स्लेज की गति धीरे धीरे कम होती जाती है। हवा का गरजना और स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है और आखिर हम नीचे पहुंच जाते हैं। नादिया बेहोशी हो रही है, वो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी है, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। मैं स्लेज से उतरने में उसकी मदद करता हूँ।
0: नादिया, आओ नादिया, आंखें खोलो नादिया। क्या हो गया नादिया? जस्ट ओपन योर आईज नादिया, बी केयरफुल। आओ नादिया।
1: आज तो मैं मरती मरती बची हूँ। चीखा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा कभी नहीं फिसलूंगी, कभी भी नहीं।
0: नादिया, डरो मत नादिया, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा नादिया, मैं हूं ना।
1: नहीं नहीं, अब मैं कभी नहीं आऊंगी।
2: जब मेरी ओर देखते उसने ये शब्द कहे तो मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ देखा, पर थोड़ी देर बाद ही वो सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या उसने सचमुच ये अल्फाज सुने थे या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था कि सिर्फ हवा की गरज थी वो, और ये अल्फाज इसी गरज से पैदा हुए थे।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया।
2: क्या ये एक भ्रम? नादिया मेरे हाथ अपने हाथों में ले लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते हैं। ये पहली उसे अब भी परेशान कर रही है कि जो अल्फाज उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे सच में कहे गए थे या नहीं, ये बात वास्तव में हुई थी या नहीं, ये सच है या झूठ। अब ये सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, जैसे उसकी जिंदगी और उसके जीवन की खुशी इसी बात पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का उत्तर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नादिया मुझे अपनी आशा भरी नजरों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात भांपना चाहती हो। वो इस इंतजार में है कि मैं फिर उसे वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे, उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसे भाव हैं? मैं देखता हूं कि वो अपने आप से लड़ रही है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वो हिचकिचा रही है, वो डर रही है, उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है।
0: नादिया, नादिया चलो घर चलते हैं।
1: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।
0: व्हाट, तुम्हें मजा आ रहा है?
1: हाँ जेकब, बहुत ही ज्यादा मजा। क्यों ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं।
0: एक बार फिर?
1: हाँ ना जेकब, चलो ना प्लीज, चलो।
0: अच्छा चलो।
2: हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, मैं फिर से डर से सफेद पड़ चुकी नादिया को स्लेज पर बिठा देता हूँ। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर से हवा की गर्ज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है, और जैसे जैसे शोर बढ़ता जा रहा था, मैं धीमी आवाज में कहता हूं,
0: मैं तुमसे प्यार करता हूं नादिया, आई लव यू नादिया।
2: नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है तो नादिया एक नजर पहले ऊपर की तरफ उस दलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसले थे, फिर दूसरी नजर मेरे चेहरे पर डालती है। वो ध्यान से मेरे बेपरवाह और भावहीन आवाज को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वो चकित है और जैसे उसके चेहरे पर लिखा है, क्या बात है, ये अल्फाज किसने कहे थे, शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगता हो, बस ऐसे ही वे शब्द सुनाई दे गए हों।
0: आई लव यू, आई लव
2: यू। उसकी उलझन बढ़ती जाती है, वो सच्चाई से अनजान है, ये अनजानापन उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। मुझे उस पर तरस आ रहा है, बेचारी लड़की, वो मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देती, लगता है वो रोने वाली है।

0: नादिया नादिया चलो घर चलते हैं।
1: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है।
0: क्या?
1: बहुत मजा आ रहा है सच्ची में। चलो ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं, चलो ना।

0: और यह पहेली पहेली ही रह जाती है। नादिया चुप रहती है, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतज़ार कर रही है कि मैं शायद उसे कुछ कहूँगा, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वो कुछ सोच रही है। दूसरे दिन जैकब को चिट्ठी मिलती है जिसमें नादिया ने लिखा है,
1: जैकब, ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फिर फिसलने का मन कर रहा है। अगर आज तुम पहाड़ी पर फिर फिसलने जाओ तो प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलना।
2: और चिट्ठी के आखिर में बड़े ही प्यार से उसने अपना नाम लिखा था, नादिया, नादिया।
0: उस दिन से हम दोनों फिसलने के लिए रोज पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज से मैं वही शब्द कहता हूँ,
2: I love you।
0: जल्दी ही नादिया को उन शब्दों का नशा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसा शराब या मॉर्फिन में होता है। अब वो इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह ही डर लगता है, लेकिन अब भाई और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करता है जो पहले की तरह ही उसके लिए एक पहेली बनी हुई है और उसके दिल को तड़पाती है। उसका शक हम दोनों पर है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन अब उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अकेले ही उस पहाड़ी पर पहुंच गया। नादिया को उस दिन मैंने नहीं बुलाया। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नादिया नीचे ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही हैं। वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं आऊं और उसे लेकर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ूं, लेकिन वो मुझे नहीं पाती। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है, हालांकि उसे अकेले फिसलने में डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर। वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी है, वो कांप रही है, पर वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझक के, बिना रुके। शायद उसने फैसला कर लिया है कि इस बार वो अकेले फिसल कर देखेगी कि वे मीठे शब्द सुनाई पड़ते हैं कि नहीं। मैं देखता हूँ कि बेहद घबराई हुई नादिया डर से अपना मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है, जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसलने जा रही हो। स्लेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ती है। नादिया को वो शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये देखता हूँ कि वो बेहद थकी हुई और कमज़ोर स्ले से उतरती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूँ कि वो खुद ही नहीं जानती उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा, उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। कुछ समय बाद वसंत का मौसम आया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ से ढकी रहने वाली वो सफ़ेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी बर्फ पिघल चुकी है, उसकी चमक खत्म हो चुकी है। अब सूरज की रोशनी उस पर शीशे की तरह नहीं चमकती। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नादिया भी उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला कोई नहीं। हवा खामोश हो गई है और मैं ये शहर छोड़कर पीटर्सबर्ग जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं वहां हमेशा के लिए चला जाऊं। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। शाम के वक्त मैं बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नादिया रहती है वो बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाड़ जो नादिया के मकान को बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम है काफ़ी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ भी दिखाई पड़ती है। हरियाली अभी नहीं है लेकिन वसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। मैं बाड़ के पास आता हूँ और एक दरार में से नादिया के घर की तरफ देखता हूँ। नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नजरों से आसमान की ओर ताक रही है। वसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। ये हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वे शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो वो उस हवा से प्रार्थना कर रही हो कि एक बार फिर से उसके लिए वो शब्द दोहराएं। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज में कहता हूँ,
2: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, आई लव यू नादिया।
0: बुझी हुई नादिया अचानक मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वो बेहद खुश है, बेहद खुश और बेहद सुंदर दिख रही है। उसकी उलझन खत्म हो चुकी है, वो जान चुकी है कि ये शब्द उसे हवा कहती है। हाँ, हवा ही कहती है।

0: और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट जाता हूँ। कई साल गुजर चुके हैं, अब नादिया की शादी हो चुकी है। शादी का फैसला उसने खुद लिया था या नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका पति एक बड़ा ऑफिसर है और उससे उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन उस समय को नादिया अब भी नहीं भूल पाई है। हवा के वो शब्द उसे आज भी याद हैं। ये उसके जीवन की सबसे खूबसूरत और सुखद याद है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नादिया से वो शब्द मैंने क्यों कहे थे, क्यों मैंने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया था।
1: श्रोताओं, आपने सुना, एक लड़की के द्वारा एक लड़की के साथ किया गया एक छोटा सा मजाक, अ जोक। लड़के के लिए ये दिल लगी थी, एक विनोद था, लेकिन लड़की के लिए दिल का मामला। लड़की आई लव यू सुनने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, और लड़का सिर्फ अपना मनोरंजन करता रहता है। उफ, कितनी क्रूरता है ये। शादी हो जाने के और 3 बच्चे हो जाने के बाद भी नादिया इन शब्दों को नहीं भुला पाती। क्या इतना क्रूर मजाक लड़के को उसे करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूस के महान कहानीकार चेखव की लिखी प्रसिद्ध कहानी ए जोक, यानी एक छोटा सा मजाक का रेडियो रूपांतरण। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार थे जवाहरलाल शाह, अंजू के आनंद, अमित कुंदानी। ध्वनांकन सचिन कुमार और अमित कुंदानी। सूत्रधार मोनिका तिवारी। निर्देशन जवाहरलाल शाह और इला शंकर गुहा। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं। नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
0: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
1: हो भी क्यों ना,
0: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
1: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
0: हाँ?
1: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
0: हाँ?
1: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
0: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
1: अच्छा?
0: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
1: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
1: कौन सी?
0: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
1: ये तो ठीक है।
0: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
1: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी। ऐसी मान्यता लोगों में आदिकाल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
1: वाह वाह, क्या कल्पना करिए तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
1: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
1: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
1: कौन से श्लोक?
0: अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां बृहदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
1: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
1: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
1: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
1: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है। दीपदान चलता रहता है। मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है? पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ।
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
1: बिल्कुल।
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियां कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियां।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा? सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान, और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है, और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।

0: बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
2: बिल्कुल।
1: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियाँ बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
2: हाँ।
1: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
2: चलो, शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की ही तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
2: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
1: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
2: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थीं, वे केवल एफिलेटेड थीं।
1: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
2: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
1: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
2: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
1: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
2: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
1: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
2: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से

0: अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
1: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी ने।
0: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या। सभा की शुरुआत में ये आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 176 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणी, देवता हैं इंद्र, छंद है अनुष्टुप और त्रिष्टुप।
3: मत्स्य नो वस्य इष्टय इंद्र मिंदो वृषा विष रिघायमाण इन्वसी शत्रुमंती न विंदसी। हे इंद्रदेव, ऐश्वर्य संपदा की प्राप्ति के लिए आप हमें आनंदित करें। हे बलदायक सोम, आप इंद्रदेव के शरीर में प्रविष्ट हों। शत्रुओं का संहार करते हुए आप देव शक्तियों के अंदर भी संव्याप्त हों तथा विकार रूपी शत्रुओं को समीप न आने दें। तस्मिन्नावेशया गिरो य एकश्चर्षणीनाम् अनुस्वधा यमुप्यते यवम् न चरकृषद् वृषा। जो इंद्रदेव संपूर्ण प्रजाजनों के एकमात्र अधीश्वर हैं, जिन इंद्रदेव के प्रति आप हविष्यान्न समर्पित करते हैं, जो शक्तिशाली इंद्रदेव किसान द्वारा जौ की फसल को काटने के समान ही शत्रुओं का संहार करते हैं, आप सभी उन्हीं इंद्रदेव की स्तुतियों द्वारा अर्चना करें। यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्चक्षितीनां वसु स्पाशयस्व यो अस्मद्रुग दिव्ये वाशनिर्जहि। हे इंद्रदेव, आपके हाथों में 5ों प्रकार की प्रजाओं की वैभव संपदा है, ऐसे आप हमारे विद्रोहियों को परास्त करें और आकाश से गिरने वाली तड़ित विद्युत के समान ही उनको विनष्ट करें। असुन्वंतम समम जहि दूणाशम यो न ते मयः अस्मभ्यमस्य वेदनम दद्धि सूर्यश्चि दोहते। हे इंद्रदेव, जो आपके लिए सोमाभिषवण नहीं करते, जो यज्ञ कर्मों से विहीन दुष्कर्मी बड़ी कठिनाई से नियंत्रण में आने वाले हैं, ऐसे दुष्टों का आप संहार करें, उनकी धन संपदा को हमें प्रदान करें। आवो यस्य द्विबर्हसोर केशु सानश गसत आजाविंद्रस्येन्दो प्रावो वाजेशु वाजिनम। स्तोत्रों के उच्चारण के समय सदैव उपस्थित रहकर आपने जिन 2 प्रकार के स्तोत्र ज्ञान यज्ञ आहुति परक हविर यज्ञों को संपन्न कराने वाले यजमानों की रक्षा की है। हे सोम, उसी प्रकार आप युद्ध के समय इंद्रदेव की तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के समय यजमानों की रक्षा करें। यथा पूर्वेभ्यो जरित्रिभ्य इंद्र मय इवापो न दृश्यते बभूथ तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुम्। हे इंद्रदेव, आप प्राचीन स्तोताओं के लिए प्यासे को जल और दुख पीड़ितों के सुख प्राप्ति की भांति ही आनंददायक और प्रीति युक्त हुए। आपकी उन्हीं प्राचीन स्तुतियों द्वारा हम आपको आमंत्रित करते हैं। आपकी कृपा से हम अन्न, बल और दीर्घ जीवन प्राप्त करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 176 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
3: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने भीतर की शांति को खो देते हैं, लेकिन कुछ पल भक्ति में बिताकर हम फिर से अपने आप से जुड़ सकते हैं। आइए सुनते हैं ये अगली भक्ति रचना।

जहाँ सकारात्मक सोच होती है वहाँ हर समस्या का समाधान भी होता है। सकारात्मक सोच केवल जीवन नहीं बदलती बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण भी बदल देती है।

हर चुनौती अपने साथ एक नई सीख और आगे बढ़ने का अवसर लेकर आती है। सूरज की तरह चमकना है तो फिर उसकी तरह निरंतर जलना भी होगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे पर।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय का। कहा गया है कि जिस तरह संसार की वस्तुओं को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है, उसी तरह पारलौकिक और आध्यात्मिक तत्वों को जानने के लिए वेदों की आवश्यकता है। वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अत्यंत गूढ़ विषयों का रहस्य सरलता से प्रकट कर देते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुति और स्मृति की परंपरा से वेदों की यात्रा आगे बढ़ी और कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का भव्य भवन वेदों पर ही टिका हुआ है। इसीलिए निरंतर वेदों की ओर चलने का आह्वान विद्वत जन करते रहे हैं। वेद हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। वेद हमारी संस्कृति का गौरव हैं। और इसी वैदिक साहित्य के विख्यात मर्मज्ञ थे डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे, जिन्होंने पुरातात्विक अनुसंधानों के कारण वैदिक युग के बदलते ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ वेदों को आधुनिक समय के समक्ष रखने का महान कार्य सिद्ध किया। गोविंद चंद्र पांडे का जन्म 30 जुलाई सन 1923 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री पीताम्बर दत्त पांडे और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। इस परिवार का संबंध अल्मोड़ा के पिलखा गांव से था, जो वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश के काशीपुर में बस गया था। यहीं उनकी स्कूली शिक्षा आरंभ हुई। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। यहाँ पंडित रघुवीर दत्त शास्त्री और पंडित रामशंकर द्विवेदी जैसे विद्वानों के सानिध्य ने उन्हें और प्रखर किया। उन्होंने व्याकरण, साहित्य और शास्त्रों का पारंपरिक रीति से गहन अध्ययन किया। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद गोविंद चंद्र पांडेय ने इलाहाबाद से एमए किया। अपनी संपूर्ण शिक्षा के दौरान वो सदा सर्वोच्च अंक प्राप्त किया करते थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनका मार्गदर्शन किया। इस तरह प्रोफेसर चट्टोपाध्याय के सानिध्य में गोविंद चंद्र पांडेय ने तुलनात्मक भाषा शास्त्र, धर्म, दर्शन और इतिहास का गहन अध्ययन किया। यूं भारतीय संस्कृति की महक में उनका तन मन रंगने लगा और भारत भूमि के प्रति मन श्रद्धा से झुकने लगा।

डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय को गढ़ने में प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं के मार्गदर्शन में गोविंद चंद्र पांडेय ने डीफिल की उपाधि प्राप्त की। इस शोध के दौरान ही उन्होंने पाली, प्राकृत, फ्रेंच, जर्मन और बौद्ध चीनी भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया और कुछ समय के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 10 वर्ष सेवाएं देने के बाद सन 1957 में गोविंद चंद्र पांडेय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातात्विक विषय के प्रोफेसर आचार्य होकर गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वो राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ के अध्यक्ष और इलाहाबाद संग्रहालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। भारत सरकार की अनेक महत्वपूर्ण समितियों में सदस्य के रूप में जुड़कर उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसके साथ ही देश विदेश में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बौद्धिक संगोष्ठियों में भागीदारी करके उन्होंने अपने ज्ञान और विचार से उन्हें समृद्ध किया। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ साथ डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय का अध्ययन और शोध का कार्य भी निरंतर जारी रहा। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में उन्होंने 40 के करीब ग्रंथ लिखे। इसके साथ ही उनके लगभग 200 शोध प्रबंध प्रकाशित हुए। उनका संपूर्ण सृजन एक धरोहर की तरह है जिससे भारतीय संस्कृति की आत्मा झांकती है और मन राष्ट्र गौरव से भर उठता है।

भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य और इतिहास उनके चिंतन और सृजन का केंद्रीय विषय थे। इन विषयों पर उनके लिखे अनेक आलोचनात्मक शोध ग्रंथ, काव्य ग्रंथ तथा विविध शोध आलेख भारत के साथ ही विदेशों में भी प्रकाशित हुए। डॉ. गोविंद चंद्र पांडेय की प्रमुख रचनाएं हैं भारतीयता के मूल स्वर, दर्शन विमर्श, सौंदर्य दर्शन विमर्श, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, मूल्य मीमांसा, साहित्य संस्कृति और सौंदर्य, शंकराचार्य विचार और संदर्भ, भारतीय समाज, भक्ति दर्शन विमर्श, भागीरथी, वैदिक संस्कृति आदि। उन्होंने ऋग्वेद के तीसरे से सातवें मंडल तक का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाएं उनकी चिंतन परिधि को व्याख्यायित करती हैं। उनके ग्रंथ वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक के इतिहास, धर्म और दर्शन का तार्किक अनुशीलन प्रस्तुत करते हैं। उनके लेखन में कोई पूर्वाग्रह या वैचारिक संकीर्णता नहीं है। डॉ. गोविंद चंद्र पांडे एक तरफ बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं तो दूसरी तरफ आदि शंकराचार्य की विचारधारा पर विमर्श भी करते हैं। वो एक तरफ संस्कृति के अध्येता हैं तो दूसरी ओर समाज शास्त्र की उपेक्षा भी उन्होंने नहीं की। वो सामान्य तौर पर परंपरावादी कहलाते हैं, जबकि वो स्वयं परंपरा को सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह मानते हैं। उनकी पुस्तक वैदिक संस्कृति में धर्म, दर्शन और विज्ञान की सामग्री के विश्लेषण में आधुनिक पाश्चात्य और पारंपरिक भारतीय दोनों प्रकार की व्याख्याओं की समन्वित समीक्षा की गई है और यही शैली उनकी अन्य रचनाओं में भी दिखाई देती है। सच तो यह है कि उनकी वृत्ति सर्वग्राही है। वो प्राचीन भारतीय संस्कृति को सभी विचारधाराओं की सलीला मानते हैं। एक बार उनके एक मित्र ने पूछा कि वेदों पर इतना कुछ लिखा जा चुका है, फिर आप नया क्यों लिख रहे हैं? इस पर डॉ. गोविंद चंद्र पांडेय ने कहा, एक तो नए पुरातात्विक अनुसंधानों के कारण अब वैदिक युग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, दूसरे औपनिवेशिक युग के विद्वानों ने जो वेद पर लिखा है उनमें अधिकांशतया वैदिक देवाख्यानों पर तुलनात्मक मिथकीय विज्ञान की दृष्टि प्रधान रही है, तत्व जिज्ञासा की दृष्टि नहीं। समूचे वैदिक धर्म का आकलन भी इन विद्वानों के लिए इस परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए जिसमें धर्म के इतिहास की कल्पना मैक्स मूलर और अन्य विद्वानों, विशेषकर मानव विज्ञानियों ने की है। डॉ. गोविंद चंद्र पांडेय ने इसी जमीन पर अपना शोध और लेखन किया। उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों के साथ साथ भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 21 मई सन 2011 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भाषा की मर्यादा कैसी हो इस विषय पर बाल सभा, वाचक स्वर मनीषा चतुर्वेदी का।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है भाषा की मर्यादा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं बातों की बात की। आप सोच रहे होंगे ना ये कौन सी बात हुई, लेकिन यही बात है बच्चों कि हम बात कैसे करते हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, बात करते करते कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते कि हम इतना कैजुअल हो गए हैं कि किसी से कुछ भी बोले दे रहे हैं। क्या हम अपनी भाषा में बुरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या हमने अपनी बोली में पूरी मर्यादा रखी हुई है या हम कुछ भी कहे जा रहे हैं? तो फिर अब हम आपको आज इसी बारे में बताने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है, है ना। एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है और वो दोहा है रहमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूत खात कपाल, है ना। कितनी बड़ी बात है। रहीम जी कहते हैं कि जीभ बड़ी पागल है, या ये कह लीजिए कि बावली है, जो बिना सोचे समझे स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें कह जाती है। और खास बात ये है कि ये जीभ तो बिना विचारे बोलकर तुरंत मुंह के अंदर छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसके द्वारा कहे गए जो कड़वे या गलत शब्द हैं उनके कारण मार किसको पड़ती है? हमारे सिर को, है ना। मतलब कहे कोई और भोगे कोई, कह रही है जीभ, भोग रहा है सिर, तो फिर तो गलत बात हो गई ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि ये जीभ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। एक और बात है, जो आपके शब्दों के बाण होते हैं ना वो ज्यादा तेजी से घायल करते हैं किसी और चीज से, तो इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात कहते हैं वो ये कि कही गई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं आपको इतनी सारी छोटी छोटी कहावतें, इतनी सारी बातें आज आपको बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि हमें जब भी बात करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात करने के लिए मुझे कहाँ से दिमाग में आया, तो कहानी बड़ी सिंपल है। मैं आप जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं खेल रहे होते हैं, कभी मंदिर के मैदान में, कभी कॉलोनी के पार्क में, कभी किसी के मोहल्ले में, अगर मैं जाती हूँ किसी से मिलने तो वहाँ जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत मिलती हूँ ये आपको पता है, तो बस जब मुझे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बाल सभा में आप लोगों से ये बात करनी है। तो हुआ ये कि मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में बैठी हुई थी, दो बच्चे खेल रहे थे, हालांकि टीम उनकी बहुत बड़ी थी, 10-12 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दो बच्चों को मैंने देखा जो खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ पड़े। तो ठीक है, बच्चों में झगड़ा होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो झगड़े बहुत जल्दी से सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले भाले भी होते हैं ना। आप सब आज लड़े कल दोस्ती, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अब लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक बच्चा बोला कि तुम पागल हो क्या, तो दूसरा बच्चा बोला कि तुमने मुझे पागल क्यों कहा। अब पहले बच्चे के पास कोई जवाब ही नहीं था कि पागल क्यों कहा, उसने कहा कह दिया तो कह दिया। वो बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने खेलने से मना कर दिया ये कह के कि नहीं, ऐसे कैसे कह दिया तो कह दिया। मेरी माँ कहती हैं कि किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो गलत हो। मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, पर मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुमको बुरी लगे, तुमने मुझे पागल क्यों कहा। और आप भी जानते हैं बच्चों की कितनी बार हम इस शब्द का दिन भर में इस्तेमाल कर देते हैं, कभी स्कूल में, कभी लंच टाइम में, कभी शाम को बच्चों के साथ खेलते वक्त। अब आप सोचिए कि क्या ये कहना सही है। मतलब दोनों ही बच्चे हैं। वो बच्चा कह रहा है, अरे कह दिया तो कह दिया, चल मैं तेरी दोस्ती हूँ। उसने कहा, नहीं, पहले आप ये बोलो कि आज के बाद इस भाषा का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आप देखिए कि वो बच्चा अपनी जगह कितना सही है। वो न सिर्फ आपकी दोस्ती के लालच में वो किसी गलत बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है दोस्ती, सारी चीजें, खेलना सब साइड में है। पहले ये बताओ कि तुमने जो आज बात कही है वो कल कहोगे? वो कह रहा है, अरे यार ये तो मुंह से निकल जाता है। अब देखिए दूसरी बात में ही क्या निकल गया, यार। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप में भाषा की मर्यादा नहीं है। फिर उस बच्चे ने टोक दिया कि देखो अभी तुमसे पागल कहने को रोका, अभी तुम बातों बातों में यार पे आ गए। तो बोला कि नहीं, बात अच्छे से करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी तुमसे दोस्ती हो जाऊंगा, मैं अभी तुमसे गले मिल लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अंत में बच्चों मुझे उस लड़ाई के बीच में पड़ना पड़ा। मैंने फिर दोनों बच्चों को समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की दोस्ती हो जाओ। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है कि आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना। तो वो बच्चा जानते हैं मुझसे क्या बोला? वो बच्चा मुझसे बोला, आंटी मैंने कोई मारा थोड़ी है जो ये इतना नाराज हो रहा है। अब आप सोचिए कि भाषा की, बोली की मर्यादा उस बच्चे के लिए मायने ही नहीं रखती जिसने ये कहा कि मैंने तुमको मारा थोड़ी है जो तुम इतना बुरा मान रहे हो। ये सब तो चलता है। नहीं चलता बच्चों, नहीं चलता, बल्कि मैं ये कहूंगी कि नहीं चलना चाहिए। मेरे संगत में जो जो बच्चे आते हैं, मैं हर एक को एक ही बात सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपका इम्प्रेशन होता है आप खुद, उसके बाद जैसे ही आप अपने शब्दों से कुछ अच्छी बात बोलते हो आपका इम्प्रेशन दोगुना हो जाता है, और जैसे ही आपने कुछ खराब बात की आपका इम्प्रेशन आधा रह जाता है। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपको एक प्रभावशाली बच्चा बनना है, चाहे वो क्लास हो, स्कूल हो, आपका कोई स्कूल का ग्राउंड हो, या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो, अगर आप बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। तो बच्चा बोला कि आंटी आप इतनी देर से मुझे समझाए जा रही हैं, आप इसे क्यों नहीं समझा रही हैं? मैंने कहा बेटा समझा तो मैं उसको भी रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें दोबारा गलती नहीं करनी है। तो बस ना तुम ये गलती करोगे ना बात बिगड़ेगी, क्योंकि तुम अगर ये कह रहे हो कि मैंने मारा थोड़ी, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात मारना है, उसके पहले की कोई भी गलतियां तुम्हारे लिए गलतियां हैं ही नहीं, है ना। तब उसको समझ में आया कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। तब उसने कहा सॉरी, तब उसने उस बच्चे से भी सॉरी कहा, और उन दोनों बच्चों की दोस्ती हो गई। तो चलिए भाई, हमारी तो बात यहाँ शुरू हो गई है कि हमने बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए। लेकिन आज का ये जो विषय है, आपको पता है ना, ये आपकी किताब में भी बहुत बार आता होगा, है ना। बहुत सारी जब आप हिंदी की कहानी

शब्दों का प्रयोग करता था और वहीं दूसरा बहुत गंदा, बहुत तेज, बहुत चिल्लाकर, बहुत चीखकर और बहुत एनोइंग था। तो अब आप सोचिए बच्चों कि ये सब चीजें कितना महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। हाँ, अभी मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने और ये कविता आपको समझ में आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसका छोटा छोटा सा जो अर्थ है वो हमारी बात को और बल देता है। तो कविता यहां से शुरू होती है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। इस बात का मतलब समझे आप कि भले ये शक्ति विज्ञान में है जिससे अमावस की रात भी पूर्णिमा जैसी बन जाती है, लेकिन विश्व पर आज क्यों दिन में ही अमावस जैसा अंधेरा छा जाता है। कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं कवि। आगे लिखते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। कितनी सुंदर बात है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब अगर हम अपनी बात को इस बात से करेंगे तो ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन तिमिर का मतलब बच्चों अंधेरा होता है और जो दीप स्नेह के दीप की बात जलाने की कर रहे हैं कवि, वो यही है कि भले ही हम साइंस ने, विज्ञान ने जो बल्ब जला दिए हैं, जितना आविष्कार हुए हैं, वो बल्ब जो जल रहे हैं अगर हम उन्हें बुझा दें तो हमें जो विद्युत के बल्ब हैं उन्हें बुझाकर असली बल्ब यानी हमारे भीतर की असली रोशनी को, स्नेह की रोशनी को प्रकाशित करना है, प्रकाशमान बनाना है संसार को, है ना। बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लाइट है उनसे आपको असली रास्ता, असली पथ नहीं मिलेगा, बल्कि असली पथ आपको किससे मिलेगा, उस दिए से जो स्नेह का दीपक है। जब किसी अनजान आदमी से मुस्कुराकर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं या नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, तब स्नेह का दीपक दोनों तरफ चलता है, है ना। आगे कवि कहते हैं कि मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। आगे लिखते हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब एक दीपक भी अगर रह गया स्नेह का, प्रेम का, तो आप यकीन करिए कि जो रात है उससे सवेरा वापस लौटेगा, मतलब अंधेरे की रात स्नेह के दीपकों से काली रात खत्म हो जाती है और जो स्नेह का सूर्य है, स्नेह का दीप है, उससे सारा तिमिर, सारा अंधकार भाग जाता है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की कविताएं, इस तरीके की कहानियां जो हिंदी साहित्य में हमारे पास बहुत, हम लोग समृद्ध हैं, अगर हम पढ़ें ना बच्चों तो हमारे शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर कभी आप सोच के देखिए कि अभी आपने ये कविता सुनी है ना, अगर आप ये कविता में से दो शब्द बहुत अच्छे चुनना हो आपको, तो आप क्या चुनेंगे? कभी आप अपने घर में तिमिर का इस्तेमाल करके देखिए, कितना अच्छा लगेगा, आपके घर में सब अचानक चौंक जाएंगे कि अरे वाह, बच्चे ने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित वो कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, कितनी अच्छी बात है कि विज्ञान में ही शक्ति है जिससे हम अंधेरी रात में भी बल्ब जलाकर उजेला कर देते हैं, मतलब उजेले को वो पूर्णिमा से बता रहे हैं और अंधेरे को अमावस से। तो कभी कभी अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य भी हमारी भाषा को ठीक करने में
बहुत मदद करता है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? बच्चों, मर्यादा का अर्थ सम्मान होता है, संयम होता है और शालीनता होता है। जब हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात करते हैं और ऐसे शब्द चुनते हैं जो किसी को चोट ना पहुंचाए, बस वही भाषा की मर्यादा कहलाती है, है ना? वो कहते हैं ना कि मीठे बोल अमृत समान और कटु वचन तीर और जहर के समान होते हैं, है ना? एक बच्चा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी भाषा अच्छी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। इसके साथ मत खेलना। आपने देखा होगा ना, कई बार मम्मियाँ निकलती हैं, वो कहती हैं देखो उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलोगे, वो बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और तुम भी वैसे ही बोलने लगोगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि संगत का असर पड़ता है और बहुत तेज़ी से पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे वही बोलते हैं जो वो घर में सुनते हैं। यदि घर में धन्यवाद, कृपया, क्षमा कर दीजिए जैसे शब्द सुनाई देंगे तो बच्चा वो सीखेगा, और यदि घर में हर समय ऊंची आवाज़, क्या कर रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो, इधर आओ, यहाँ बैठो, अगर ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा ना बच्चों से, तो बच्चे भी वही बात करेंगे। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इतना एक्सपोजर आप लोगों के लिए बच्चों अच्छा नहीं है। हम जो कार्टून देख रहे हैं आज, जो वीडियो देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब में आप देखिएगा कि भाषा की मर्यादा धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। मतलब कई बार मैंने देखा है कि आजकल बच्चे चल भग जा तू, इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, हट यहाँ से, सुना ही है? धीरे धीरे बच्चों को इसमें मज़ा नजर आने लगता है, हाँ वो इसको अपनी भाषा का हिस्सा ही बना लेते हैं। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि कैसे हैं आप, तो कैसा लगेगा आपको? और मैं ये कहूँ और बता सब ठीक चल रहा है, कैसा लगेगा आपको? कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहला वाला ना, क्योंकि उसमें आपके लिए भी एक सम्मान है। आप उम्र में छोटे हो लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ आप ठीक हो ना, घर से कुछ खाकर आए हो। अब यहाँ पर कोई मैं पूछ लूँ तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, भूखा भूखा तो नहीं है? दोनों बातें एक हैं, ठीक, लेकिन क्या है, दोनों बातों में सबसे बड़ा अंतर है लहजे का, सबसे बड़ा अंतर है भाषा की मर्यादा का। और बच्चों ये तो हमने सीखना होगा क्योंकि हमें तो बहुत आगे जाना है ना। कवि भी कह रहे हैं ना, भी जो कविता सुनाई उसमें, कि युगों से तुम्हीने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। हवा को पवन कहते हैं। उसने कई बार ऐसे खूबसूरत स्नेह के दीप बुझा दिए हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, बार बार स्नेह का दीपक जलाना है, और जो मैंने आपसे कहा उसका भी ख्याल रखना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो फिर आपको और ध्यान से भाषा का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं एक घर में गई थी, वहाँ पर दादी बार बार कह रही थी कि बेटा बेटा हमारा सीरियल लगा दो, और बच्चा लगातार एक ही बात कह रहा था, दादी चुप करो यार, बहुत बोलती हो आप, नहीं लगा रहा मैं आपका। जो माता पिता थे उन्हें क्या लग रहा था, बच्चा लाड़ में बोल रहा है ना, कि ठीक है मैंने जब बोला ये बोल कैसे रहा है, तो जानते हैं उनके उस बच्चे के माता पिता ने मुझसे क्या कहा, अरे ये और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें तो ये सब पूरे दिन चलता है, हम तो यहाँ बैठ के मज़े लेते हैं। ये बात हो सकता है कि किसी को अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना? अगर दादी दोस्त हैं तब भी, दादी दादी तो पहले रहेंगी ना, दोस्त तो बाद में बनेंगी ना। दादी की उम्र, दादी का इतना लंबा अनुभव, वो सब इस भाषा के लायक है क्या? चुप रहो दादी, बहुत बोलती हो आप, इसके लायक हैं दादी? ना, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और आपको किसी से भी, मैं तो बोलती हूँ अपने दोस्तों से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दादी तो बहुत बड़ी बात होगी, दादी से तो बहुत और आपका रिस्पेक्ट भी दुगना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी पापा की मम्मी है, तो आपको उस लिहाज से बोलना चाहिए, है ना? और कभी ये प्रेम नहीं कहता कि आप अपनी भाषा का संयम भूल जाए, है ना? कभी कोई किताब ये नहीं कहती कि किसी के प्रेम में पढ़कर या किसी से लाड़ में आप भाषा की मर्यादा भूल जाएं। क्योंकि बच्चों जो बातें अभी आपको मजाक लग रही हैं, वो थोड़ा बड़ा और हो जाओ आप लोग, फिर आपको लगेगा सब टोकेंगे, किसी के घर जाओगे सब टोकेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, एक और भाषा है, वो भाषा है ब्रो, वो भाषा है सिस, वो भाषा है क्या है, अधूरी भाषा। हाँ, जब हमारे पास पूरे शब्द हैं,
हमारी भाषा समृद्ध है, तो हमें जरूरत नहीं है कि बच्चों हम जो चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करें, है ना। आजकल लिख भी अधूरा अधूरा रहे, है ना। प्लीज लिखना है तो PLZ लिख के काम चला लेंगे, सिस्टर लिखना है तो SIS लिख कर काम चला लेंगे। आपको किस चीज की जल्दी है सोचिए। यहाँ तो हमारे लिखने की भाषा भी कैसी होती जा रही है। लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि ये चलता है, पर अगर सब कुछ अगर आप चलाने लगे ना तो आप ही चलते हो जाओगे। मतलब आप अपना स्थान बनाकर नहीं रख पाओगे, आपकी जो खूबियां हैं उसको समेट के नहीं रख पाओगे, आप भी वो भेड़ चाल चलोगे। और भेड़ चाल का तो आपको पता ही है कि भेड़ चाल का मतलब क्या होता है। भेड़ चाल मतलब एक भेड़ अगर गलत दिशा में चल दी तो सारी भेड़ें उसको फॉलो करने लगती हैं, है ना। तो हमारे पास तो दिमाग है ना बच्चों, हमें तो ये समझना है ना कि हमें क्या करना है। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, हम बहन भी तो लिख सकते हैं। बहन अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके नाम से संबोधित कर सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं। पर ये सिस ब्रो ये ठीक है कभी कभी के लिए, लेकिन इतना ट्रेंड फॉलो नहीं करें, है ना। और आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि दोस्ती का मतलब और बहुत अच्छी दोस्ती का मतलब अभद्रता नहीं होती, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत प्रगाढ़ मित्र हो गए तो सम्मान बिल्कुल ही कम हो गया, बिल्कुल घट गया, बिल्कुल मतलब सिरे से ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको आप बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के या हर वक्त उसका मजाक उड़ाकर उसे संबोधित करो कि अरे छोड़ो इससे क्या होता है, ऐसे नहीं चलता बच्चों। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए, आपको आनंद आएगा, है ना। और आज आपसे मैंने जो तीन भाषाओं की बात की, एक बोलचाल की भाषा, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मैटर करती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मैडम कुछ पढ़ा रही होती हैं और आप पेन को ऐसे करके खटपट करते रहते हो, सुनाई आ रहा है आपको, सुनाई आया मैं आपसे बात करूं और बीच में ये डिस्टर्बेंस आता रहे, अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। ऐसे ही जब आपसे कोई बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, आप नज़रें झुकाए बैठे हो, आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की हमारा इग्नोरेंस जाहिर करता है। तो हमें इस पर भी काम करना है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि शब्दों की ताकत कितनी होती है, है ना। जैसे बच्चों को देखा है आपने, कुछ बच्चे हम कहते हैं ये बहुत ताकतवर बच्चा है, कहते हैं ये कुछ भी सामान उठा लेता है, ये बहुत एक्सरसाइज करता है, ये बहुत दूर तक दौड़ लेता है, कहते हैं। वैसे ही अब मैं आपको शब्दों की ताकत से परिचय करवाती हूँ। जैसे आपको बुखार होता है तो डॉक्टर दवा देता है, वैसे ही जब आप शिक्षक के पास जाते हैं वो ज्ञान देता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से एक नहीं कई लोगों का मन जीत लेता है, बहुत लोगों का मन जीत लेता है। अब आप सोच के देखो, आप कोई काम करो और आपसे आपकी मम्मी बोले शाबाश बेटा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। आपका मन करता है कि आप दोबारा काम करो, है ना, और अच्छा करके दिखाओ। और वहीं एक बच्चा काम करके आए और उसकी मम्मा ये बोले ठीक है दोबारा जब करो तो थोड़ा और ठीक करना, तो उसका क्या होता है, मनोबल हल्का सा टूट जाता है। ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है, आप उसको ये कह दो धन्यवाद, तो कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी ओर कोई कोई चीज़ दे और आप एकदम से पलट कर चल दो, उसको क्या लगता है, अरे मैंने इसको इतने अच्छे से चीज़ दी और इसने तो मतलब उसे जताया भी नहीं कि उसको कैसी लगी, उसको अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ नहीं। फिर एक बार अगर गलती हो जाए कोई और आप एक बार में बिना किसी बहस के बोल दो ठीक है इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, कितनी बड़ी ताकत है ये। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है एक सॉरी बोलने से, कितनी सारे लोग आपसे एक बार में इम्प्रेस हो जाते हैं एक गुड मॉर्निंग करने से, एक नमस्कार करने से, एक सुप्रभात बोलने से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपनी वोकैबुलरी पर बहुत काम कीजिए बच्चों, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए, है ना। रोज़ 5 नए अच्छे शब्द सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, बड़ों से आदरपूर्वक बात कीजिए, गुस्से में भी बोलने से पहले 10 तक गिनिए ताकि आपके पास कोई बुरा शब्द आपकी जीभ से निकलना भी चाह रहा है तो वो 10 तक की गिनती उस शब्द को रोक ले। अब शब्द की जगह सम्मानजनक शब्दों का
चुनाव कीजिए। एक बार की बात सुनाती हूँ बच्चों। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तकिए की रुई हवा में उड़ा दो। शिष्य ने ऐसा कर दिया। फिर गुरु ने कहा, अब सारी रुई वापस इकट्ठी कर लो। शिष्य बोला, यह तो असंभव है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा शब्द भी ऐसे ही होते हैं, है ना? एक बार मुंह से निकल जाए ना, वापस नहीं आ सकते। जैसे तकिए की रुई एक बार आप निकाल दो, फिर आप कितनी भी उसको तकिए के भीतर डालने की कोशिश करो, या तो शेप बिगड़ जाएगा या तो वो तकिया पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही जब आप किसी से बुरे शब्द बोल देते हो, भले ही वापस आप जुड़ जाओ, दोस्ती हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में गांठ पड़ जाती है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग संकल्प लेते हैं आज बाल सभा में, हर बार ही करते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए। मैं जो जो बोलूंगी अब उसे आप दोहराएंगे। आज से हम सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर रोज नए 5 शब्द सीखें। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई कहानी या कविता पढ़कर ही सोएं। आज से हम कोशिश करेंगे कि नियमित पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। और अपने बड़ों से, अपने साथ के दोस्तों से, सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे। आंखें खोल लीजिए और अब अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में इतना ही बच्चों, है ना? चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, है ना? और हाँ, जो जो बातें मैंने आज आपसे कही है ना, उनको प्लीज फॉलो करना, उनका ध्यान रखना और उन पर अमल करके मुझे ज़रूर अगली बाल सभा में जब मैं आऊँ तो मुझे पता चलना चाहिए किसी न किसी बात से आपकी, कि आप घर में अच्छा व्यवहार कर रहे हो, है ना? और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बताओ तभी पता चलेगा, मुझे तब भी पता चल जाएगा जब आपके

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
6: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, एक बात जो सर्वविदित है वो ये है कि हमारा देश, ये भारत भूमि सदियों से अहिंसा और शांति का संदेश पूरे विश्व को देती आई है। मानवता और विश्व बंधुत्व हम भारतीयों का स्वभाव रहा है और इन्हीं जीवन मूल्यों को हम भारतीय पीढ़ी दर पीढ़ी जीते आए हैं और आज भी इन्हीं पर विश्वास करते आए हैं। लेकिन श्रोताओं, आजादी के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, समय के साथ साथ अपने अनुभवों और परिस्थितियों से हमने ये सीखा कि अपने राष्ट्र की अखंडता और अस्मिता की सुरक्षा के लिए ये जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है कि हमारी शांति प्रियता और अहिंसा की नीतियों का किसी के भी द्वारा गलत फायदा ना उठाया जाए। हमारे संयम और आत्मनियंत्रण को कोई भी हमारी कमजोरी ना समझे। श्रोताओं, आजादी के बाद युद्ध की कई विभीषिकाओं को झेल चुका भारत ये जानता है कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम विकल्प ही होता है और यही सत्य भी है। और इसीलिए कई बार शत्रुओं के उकसाने और सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ करने, उपद्रव करवाने जैसी गंभीर परिस्थितियां निर्मित होने के बावजूद हमारी सशस्त्र सेनाएं बेहद ही संयमित और सुनियोजित जवाबी कार्यवाही में ही विश्वास रखती हैं। श्रोताओं, हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए ऐसे कई ऑपरेशंस का अपने कार्यक्रम में हम पहले भी जिक्र करते आए हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विगत कुछ वर्षों में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं जो हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा देश की सुरक्षा के लिए चलाए गए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और अपनी सेवाओं के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित भी किए हैं। स्वागत है सर एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में।
7: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। बहुत सही कहा आपने
6: जी
7: कि जो हमारा संयम है और जिस शांति से रहना चाहते हैं
6: जी,
7: वो शायद काफी लोगों को भाता नहीं है
6: जी।
7: हमारी हमेशा ये पुरजोर कोशिश रही है कि हम कभी किसी को तंग ना करें
6: जी।
7: लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर आप देखें हमारी देश की जो सुरक्षा है आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी इज अ मेजर चैलेंज। बीते कुछ इयर्स में हमने देखा है कि खासकर जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसने जो है हमारे देश में काफी जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है
6: जी।
7: और ये बात सच है कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए हैं, पर फिर भी कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि हमें भी लगा कि ये हमारा जो संयम है जो आत्म नियंत्रण है इसकी हद पार हो चुकी है।
6: जी हाँ, हर बार संयम की परीक्षा ली जाती है,
7: इसके लिए मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
6: जी बिल्कुल,
7: खासकर कि आप देखते हैं कि आपके सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, उनको बेदर्दी से मारा जा रहा है, तो हर एक को जो है एक वक्त आता है जब एक मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है।
6: जी बिल्कुल,
7: और आई मस्ट से कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर काफी अच्छे डिसीजन लिए हैं।
6: दे
7: केम आउट विद वेरी इन अ फर्म एंड रिजोल्यूट मैनर टू डील विद ऑल द टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट अटैक्स। ठीक है, आई एम वेरी श्योर पूर्वा जी आपको भी ऑप सिंदूर के बारे में याद होगा।
6: जी बिल्कुल,
7: जो पिछले साल हुआ था।
6: हाँ जी सर, बड़ी हृदय विदारक घटना थी वो।
7: जी बिल्कुल, 22 अप्रैल की बात है जो है पहलगांव में श्रीनगर एक बैसरान वैली में जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है
6: जी।
7: बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट जो है जगह जगह से जो आए हुए थे वो उस वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से अपना आनंद ले रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग द लाइफ देयर एंड ऑल ऑफ अ सडन दे वर अटैक्ड बाय फोर मिलिटेंट्स। ठीक है, जिनके पास की बहुत ही ऑटोमेटिक एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, M4 राइफल्स, AK-47 थी, और उन्होंने अचानक आके इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब ये निहत्ते लोग उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं, तो दे एक्चुअली किल्ड ऑलमोस्ट 26 टूरिस्ट और इसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब मोर देन डजन पीपल वर एक्चुअली इंजर्ड आल्सो। हमने सबने देखा था, टीवी पे भी देखा था। ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने पूछ पूछ के मारा है लोगों को कि क्या आप हिंदू हो या मुसलमान हो, पॉइंट ब्लैंक पे उन्होंने मारा था जो है लोगों, मतलब ये एक तरह से मतलब इट इज कॉवर्डिस। ठीक है, ये बहुत ही मतलब जो है ना एक तरह से कायरतापूर्ण हरकत है। एंड जब आप उसकी डिटेल्स में जाते हैं, हमने देखा था कि दिस अटैक was planned, very well planned. It was very well coordinated. और इसको मतलब जो है पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट था। वहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये किया था उन्होंने प्रॉपर इसकी जो है एरिया की रेकी करी थी। मतलब उन्होंने देखा था कि इस इलाके में काफी टूरिस्ट आते हैं, जगह जगह से आते हैं, और उसके बाद इनके यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से जो है उन लोगों के पास कुछ हो नहीं रहता है, तो दे कोऑर्डिनेटेड। हाँ, एंड ये उस समय हुआ कि जब पीक टूरिस्ट सीजन चल रहा था अप्रैल के महीने में। उनका एम तो मतलब ये था कि मतलब इस अटैक से जो कश्मीर में जो पीस है, जो शांति बरकरार थी कश्मीर वैली में, उसको भंग हो जाए, लोगों के अंदर एक दहशत फैले और जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है उसको इंटरनेशनलाइज करें वो। तो इस इंसिडेंट के बाद जैसे आपको भी याद हो गया, मतलब पूरा जो कंट्री है इट वाज शॉक्ड।
6: जी बिल्कुल,
7: एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। एंड होल नेशन डिमांडेड ओनली वन थिंग कि देयर शुड बी अ सॉलिड एंड प्रॉपर काउंटर टू दिस टेररिज्म। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो मतलब एक्टेड इन ए वेरी रिजोल्यूट मैनर। उन्होंने जो है इसके लिए प्लान करना शुरू किया, क्योंकि देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता, एक झटके में तो नहीं होता है। यू हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू टेक लॉट ऑफ पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स से थे उसको एक्टिवेट किया गया। तो उनका मेन ये था कि जो पाकिस्तान है उसका ये जो सपोर्ट है टेररिस्ट को उसको एक्सपोज करा जाना चाहिए।
6: जी बिल्कुल,
7: एंड साथ ही साथ उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिससे कि वो दोबारा करने से पहले एक बार सोचे कि ये मतलब हम अगर करेंगे तो हमारा भी कोई नुकसान कर सकता है। अभी तक तो हमेशा ऐसा लगता था कि पाकिस्तान को कि ठीक है जब वो होता है तो इंडिया कुछ नहीं करता।
6: वही संयम वाली जो बात है
7: बिल्कुल। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वी विल कैरी आउट अ रिटेलिटरी एक्शन जिसमें कि जो वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कैंप्स, लोकेशंस हैं, उसके ऊपर अटैक करेंगे। देखिए ये जो है देश में स्ट्रेटेजिक लेवल यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये प्लानिंग चल रही थी कि कौन कौन से टारगेट्स हैं जहाँ पे कि ये टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में, कहाँ उनके सेफ हेवन्स हैं, कहाँ उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे भी वो लोग करते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है। तो ये सब टारगेट्स वगैरह प्लान हो रहे थे। इस बीच में जो ग्राउंड के ऊपर जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था इसके लिए जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ की उनके ऑपरेशंस चल रहे थे। इट वाज अ वेरी इंटेंस ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड कि उनको जो है हमको पकड़ना है और उनको खत्म करना है। तो एग्जैक्टली आफ्टर वन मंथ 22 मई को बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस पता लगा था कि श्रीनगर के पास एक एरिया है उसको बोलते हैं दाचीगाम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। तो वहाँ इंटेलिजेंस थी कि यहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं।
6: अच्छा,
7: तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था। ये ऑपरेशंस में प्राइमरीली जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
6: अच्छा,
7: उसके अलावा भी थे एंड इनको जो हाइड आउट था उसको मतलब दे वर एबल टू लोकेट इट एंड दे किल्ड ऑल द थ्री। वहां पे तीन उनको टेररिस्ट मिले थे, उनको तीनों को मार डाला था एंड बाद में जो है पता चला था कि ये जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने कि ये पहलगाम का अटैक किया था, और ऐसे पूरे मतलब वहां से प्रूफ भी मिले थे कि ये पाकिस्तान से आए थे जो है। लेकिन ये टेररिस्ट मारने से ही जो है रिटेलिएशन खत्म नहीं हुआ
6: जी,
7: था,
6: समस्या का हल भी नहीं हो सकता,
7: नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई ये तो मतलब टेररिस्ट थे लेकिन उनको जिसने सपोर्ट किया है, जो उनको बार बार सपोर्ट कर रहा है उसको मतलब वी मस्ट गिव अ सीवर ब्लो
6: जी, बिल्कुल
7: उनके ऊपर भी मतलब एक दमदार हथौड़ा तो मारना चाहिए है, उनको भी मतलब लगे कि जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा, भारत जो है इसके ऊपर जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। एंड इसी के कारण जो है ऑप सिंधूर लॉन्च किया गया था। हम देखिए सिंधूर नाम रखा
6: जी,
7: ये उन सारी जो महिलाएं हैं
6: जी सर
7: जो विधवा हुई थी
6: जी जी जी,
7: ये उनकी तरफ से ये एक बदला था
6: जी। वो तस्वीरें तो कभी भूल नहीं सकते सर हम।
7: एग्जैक्टली जो है
6: वो बिलकती महिलाएं और बच्चे जो हैं,
7: बिल्कुल
6: उनकी
7: तो ये उनका रिवेंज था
6: जी।
7: ऐसे टारगेट्स मतलब सेलेक्ट किए गए कि जिनके बारे में हमें रिलायबल इंटेलिजेंस थी वहाँ पे जो है टेररिस्ट का वो है कैंप्स है
6: जी।
7: या उनके जो है हेडक्वार्टर से ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं। तो ये जो टारगेट्स थे इसमें एलओसी के पास भी थे, आईबी के पास भी थे
6: जी।
7: कुछ डीप इनसाइड भी थे, कहते हैं कि 9 टारगेट्स जो सेलेक्ट किए थे
6: जी।
7: ये ऑपरेशन हमारा 7 मई को शुरू हुआ था एंड विद इन नेक्स्ट 25-30 मिनट्स जो है इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने जो उनको डेजिग्नेटेड टारगेट्स दिए गए थे उन पे एक साथ जो है हमला किया जो है। इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी ड्रोन्स और जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वेपन्स होते हैं उनसे जो है टारगेट्स को एंगेज किया था और उसी के साथ साथ उसी समय जो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी उन्होंने जो डीप इनसाइड पाकिस्तान में जो टारगेट्स थे उनके ऊपर अटैक किया था।
6: अच्छा।
7: कोई याद होगा कि उस समय राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था एंड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स जो है लॉन्च हुई थी, मिनिशंस यूज हुए थे। इट वॉज अ वेरी मतलब एडवांस्ड काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड एक जो बहुत अच्छी बात थी इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ध्यान में रखा गया था कि हमारा एम किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना,
6: वहां के आम नागरिकों पर कोई लक्ष्य नहीं था,
7: नहीं था लक्ष्य नहीं था
6: जी।
7: दूसरा हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हम इसके कारण जो है एक वॉर एस्केलेट करना चाहते हैं, सिचुएशन एस्केलेट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांटेड टू प्रोजेक्ट इट
6: जी
7: दैट इफ समथिंग हैपेंस वी आर केपेबल एंड वी विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज ऑफ इट
6: जी।
7: दैट वाज अ क्लियर कट मैसेज विच वॉज देयर एंड तीनों जो हमारे सर्विसेस हैं क्योंकि एट द सेम टाइम नेवी वॉज अलर्टेड तो दे वर एक्टिव इन अरेबियन सी कि अगर वहां से कुछ हो सकता है तो उसमें मतलब जो है वो एक्शन ले सके। तो जितने जो हमारे टारगेट थे डेजिग्नेटेड टारगेट्स थे दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड।
6: यहाँ पर सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, इसका यह मतलब है कि हमारी भारतीय यानी विशेष रूप से थल सेना ने सीमा पार करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें हमारे हथियारों से ही हमने वो काम कर डाला।
7: एग्जैक्टली क्योंकि ये जो लोकेशंस थी ऐसी थी जो हमारे जो वेपन्स हैं हमारे पास आर्टिलरी है उसमें स्पेशली ड्रोन्स का काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ था, वो उसकी हद में थे जो आर्मी को टारगेट्स मिले थे
6: जी, जी, जी,
7: तो देयर वाज नो नीड टू क्रॉस ओवर एंड जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो वेपन्स जैसे यूज किए थे बहुत एडवांस तरह के वेपन्स थे ना, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, एक लॉयटरिंग एमिनेशन करके बोलते हैं जो जाके उस जगह के ऊपर अब टारगेट ढूंढ के ही हिट करता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरिया, कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स थे ना, तो काफी एडवांस मतलब जो थे, देन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो इस्तेमाल हुए थे। अब जब भी हुआ तो नेचुरली इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि एक पाकिस्तान से रिटेलिएशन भी होगा
6: जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो प्रतिशोध लिया जाएगा,
7: हो गया होगा एंड हुआ भी। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट पाकिस्तान ने जो है ड्रोन्स अटैक किए थे और आर्टिलरी फायर हुआ था एलसी के ऊपर, लेकिन उससे हमें इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड थे एंड हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है मल्टीलेयर्ड है जो होता है वो इट वाज वेरी इफेक्टिवली वाज एबल टू मतलब जो है जो ड्रोन्स थे उनके अटैक से
6: उनके हमलों को नाकाम
7: कर पाया जो है, तो ये मतलब बहुत सक्सेसफुली रहा था।
6: और तो सर ये प्रणाली जो थी जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की है वो हमारी स्वदेशी प्रणाली है,
7: उसमें स्वदेशी भी है उसमें इम्पोर्टेड भी है। उसके बाद जो है पाकिस्तान फर्दर लॉन्च्ड एयर अटैक्स जो उन्होंने किया था एयरफील्ड्स पे हमारे जो अटैक किया था, हाउएवर हमें कोई डैमेज नहीं रहा था एंड उसके काउंटर के लिए 10th मई को फिर से जो है इंडियन एयरफोर्स ने बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है लॉन्च किए थे है ना, जिसमें कि उनके पाकिस्तान के एयरफील्ड्स और उनके काफी वाइटल इंस्टॉलेशंस थे जिसको कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। ये जब हुआ है 10th को देन पाकिस्तान प्रपोज अ सीज फायर, बिकॉज वो भी इस कंडीशन में नहीं था कि वो उसको
6: आगे बढ़ाए
7: ठीक है। एंड सी इंडियंस का जैसे जो इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन गवर्नमेंट का राज जो है बिल्कुल एम बहुत क्लियर था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, वी डोंट वांट इट टू एस्केलेट टू अ वॉर, लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं जो ये कायरतापूर्ण आप जो हरकत कर रहे हैं, आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट आ रहे हैं क्योंकि उनके पास जो हथियार मिलते हैं जिस तरह से तैयारी के साथ आते हैं तो पता चलता है कि उनको किसी ने सिखाया है, उनको बताया है, उनको पूरी इंटेलिजेंस है, उनको इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने आप नहीं कर सकते। आई मस्ट से सो इट वाज अ मेजर विक्ट्री एंड इट एक्चुअली डिस्प्लेड जो रिजोल्यूटनेस है हमारी गवर्नमेंट की, उनका डिटर्मिनेशन है कि भाई अगर ऐसा आप करेंगे तो हम भी आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस ऑपरेशन में अगर आप देखें तो टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय हुए, काफी जो की टेररिस्ट थे वो मारे गए एंड हमने जो एक आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है जो है कि क्रॉस बॉर्डर प्रिसिशन के साथ अटैक करने की कैपेबिलिटी वो हमने दुनिया को दिखाई
6: बिल्कुल
7: कि हम ये कर सकते हैं। इट वाज ए वेरी कोहेसिव काइंड ऑफ ऑपरेशन जिसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इसमें सिर्फ तीनों आर्म फोर्सेस ही नहीं इन्वॉल्व थी और भी जो पुलिस फोर्सेस थी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो काफी लेवल पे जो है, तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इन दैट आल्सो कि इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल जॉइंट ऑपरेशन ठीक है। एंड एक तरह से मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो पहलगाम में हुआ वहाँ पे और जो वहाँ पे शहीद हुए जो पर्यटक थे शायद कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मा को शांति मिली होगी
6: जी, बिल्कुल सर।
7: उनके परिवार वालों को भी एक तो महसूस हुआ होगी कि कोई उनके साथ खड़ा है।
6: तो सर आपने अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया वो तो अभी बिल्कुल वर्तमान की घटना है समझ लीजिए, क्या ऐसे ऑपरेशंस भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा और भी किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में?
7: बिल्कुल, अगर हम पीछे जाते हैं
6: जी
7: मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में हमने जो है उग्रवादी हैं उनके अगेंस्ट म्यांमार में ऑपरेशन किया था।
6: अच्छा,
7: वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जो हैं जहाँ पे कि काफी समय से जो है इंसर्जेंट एक्टिविटी
6: उग्रवादी समस्या रही है
7: और चल रही है
6: जी।
7: तो ऐसे ही क्या हुआ था कि 4 जून को एक उग्रवादी संस्था है उन्होंने चंडेल डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर के एक एम्बुश किया था जिसमें कि एक इन्फेंट्री बटालियन के 18 सोल्जर्स मारे गए थे एंड ये एम्बुश करने के बाद जो है ये लोग म्यांमार की तरफ चले गए थे क्योंकि म्यांमार में इनके पास जो है सेफ हेवन्स थे, वहां पे इनके हाइड आउट्स थे
6: जी।
7: तो उस समय एक ऑपरेशन जो है हम किया गया था जिसमें कि आर्मी ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन लॉन्च किया था।
6: अच्छा,
7: ठीक है। अगेन इट वाज कोऑर्डिनेटेड एट वेरी हाई लेवल, अगेन इट वाज अ डिसीजन वाज टेकन कि ओके वेदर दे आर इन म्यांमार मतलब वो दूसरी कंट्री में हैं फिर भी, लेकिन हम जाएंगे और उनको एक जो है सबक जरूर सिखा के आएंगे।
6: तो सर यहाँ पर मैं एक प्रश्न ये आता है कि जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो क्या हम वहाँ की सरकार को इसके बारे में सूचित करते हैं?
7: बिल्कुल करते हैं, जैसे अगर वो फ्रेंडली कंट्री है तो डेफिनेटली जो है हम बिल्कुल किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहने देना चाहते हैं। इसीलिए वही कारण है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एट हायर लेवल जो है। तो इसमें जो है ईस्टर्न थिएटर में हमारी जो एलिट स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जो है 70 कमांडोस थे जो कि गए और सरप्राइज मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है ये पूरा पैदल गए थे।
6: अच्छा सर, मैंने सुना 50 किलोमीटर के आसपास था।
7: हाँ उतना था, 20 से 30 किलोमीटर के करीब जो लोग गए थे था जो कैंप हाइडआउट्स थे। एंड सिंस मैं वहां रहा हूँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इट इज नॉट सो इजी कि रात के अंधेरे में आप जो है दूसरी जगह जा रहे हैं जंगल के बीच में से जहाँ आपको रास्ते नहीं पता है, आपको ये किसी तरह का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बट यू नो कि यहाँ पे हमने करना है। तो इसमें तीन तरह के होते हैं, एक तो इन्फिल्ट्रेशन होता है अंदर जाना ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूशन होता है ऑपरेशन करना, तीसरा एक्सफिल्ट्रेट करना होता है
6: वापस आना।
7: जी तो ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं बहुत ही सक्सेसफुली वहां पे जो हाइडआउट्स थे उनको रेड किया और रेड करने के बाद जो है ऑलमोस्ट 38-40 इंसर्जेंट्स मारे थे एंड सक्सेसफुली दे इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम देयर जो है। दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट एक्चुअली ऑन 9th ऑफ जून तब हुआ था एंड अगेन इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। यू कैन वेल इमेजिन इसके लिए यूनिट को एक कीर्ति चक्र, एक शौर्य चक्र और 5 सेना मेडल बहादुरी के लिए जो है करेज के लिए नवाजा गया था। तो दिस वाज वन ऑपरेशन व्हिच वाज कैरिड आउट ठीक है द सेम काइंड। फिर 2016 में अगर आपको याद हो उरी अटैक हुआ था।
6: जी सर,
7: उरी अटैक में भी अगेन जो है 18 सितंबर को जो टेररिस्ट हैं, चार टेररिस्ट हैं उरी में, हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसमें 19 सोल्जर्स को मारा था। तो अगेन इसमें जो है गवर्नमेंट ने ना रिजॉल्व प्रॉपर किया था कि भाई हमको जो है इसका जवाब देना है एंड इट वाज डिसाइडेड कि उस समय हमने डिसाइड किया कि जो काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करेंगे अक्रॉस द LOC स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बेस्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो टेररिस्ट लोकेशन थी। क्या होता है कि जो उस इलाके में अगर आप देखेंगे LC जो है वहां से जहां से भी ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो उसके पीछे इनके जो है बेसिस होते हैं,
6: बेस कैंप्स होते हैं
7: वहां से लॉन्च पैड्स बोलते हैं वो भी होते हैं जहां से लोग आते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है अगेन हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है इन्होंने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था और 28 सितंबर को ये जो ऑपरेशन था, मतलब इसकी खासियत ये थी कि एक बहुत बड़े स्केल पे था ये।
6: अच्छा,
7: मतलब इट वाज नॉट ए स्पेसिफिक जगह पे किया था, ऑलमोस्ट ओवर अ स्प्रेड ऑफ अराउंड 80-90 किलोमीटर के स्प्रेड में। तो काफी सारी जो टीम्स थी
6: अलग अलग भागों में बटे हुए
7: अलग अलग उसमें गई थी
6: एंड
7: जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया था और उसको करने के बाद जो है सक्सेसफुली दे केम बैक विदाउट एनी कैजुअल्टी,
6: एक ही रात के अंदर,
7: एक ही रात में जो आए थे ये लोग। एंड इट वाज अगेन ए मेजर ब्लो टू द टेररिस्ट एंड द पाकिस्तान आर्मी। ये जो है मतलब जैसे हम बताना चाहते हैं कि मतलब सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस पहले से चले आ रहे थे, मतलब इन द सेंस पूर्वजी ये 2015 से शुरू हुआ था। म्यांमार के बाद जो है हमने नेक्स्ट अगर आपको याद हो उरी अटैक के बाद 2016 में किया था जिसका भी हमने जिक्र किया एंड फिर 2019 में जब 14 फरवरी को पुलवामा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें कि 40 हमारे बहादुर जवान CRPF के मारे गए थे, शहीद हुए थे। ये जो हमारे 40 बहादुर जवान शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए और साथ में जो है अगेन मतलब इट वाज अ रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट की जो है हमें मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। 26 फरवरी को इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट करी थी और ये जो है बाय एयरफोर्स हुई थी, एयरफोर्स ने अटैक किया था जिसमें कि बालाकोट में टेररिस्ट का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था उसको जो है सक्सेसफुली बर्बाद किया था जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बर्बाद हुआ था और उसके अलावा जो है काफी सारे टेररिस्ट मारे गए थे। मैं जिक्र करना चाहूंगा उस समय विंग कमांडर अभिनंदन जी का,
6: जी, बिल्कुल सर।
7: वो इस ऑपरेशन में शामिल थे
6: जी।
7: और उनका MiG-21 जो है वो शॉट डाउन हुआ था जिसमें वो सक्सेसफुली बेल आउट हुए थे, लेकिन जब वो नीचे मतलब जमीन पे जब उनके पैर लगे तो उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान में है। बट अगर आपको याद हो उनका चेहरा उस समय भी जो है मतलब कोई उनके चेहरे पे डर नहीं था, कुछ नहीं था, शिकन भी नहीं थी, और पाकिस्तानी उनसे लगातार पूछ रहे थे आप कौन है क्या है, तो जितना वो बता रहे थे मेरा नाम ये है, मेरा रैंक ये है, दैट्स ऑल एंड वंडरफुल मतलब जो है
6: वो ये तो सर प्रशिक्षण का कमाल है
7: बिल्कुल। और सच में इस बहादुर अफसर के लिए तो मतलब तारीफ ही निकलती है मुझसे। एंड ये देखिए उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट का कितना फर्म मतलब जो स्टांस था एंड डिप्लोमेटिकली कितना मतलब जो है एफर्ट्स थे कि विंग कमांडर अभिनंदन जी जो है दो दिन के बाद मतलब जो है ऑन 1st March मतलब ही केम बैक सेफ एंड साउंड टू इंडिया।
6: इतना दबाव बना कि उन्हें वापस उनको करना पड़ा,
7: ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस का जिक्र किया है मैंने जो हुए हैं, इसके अलावा भी हैं
6: जी।
7: बट एक जो सब बातों से जो पता चलता है
6: जी,
7: कि जो हमारा गवर्नमेंट का स्टैंड है कि अगर आपने हमारे पे कुछ किया तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, दैट इज अ मेजर थिंग व्हिच हैज कम आउट ऑफ दिस।
6: अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं,
7: छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। हम शांति प्रिय हैं, ठीक है, जैसे आपने शुरू शुरू में बोला था
6: जी,
7: लेकिन जो है अगर आप हमारी शांति भंग करेंगे तो आपको उसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा। एंड आने वाले वक्त में भी अगर कुछ होता है तो आई एम वेरी श्योर कि वी विल ऑलवेज स्टैंड एंड विल अटैक देम। हम जो है किसी भी चीज का बदला जरूर लेंगे
6: जी। वो कहते हैं ना सर कि यदि सशक्त है सेना तो सुरक्षित है सीमा।
7: एग्जैक्टली, अरे वाह
6: जी। तो श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपने आधारभूत ढांचे और मिलिट्री तकनीक को बेहद ही मजबूत नहीं किया, अपने इरादों को भी साफ किया है। उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही भारत का अब न्यू नॉर्मल है। आतंकवाद उग्रवाद के नेटवर्क और उनके प्रायोजकों को स्पष्टता के साथ निशाना बनाकर इन ऑपरेशंस के माध्यम से भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि आतंकियों और उग्रवादियों को जवाब सीमाओं या कूटनीतिक जटिलताओं की परवाह किए बिना त्वरित और उचित तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर शेर है जो कि साहिर साहब का है, उसे कहना यहाँ पर बेहद ही लाजमी रहेगा सर। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।
7: बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने, दिस इज व्हाट द पॉलिसी इज।
6: तो सर इसी शेर के साथ आज हम इस कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: थैंक यू पूर्वा जी एंड थैंक यू श्रोताओं। जय हिंद।
6: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार की गायन और जुगलबंदी हमारे विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन जुगलबंदी। कलाकार हैं आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।

0: ये गायन जुगलबंदी हुई भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में।
1: राधे राधे, प्रेक्षा गृह में उपस्थित आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, गुणीजनों को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे लिए आज एक बहुत ही खास अवसर है, क्योंकि भोपाल की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। ग्वालियर का जन्म, भोपाल में आगे के सारे परवरिश, और 14-15 साल की थी तब पुणे चली गई थी आगे गाना सीखने के लिए। तो बचपन से ही भारत भवन एक बहुत ही खास मंच रहा है मेरे लिए। बड़े बड़े उस्तादों को, पंडितों को, गायकों को सुना है, उनसे इंस्पायर हुए, ऐसा लगा कि यहाँ पे गाना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए। तो आज गुरु कृपा से, परमेश्वर कृपा से आज यहाँ हैं। कई बार आती गई भारत भवन गाने के लिए, आज फिर से हैं हम लोग यहाँ पे। आज आस्था मेरी परम सखी, हम लोग दोनों यहाँ पे हैं। तो आज हम लोग राग मेघ से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पारंपरिक बंदिश है मध्य विलंबित झपताल में, जिसके बाद द्रुत बंदिश पंडित अरुण भादुरी जी की रचना है। आज हमारे लिए संगत में रामेंद्र जी हैं, नितिन भाई हैं, महेश भाई हैं। हम लोग शुरू करते हैं।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी की गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और BDL के बारे में। ये किस तरह हमारी सेनाओं की आंख, कान, तकनीकी और दिमाग बनकर देश की सुरक्षा को मजबूत करती है। रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से BEL ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: लेकिन आज एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि अगर BEL सैनिकों को तकनीकी शक्ति देती है, हाल आकाश में उड़ने वाले विमान बनाती है, तो समुद्र की विशाल लहरों पर भारत की शक्ति का निर्माण आखिर कौन करता है, कौन बनाता है वो विशाल युद्धपोत जो हजारों टन वजनी होते हैं, कौन तैयार करता है वे पनडुब्बियां जो समुद्र की गहराइयों में रहकर देश की सुरक्षा करती हैं?
0: इन सारे प्रश्नों के उत्तर माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में छिपे हुए हैं। आइए चलते हैं रुचि और दादू के पास। रुचि के सवाल और दादू के उत्तर से हम और बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या है। और श्रोताओं, अब हमारी रुचि बिटिया भी सियानी हो गई है, वो कॉलेज जाने लगी है। तो आइए सुनते हैं देश के संस्थान।
2: दादू, ये आप कितनी अच्छी जगह मुझे लेकर आए हैं। ये समुद्र कितना दूर तक फैला हुआ है ना, जहाँ तक नजर घुमाओ वहाँ तक बस नीला पानी। थैंक यू सो मच दादाजी मुझे यहाँ लाने के लिए, वरना मुझे तो लगा था इस बार मेरी छुट्टियाँ यूं ही बर्बाद हो जाएंगी।
3: मुझे लगा इस बार मैं बिटिया रानी को क्यों ना एक संस्थान की कहानी सुनाने की बजाय दिखाई दूं। अब तुम कॉलेज ज्वाइन करोगी तो फिर तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा हैं? अपने दादू के साथ कहीं घूमने जा पाओ।
2: अरे दादू, आप भी ना, मैं कॉलेज जा रही हूँ अपने ही शहर में, आपसे कहीं दूर थोड़े जा रही हूँ।
3: वो देखो बेटा, समुद्र में दूर एक जहाज भी है।
2: कहाँ है दादू?
3: अरे वो देखो, एकदम सामने।
2: हाँ हाँ हाँ, दिखा दिखा। वाव दादू, कितना बड़ा शिप है। अच्छा दादू, पिछली बार आपने मुझे BEL BDL के बारे में बताया था। रडार, मिसाइल प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन दादाजी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई।
3: कौन सी बात बिटिया?
2: ये बात कि यदि कोई युद्धपोत समुद्र में तैनात हो और उस पर BEL की तकनीक लगी हो, तो सवाल ये है कि उस युद्धपोत को बनाता कौन है?
3: भाई तुमने तो आज का पूरा विषय ही पूछ लिया, यही देखने तो आज हम यहाँ पर आए हैं बेटा।
2: सच में दादू?
3: हाँ हाँ बेटा, सच में। तो चलो, आज हम ऐसे संस्थान की कहानी जानेंगे जो भारत की समुद्री शक्ति का निर्माता है।
2: और उसका नाम क्या है?
3: उसका नाम है बेटा माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे संक्षेप में MDL कहा जाता है।
2: सच में दादू? आज आप MDL की कहानी सुनाने वाले हैं?
3: क्या तुम जानती हो? हाँ भाई, हम तो जमीन पे रहते हैं, फिर समुद्र की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
2: ये तो मैंने सोचा नहीं दादू।
3: देखो बेटा, भारत की समुद्री सीमा लगभग 7500 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है, और ये सब तो तुम जानती ही हो।
2: आपने पहले बताया था दादू।
3: तो ये भी याद रखो कि दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता हुआ जाता है। भारत का भी बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। तेल, गैस, मशीनें, खाद्यान्न और अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं जहाजों से ही आती जाती हैं बच्चे।
2: तो दादाजी, समुद्री मार्ग सुरक्षित ना हो तो समस्याएं हो सकती होंगी।
3: बिल्कुल बेटा, इसीलिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उनके लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाता है माझगांव डॉक।
2: अब समझी दादाजी मैं। अच्छा ये बताइए ना कि ये MDL की स्थापना कब की गई थी?
3: इसकी कहानी बहुत पुरानी है बच्चे। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तभी इसकी शुरुआत हो चुकी थी।
2: सच में?
3: 18वीं शताब्दी में मुंबई क्षेत्र में एक छोटे जहाज निर्माण और मरम्मत यार्ड के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी बेटा।
2: 18वीं शताब्दी दादाजी? इसका मतलब उस समय भी जहाज बनाए जाते थे?
3: बिल्कुल, समुद्री व्यापार उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे ये यार्ड विकसित होता गया, लेकिन बेटा इसके पहले ये कई विदेशी कंपनियों के अधीन भी रहा। फिर 1934 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में संगठित किया गया।
2: तो फिर आजादी के बाद क्या हुआ?
3: 1960 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद से इसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया, भारत के लिए युद्धपोत बनाना, भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
2: यानी दादाजी, पहले ये सामान्य जहाजों पर काम करता था जो समुद्री व्यापार के काम आते थे, और बाद में युद्धपोतों का निर्माण शुरू हुआ होगा।
3: बिल्कुल बेटा, और यही बदलाव इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्ड बनाता है।
2: दादू, तभी लोग इसे राष्ट्र का पोत निर्माता कहते होंगे।
3: हाँ बेटा, क्योंकि भारत के अनेक प्रसिद्ध युद्धपोत और पनडुब्बियां इसी संस्थान में बनी है।
2: मतलब भारतीय नौसेना की शक्ति का बड़ा हिस्सा यही बनाया गया है।
3: बिल्कुल बेटा, लेकिन बिटिया, युद्धपोत निर्माण कोई आम काम नहीं है, क्योंकि एक आधुनिक युद्धपोत में लाखों पुर्जे, हजारों किलोमीटर तक फैली तारें, अत्याधुनिक रडार, मिसाइल प्रणाली, हेलीकॉप्टर, डेक और कंप्यूटर नेटवर्क लगे होते हैं बेटा।
2: दादू, मतलब ये समुद्र में चलता फिरता कोई शहर जैसा होता होगा।
3: एकदम सही कहा बेटा, वास्तव में आधुनिक युद्धपोत एक तैरते हुए तकनीकी नगर की तरह ही होता है।
2: दादू, माझगांव डॉक का पहला बड़ा युद्धपोत कौन सा था?
3: INS नीलगिरी।
2: और उसकी खास बात क्या थी?
3: वो आधुनिक भारत में निर्मित प्रमुख युद्धपोतों में से एक था बेटा। उसका निर्माण ब्रिटिश तकनीकी सहयोग से हुआ था, लेकिन उसके निर्माण ने भारतीय इंजीनियरों को युद्धपोत निर्माण की बारीकियां सीखने का अवसर दिया।
2: मतलब ये भारतीय इंजीनियरों के लिए युद्धपोत निर्माण सीखने की शुरुआत थी।
3: बिल्कुल, अक्टूबर 1968 में उसका जलावतरण हुआ बेटा, और 1972 में वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया।
2: दादाजी, ये जलावतरण क्या होता है?
3: अरे बुद्धू रानी, नाम से समझ नहीं आया क्या?
2: क्या दादू, आप भी?
3: अरे बेटा, जब जहाज पहली बार पानी में उतारा जाता है उसे जलावतरण कहते हैं।
2: अब समझी मैं। अच्छा ये बताइए, क्या उस समय लोगों को विश्वास था कि भारत इतने बड़े युद्धपोत भी बना सकेगा?
3: हर कोई विश्वास नहीं करता था। कई लोगों का मानना था कि भारत को हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने मेहनत की, दिन रात काम किया, नई तकनीक सीखी, और जब INS नीलगिरी समुद्र में उतरा तब वो केवल एक जहाज नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था बेटा।
2: वाह दादू, इसका मतलब वो दिन किसी सपने के पूरा होने जैसा था।
3: बेटा,
2: तो फिर हमारा बिना किसी बाहरी सहयोग के बनाया गया पहला युद्धपोत कौन सा था दादाजी?
3: INS गोदावरी। इसका जलावतरण मई 1980 में हुआ बेटा, और दिसंबर 1983 में इसे नौसेना को सौंप दिया गया।
2: अच्छा दादू, इसके बाद क्या भारत ने और भी युद्धपोत बनाए थे?
3: हाँ बिटिया, नीलगिरी की सफलता ने भारतीय इंजीनियरों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय नौसेना ने देखा कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक युद्धपोत बनाने में सक्षम है, इसीलिए आगे और बड़ी जिम्मेदारियां माझगांव डॉक को सौंपी गयी।
2: दादू, ये श्रेणी क्या होती है? मैंने कहीं सुना था कि नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी।
3: बेटा, युद्धपोतों में श्रेणी का मतलब होता है एक जैसे डिजाइन और विशेषताओं वाले जहाजों का समूह।
2: अच्छा।
3: जैसे किसी परिवार के कई सदस्य एक ही परंपरा से जुड़े होते हैं, वैसे ही एक ही डिजाइन पर बने कई युद्धपोत एक श्रेणी के कहलाते हैं।
2: यानी नीलगिरी श्रेणी और गोदावरी श्रेणी अलग अलग पीढ़ियों के युद्धपोतों के समूह थे।
3: हाँ बच्चे, और हर नई श्रेणी अपने से पहले वाली श्रेणी की तुलना में कुछ नई क्षमताएं लेकर आती थी।
2: दादू, ये गोदावरी श्रेणी की जिम्मेदारी क्या थी?
3: बेटा, नई पीढ़ी के युद्धपोत विकसित करने की, ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक आधुनिक, अधिक सक्षम और अधिक स्वदेशी तकनीक से बने हों।
2: दादू, तो क्या गोदावरी श्रेणी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी?
3: हाँ बेटा, क्योंकि ये केवल एक नया युद्धपोत नहीं था बल्कि भारतीय नौसेना और भारतीय अभियंताओं के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था।
2: वो भला कैसे?
3: नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोतों के निर्माण में विदेशी सहयोग अपेक्षाकृत ज्यादा था, लेकिन गोदावरी श्रेणी में भारतीय नौसेना, भारतीय डिजाइनरों और अभियंताओं की भूमिका कहीं अधिक बढ़ गई थी।
2: यानी भारत केवल युद्धपोत नहीं बना रहा था बल्कि उन्हें खुद भी डिजाइन करना सीख रहा था दादाजी।
3: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
2: अच्छा, और गोदावरी श्रेणी की क्या खासियत थी?
3: देखो बेटा, इन युद्धपोतों का आकार पहले की तुलना में बड़ा था। इनमें अधिक हथियार और उपकरण लगाए जा सकते थे, साथ ही इन पर दो बड़े हेलीकॉप्टर संचालित किए जा सकते थे जिससे समुद्र में उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती थी।
2: वाह दादाजी, यानी ये केवल बड़े जहाज नहीं थे बल्कि चलते फिरते समुद्री सुरक्षा केंद्र जैसे थे।
3: हाँ बेटा, इनमें बेहतर रडार, उन्नत संचार प्रणालियाँ और अनेक आधुनिक सुविधाएं थी।
2: यानी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में ये भारत की एक नई छलांग थी।
3: हाँ, नए प्रकार के युद्धपोत विकसित करने की छलांग। ऐसे युद्धपोत जो पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक आधुनिक और अधिक स्वदेशी हों।
2: दादाजी, यानी नीलगिरी श्रेणी की तरह ही गोदावरी श्रेणी भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी।
3: बिल्कुल, इसे भारतीय युद्धपोत निर्माण की परिपक्वता का प्रतीक माना जाता है।
2: फिर
3: इसके बाद INS गंगा और INS गोमती बनाए गए। इन युद्धपोतों ने वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की बेटा।
2: दादाजी, एक बात समझ में नहीं आई मुझे।
3: पूछो पूछो बेटा।
2: क्या सभी युद्धपोतों के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे?
3: हाँ बच्चे, भारत की महानदियों के नाम पर, ताकि वे हमारी संस्कृति और शक्ति दोनों का प्रतीक बन सके।
2: अच्छा, चलिए दादाजी और बताइए ना कि युद्धपोत और क्या क्या करते हैं।
3: देखो बेटा, जरा कल्पना करो कि समुद्र में हजारों जहाज चल रहे हैं। कुछ व्यापारिक हैं, कुछ मछली पकड़ने वाले हैं, लेकिन उनमें से किसी में कोई दुश्मन की गतिविधि भी हो सकती है। बस इसीलिए हमारे युद्धपोत ऐसी घुसपैठ से बचने के लिए निगरानी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, समुद्री डाकुओं से मुकाबला करते हैं और आपदा के समय सहायता पहुंचाते हैं और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते हैं बेटा।
2: मतलब हमारी युद्धपोत समुद्र के प्रहरी हैं दादाजी।
3: बिल्कुल बिल्कुल प्रहरी हैं बेटा।
2: अच्छा दादू, युद्धपोत निर्माण तो मुझे समझ में आया, लेकिन इसके बाद इस डॉक को कौन सी बड़ी परियोजना मिली है?
3: इसके बाद इसे दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व मिला बेटा।
2: विध्वंसक, ये क्या होता है दादाजी?
3: देखो बेटा, हर युद्धपोत का काम एक जैसा नहीं होता। कुछ जहाज सैनिकों और सामान को ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ समुद्र में गश्त करते हैं और कुछ दुश्मन पर तेज और प्रभावी आक्रमण करने के लिए। विध्वंसक, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
2: अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर।
3: हाँ, ऐसा ही एक शक्तिशाली युद्धपोत होता है बेटा।
2: तो उसका मुख्य काम क्या होता है दादाजी?
3: इसका काम अपने बेड़े की सुरक्षा करना होता है, दुश्मन के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों का सामना करना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं आक्रमण करना होता है। इसीलिए इसे नौसेना के सबसे सक्षम और बहुउद्देशीय युद्धपोतों में गिना जाता है।
2: यानी एक ही युद्धपोत कई तरह की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
3: इसमें अत्याधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, टॉर्पिडो, हेलीकॉप्टर और उन्नत संचार प्रणालियां होती हैं बच्चे। इसीलिए इसे समुद्र का एक चलता फिरता युद्ध केंद्र भी कहा जा सकता है।
2: वाह दादाजी, यानी दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक बनाना किसी भी शिपयार्ड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी।
3: हाँ, जब किसी भारतीय शिपयार्ड को इतने उन्नत युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी मिलती है तो ये केवल उस संस्थान पर नहीं बल्कि भारतीय अभियंताओं, डिजाइनरों और तकनीकी क्षमता पर देश के विश्वास का प्रतीक भी होता है बेटा। अंग्रेजी में इसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये सामान्य युद्धपोतों से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है।
2: सच में? कितना शक्तिशाली दादाजी?
3: लगभग 6,700 टन वजनी। उस समय एशिया के क्षेत्र में बने सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक था बेटा, और इस श्रेणी का पहला पोत था INS दिल्ली। इसका जलावतरण 1991 में हुआ। और 1997 में ये नौसेना में शामिल हो गया।
2: और उसके बाद?
3: उसके बाद INS मैसूर और INS मुंबई, ये तीनों भारतीय नौसेना शक्ति के प्रतीक बने।
2: दादाजी, क्या इन पर मिसाइलें भी होती हैं?
3: हाँ बेटा, आधुनिक रडार, मिसाइलें, तोपें, हेलीकॉप्टर और भी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ।
2: दादू, मैंने कार्वेट का नाम भी सुना है, ये बताइए ना ये क्या होता है?
3: कार्वेट छोटे आकार का युद्धपोत होता है बच्चे, लेकिन उसकी गति और कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है।
2: मतलब छोटा लेकिन ताकतवर, मेरे जैसा।
3: बिल्कुल, माझगांव डॉक ने INS खोखरी और INS कुठार जैसे कार्वेट भी बनाए बेटा।
2: और दादाजी, ये मिसाइल बोट?
3: ये छोटे लेकिन बेहद तेज युद्धपोत होते हैं। इनका मुख्य हथियार मिसाइलें होती हैं बच्चे।
2: दादू, ये कितने घातक होते हैं?
3: इतने घातक कि दुश्मन को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता।
2: वाह।
3: INS विभूति, विपुल, नाशक और प्रबल जैसी मिसाइल बोट भी माझगांव डॉक ने बनाई है।
2: दादू, क्या ऐसी कोई घटना आपको याद है जिससे हमें भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा लग सके?
3: 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर साहसिक हमला किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम है?
2: ऑपरेशन ट्राइडेंट।
3: हाँ, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पूरी दुनिया को उस समय भारतीय नौसेना की क्षमता दिखाई थी।
2: क्या उस समय भी स्वदेशी जहाजों का महत्व था दादाजी?
3: हाँ बेटा, उस युद्ध ने भारत को ये समझा दिया कि समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बाद में युद्धपोत निर्माण को और अधिक गति दी गई।
2: दादू, मुझे सबसे ज्यादा पनडुब्बियों के बारे में जानना है आपसे। वो कैसी होती हैं, किस तरह से काम करती हैं?
3: पनडुब्बी समुद्र के भीतर चलने वाला युद्धपोत है। ये पानी की सतह के नीचे कई दिनों तक रह सकती है
2: और दिखाई भी नहीं देती।
3: हाँ, इसीलिए इसे समुद्र की अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है।
2: वाह दादाजी, वाह। दादू, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिक कैसे रहते होंगे?
3: बहुत अनुशासन के साथ, क्योंकि उसमें सीमित जगह होती है बच्चे। हर वस्तु का उपयोग सोच समझ कर किया जाता है। पनडुब्बी में दिन रात का अंतर भी महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए उन कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं बच्चे।
2: सचमुच दादाजी, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
3: इसीलिए तो पनडुब्बी निर्माण दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। बिटिया, आप जब भी तुम समुद्र में किसी बड़े जहाज को देखो तो केवल उसका आकार मत देखना, उसके पीछे हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, डिजाइनरों और श्रमिकों की मेहनत को भी देखना।
2: जी दादाजी, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगी। अच्छा ये बताइए कि माझगांव डॉक में काम करने वाले कितने मेहनती होते हैं?
3: बहुत मेहनती होते हैं बेटा, उनकी यही मेहनत और समर्पण राष्ट्र की समुद्री शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: दादू, माझगांव डॉक ने नीलगिरी, गोदावरी, दिल्ली, खुकरी और अनेक युद्धपोतों के माध्यम से भारतीय नौसेना को नई शक्ति प्रदान की है। ये भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की नई शुरुआत थी। आगे चलकर कई प्रसिद्ध युद्धपोत श्रेणियां विकसित हुईं। इसका मतलब है कि माझगांव डॉक का भारत को दुनिया के बड़े युद्धपोत निर्माताओं की श्रेणी में पहुंचाने में एक बड़ा और सराहनीय योगदान रहा होगा।
3: लेकिन बेटा, एक प्रश्न अभी भी बाकी है जो तुम पूछना भूल गई हो।
2: अब कौन सा प्रश्न है दादाजी?
3: वो ये कि आखिर इतना विशाल युद्धपोत बनता कैसे है? क्या इसे किसी कार की तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है?
2: सच में दादू, मैं आपसे ये वाला सवाल बस पूछने वाली थी कि एक युद्धपोत को किसी इमारत जितना बड़ा होता है, उसे आखिर बनाया कैसे जाता होगा?
3: लेकिन तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछ लिया। युद्धपोत बनाना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में गिना जाता है बच्चे।
2: इसका मतलब ये किसी एक इंजीनियर के बस की बात तो नहीं है दादाजी?
3: अरे नहीं बिटिया, एक युद्धपोत के निर्माण में हजारों लोग मिलकर काम करते हैं। नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, वेल्डर, टेक्नीशियंस, गुणवत्ता विशेषज्ञ और कई सारे वैज्ञानिक।
2: दादू, जब मैं इतने बड़े बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में आपसे सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या साधारण परिवार का कोई बच्चा भी भविष्य में ऐसे बड़े संस्थान का हिस्सा बन सकता है?
3: क्यों नहीं बिटिया, ये सभी लोग एक साधारण परिवार से ही आते हैं।
0: दरअसल माझगांव डॉक BEL, हाल DRDO, इसरो, इन सभी संस्थानों की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा ही तो हैं। यहाँ काम करने वाले ये अधिकांश वैज्ञानिक, इंजीनियर और अधिकारी कभी तुम्हारी तरह ही स्कूल में पढ़ने वाले आम बच्चे थे।
2: इसका मतलब कि मेहनत करके कोई भी यहाँ पहुँच सकता है?
0: बिल्कुल पहुँच सकता है। सफलता का रास्ता हमेशा मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा से होकर गुजरता है बेटा।
2: समझ गई दादाजी। अच्छा ये बताइए ना कि नेवल आर्किटेक्ट क्या होता है?
0: नेवल आर्किटेक्ट बेटा जैसे कोई वास्तुकार भवन का नक्शा बनाता है, वैसे ही नेवल आर्किटेक्ट जहाज का नक्शा बनाता है। वो तय करता है कि जहाज कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना वजन उठाएगा और समुद्र की ऊंची लहरों का सामना कैसे करेगा।
2: मतलब जहाज का जन्म सबसे पहले कागज पर होता है?
0: हाँ, लेकिन पहले कागज पर होता था, अब आजकल कंप्यूटर पर बेहद आसानी से कोई भी डिजाइनर मिनटों में बना जाता है।
2: सही कहा दादाजी आपने, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है।
0: CAD, CAM इसी से संबंधित है बिटिया। CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर की सहायता से किसी भी वस्तु का डिजाइन या नक्शा तैयार कर सकते हो। और वहीं पर CAM का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कंप्यूटर की सहायता से उस डिजाइन के अनुसार वस्तु का निर्माण कर सकते हो।
2: यानी दादाजी CAD और CAM में अंतर है। अच्छा इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना।
0: समझाता हूँ बच्चे। मान लो तुम एक घर बनाना चाहती हो, पहले उसका नक्शा बनाओगी, फिर उसी नक्शे के अनुसार निर्माण होगा। CAD कंप्यूटर पर नक्शा तैयार करता है और CAM उसी नक्शे के अनुसार मशीनों को निर्देश देता है, ऑर्डर देता है।
2: दादाजी इससे तो किसी भी निर्माण में गलती की संभावना बहुत कम हो जाती होगी।
0: हाँ बेटा, इसीलिए तो आज आधुनिक युद्धपोत अत्यंत सटीकता से बनाए जाते हैं।
2: और जब डिजाइन तैयार हो जाता है उसके बाद क्या होता है दादाजी?
0: फिर आती है स्टील की बारी। विशाल स्टील प्लेटों को विशेष मशीनों से काटा जाता है।
2: ये किस तरह की मशीन होती है?
0: माझगांव डॉक में CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन जैसी अत्याधुनिक मशीन है बेटा।
2: दादू CNC अंडर वाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन, ये तो कोई कमाल की मशीन लगती है।
0: हाँ बेटा, ये वाकई कमाल की मशीन है। CNC का अर्थ है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें कंप्यूटर मशीन को निर्देश देता है कि धातु या अन्य सामग्री पर कहां कट लगानी है, कितनी गहराई तक कट लगानी है और किस आकार में काटना है। यानी कमांड देने पर सब कुछ मशीन ही तय करती है।
2: मतलब मशीन इंसानों की कमांड पर काम नहीं करती बल्कि कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करती है।
0: हाँ बेटा, कंप्यूटर द्वारा दिए गए सटीक निर्देशों के अनुसार इस मशीन से कटाई और निर्माण का काम बेहद तेज, सटीक और गुणवत्ता पूर्वक होता है। माझगांव डॉक की ये प्लाज्मा कटिंग मशीन स्टील, एल्युमिनियम और कई अन्य तरह की धातुओं को काट सकती है।
2: लेकिन दादू जहाज तो गोलाकार और घुमावदार होता है, फिर एक सीधी प्लेट से ये आकार कैसे बनता होगा?
0: बेटा यहाँ काम आती है प्लेट बेंडिंग मशीन। ये भारी स्टील प्लेटों को मोड़कर जहाज के ढांचे का आकार कर देती है।
2: यानी जैसे कागज मोड़ते हैं?
0: हाँ, सिद्धांत लगभग वही है, बस यहाँ कागज की जगह कई टन वजनी स्टील प्लेट होती है।
2: और फिर इन टुकड़ों को कैसे जोड़ते होंगे?
0: वेल्डिंग के द्वारा।
2: वेल्डिंग? हाँ, ये काम तो मैंने कई बार होते देखा है दादाजी, हमारे लोहा मार्केट की कई लोहा दुकानों पर। लेकिन दादू जहाज को जोड़ने के लिए तो ये बहुत ही सावधानी से किया जाता होगा।
0: बहुत सावधानी से किया जाता है बेटा। यदि वेल्डिंग कमजोर हो तो पूरा जहाज खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए माझगांव डॉक में सैकड़ों अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीनें काम करती हैं।
2: दादू ये तो मुझे समझ में आ गया, अब आप मुझे स्टील्थ युद्धपोत के बारे में बताइए।
0: स्टील्थ का अर्थ है बेटा दुश्मन की नजर से यथासंभव छिपा रहना।
2: दादू इतना बड़ा जहाज भला छिपाया कैसे जा सकता है?
0: पूरी तरह नहीं छिपता, लेकिन उसकी डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि रडार पर उसका संकेत बहुत कम दिखाई दे।
2: जैसे कोई जादू?
0: ये जादू नहीं है बेटा, विज्ञान है। रुचि बेटा तुमको पता है भारत का पहला स्वदेशी स्टिल्ट फ्रिगेट था INS शिवालिक,
3: इसका निर्माण माझगांव डॉक में हुआ था।
2: दादू, ये हमारी विशेष उपलब्धि थी।
3: बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि दुनिया के केवल कुछ ही देश ऐसी तकनीक विकसित कर पाए थे जो इसके निर्माण में उपयोग की गई थी।
2: दादू, क्या केवल इंजीनियर ही जहाज बनाते हैं?
3: नहीं, युद्धपोत निर्माण एक टीम वर्क है। इसमें नेवल आर्किटेक्ट, मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर, इन सब के विशेषज्ञ लगे होते हैं बेटा। फिर पाइपिंग विशेषज्ञ, गुणवत्ता निरीक्षक, डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सबसे बेहतरीन टेक्नीशियंस, ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं।
2: मतलब हर व्यक्ति का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3: हाँ, एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है और एक पूरे जहाज को डुबा सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा।
2: दादू, यदि कोई छात्र ऐसे जहाज बनाने में अपना योगदान देना चाहे तो उसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए?
3: उसे पढ़ना चाहिए गणित, भौतिकी और विज्ञान की मजबूत नींव बनाना चाहिए। फिर नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषय चुने जा सकते हैं।
2: दादू, क्या लड़कियां भी इस क्षेत्र में जा सकती हैं?
3: क्यों नहीं जा सकती, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती बेटा।
2: सो तो है।
3: क्यों नहीं बेटा, आज लड़कियां कहां नहीं जा सकती। भारत की अनेक महिला इंजीनियर युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: दादू, क्या आत्मनिर्भर भारत में माझगांव डॉक की बड़ी भूमिका है?
3: बहुत बड़ी। जब हम अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां स्वयं बनाते हैं तो विदेशों पर निर्भरता कम होती है, देश का धन बचता है, नई तकनीक विकसित होती है और हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है।
2: दादू, रोजगार तो समझ में आता है मुझे, लेकिन एक डॉक यार्ड देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता होगा भला?
3: बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हो। देखो बेटा, एक युद्धपोत केवल लोहे की चादरों से नहीं बनता, उसके लिए इस्पात, विद्युत उपकरण, केबल, रडार, इंजन, कंप्यूटर प्रणालियां और हजारों छोटे बड़े पुर्जों की आवश्यकता होती है।
2: मतलब एक जहाज के निर्माण से बहुत सी दूसरी कंपनियां भी जुड़ जाती होंगी।
3: बिल्कुल, जब माझगांव डॉक किसी युद्धपोत का निर्माण करता है तो देश भर की अनेक उद्योग इकाइयों, आपूर्तिकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों को भी काम मिलता है।
2: यानी लाभ केवल डॉक यार्ड को नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र को होता होगा।
3: हाँ, सही कहा बेटा, इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, नए कौशल विकसित होते हैं और देश के भीतर ही तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ती जाती है।
2: और यदि वही युद्धपोत विदेशों से खरीदा जाए तो?
3: तब बेटा अधिकांश धन दूसरे देश की कंपनियों और उद्योगों के पास चला जाता है। लेकिन जब निर्माण भारत में होता है तो वही धन भारतीय उद्योगों, भारतीय कामगारों और भारतीय वैज्ञानिकों के विकास में योगदान देता है।
2: यानी एक युद्धपोत का निर्माण केवल सुरक्षा का विषय नहीं है दादाजी, बल्कि आर्थिक विकास का भी विषय है।
3: हाँ बेटा, यही कारण है कि माझगांव डॉक जैसे संस्थान देश की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: अब समझ में आया आपकी रुचि को कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल अपने लिए कोई निर्माण करना नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए अवसर पैदा करना भी है।
3: शाबाश, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला बच्चे।
2: दादू, युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता, ये भी मुझे समझ में आया है। उसमें वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और देशभक्ति की भावना भी जुड़ी होती है।
3: बिल्कुल बिटिया, और यही कारण है कि माझगांव डॉक को राष्ट्र का पोत निर्माता कहा जाता है।
2: अच्छा दादू, क्या ऐसी कोई कहानी आप मुझे सुनाना चाहेंगे जो विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सके?
3: हाँ बेटा, कई साल पहले एक युवा इंजीनियर ने शिपयार्ड में प्रशिक्षण शुरू किया। वो एक छोटे से कस्बे से आया था। शुरुआत में उसे विशाल मशीनों और बड़े जहाजों को देखकर डर लगता था। उसे लगता था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता, कुछ ना कुछ नया करता रहता। वरिष्ठ इंजीनियरों से मार्गदर्शन लिया और कुछ वर्षों बाद वही युवक एक महत्वपूर्ण युद्धपोत परियोजना की टीम का हिस्सा बन गया।
2: मतलब दादू, आत्मविश्वास और मेहनत बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल
2: दादू, सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना।
3: अब समझी बिटिया रानी, मैं बार बार क्यों कहता हूँ। अच्छा चलो अब वापस चलें, शाम होने वाली है। भाई तुम्हारे मम्मी पापा रिसोर्ट में हमारा रास्ता देख रहे होंगे। और बेटा अभी तो हमें पूरा का पूरा गोवा घूमना है।
2: समझ रही हूँ मैं आपको, रिसोर्ट में क्यों ले जाना चाहते हैं आप, आपकी चाय का वक्त भी है। वैसे दादू मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अगली बार आप किस संस्थान के बारे में बताएंगे।
3: तुम विषय चुनो और उसके बारे में बताने का काम मेरा है रुचि बेटा।
2: ठीक है दादाजी, चलिए चलते हैं।
3: चलो बेटा।
1: श्रोताओं, माझगांव डॉग की कहानी हमें बताती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और श्रमिकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। समुद्र की लहरों पर तैरते युद्धपोत केवल जहाज नहीं होते, वे भारत की शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के प्रतीक होते हैं। इसी संदेश के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
3: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। ये वही अनूठा कार्यक्रम है जिसमें हम बातचीत करते हैं स्वतंत्रता के उन परवानों के विषय में जो देश हित में लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनकी याद में समर्पित करते हैं जो देशभक्ति के महान जज्बे में आकंठ डूब देश के ही लिए हंसते हुए मौत के मुंह में समा गए। ये कार्यक्रम उन्हीं महान देश प्रेमियों के नाम है।
1: जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। याद आती हैं ये पंक्तियाँ जब युवा खून की बात निकलती है, और बात निकलेगी तो फिर तो बड़ी दूर तलक जाएगी। यही हाल होता है जवानी के जोश का। युवा शक्ति होती ही इतनी तीक्ष्ण है, पल में आसमान छू ले, पल भर में जमीन पर आ जाए। फिर लड़कपन में एकदम से ये समझ में भी नहीं आता कि कई काम गंभीर से होते हैं, न कि तुरंत प्रतिक्रिया दे देने से।
2: एक बात बड़ी सही ये भी लगती है कि अगर युवावस्था या कैशौर्य का प्रतिक्रियावाद न होता तो गंभीर की परवाह भी किसे होती है। कि प्रकृति में सभी कुछ एक संतुलन में होता है, इसी तरह युवावस्था के जोश और विवेकहीनता के बदले प्रकृति में बड़प्पन की गंभीरता और मंथरता है। पर इतिहास, हम इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि
1: सही मतलब ढूंढ रही हो तुम तारीख। हम आज कुछ युवा क्रांतिकारियों की ही बात करेंगे, ऐसे युवा जिन्होंने अपनी समझ और सोच के बल पर ही वो काम कर डाले जो बड़े बड़े न कर पाते। इनकी उम्र में खून का जो उबाल रहता है शायद यही इनसे ये सब करवाता होगा।
2: अरे रहने दो, तुम और मैं तो समय के परे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम युवाओं की उम्र को ही सारा दोष दे लोगे। केवल जवानी के जोश से नहीं इतिहास, ये तो कर्म के महान सिद्धांत का भी फल है कि ये क्रांतिकारी छोटी आयु में भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं।
1: हाँ हाँ, मैंने कहा मना किया। खैर तो चलो अब हम श्रोताओं को बता ही दें कि आखिर ये बातें हो किसकी रही है, ठीक है?
2: हाँ क्यों नहीं, पर पहले बारी है इस देशभक्ति के गीत की। आओ सुने ये खूबसूरत देशभक्ति का तराना और डूब जाए मातृभूमि के लिए समर्पित मधुर संगीत में।

0: एक प्रचंड अग्नि जैसे रुद्र का ही रूप हो, बढ़ चले हैं काल जैसे खुद का एक स्वरूप हो, दानवों का हो दमन और सच का सब अनंत, देश के लिए ही जन्मे देश हित ही अंत हो।
1: अरे वाह, कितने सुंदर तरीके से सब कह दिया, देश हित में अपने अंत का इजहार, वाह।
0: अब श्रोताओं को अधिक इंतजार न करवाओ, जल्दी से बता भी दो कि हम किन की बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में।
1: हाँ हाँ जरूर, तो श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं उजागर सिंह नाम की नवयुवक की। ये अमृतसर के रहने वाले थे और वहां के कॉलेज में पढ़ते थे। वहां के विद्यार्थियों को ये शक था कि उनके प्राचार्य महोदय अंग्रेजों से मिले हुए हैं। पुलिस से मिले होने के कारण ही वे जानबूझकर उन शिष्यों को गिरफ्तार करवाते हैं जो जरा क्रांतिकारी स्वभाव के हैं।
0: शक का बीज एक बार पड़ जाए तो उसे बड़ा होकर पेड़ बनने में वक्त नहीं लगता, भले ही वो बीज गलत ही क्यों ना पड़ा हो। फिर ये लोग तो क्रांतिकारी ठहरे, वो भी युवा क्रांतिकारी जिनके रक्त में वैसे ही बहुत गर्मी रहती है। फिर संदेह गलत भी तो नहीं था। आए दिन ही पुलिस महाविद्यालय से छात्रों को गिरफ्तार करके ले जाती रहती। रोज ही कुछ न कुछ इस तरह का कार्यक्रम चलेगा तो संदेह तो प्राचार्य पर आना ही है।
1: इसी संदेह के चलते इन्होंने प्राचार्य को दंडित करने की ठानी। इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए प्रताप सिंह ने बीड़ा उठा लिया। उन्हें मालूम पड़ गया था कि कॉलेज में कोई उत्सव होने को है, तो उन्होंने अपनी योजना को उसी दिन निभाने का मन बना लिया।
0: रात्रि में जब कॉलेज का उत्सव चल रहा था तो चुपके से प्रताप सिंह अपनी जेब में एक बम छुपाए प्रांगण में दाखिल हो गए। जद्दोजहद के बाद प्रिंसिपल की कुर्सी तक भी पहुंच गए। उसी वक्त उनका साथी उजागर सिंह बिजली गुल कर देने के लिए नियुक्त था। नियत समय पर उजागर सिंह ने बिजली का स्विच बंद कर दिया और पूरा प्रांगण घुप अंधेरे में डूब गया।
1: मौके का फायदा उठाकर प्रताप सिंह ने बम का पिन खींच प्राचार्य पर फेंकना चाहा, पर कुछ विलंब हुआ।
0: पर हुआ कुछ और ही, क्या हुआ कैसे हुआ इस बारे में हम बात करेंगे कुछ देर के बाद। फिलहाल सुनिए ये गीत जो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है।

0: मौके का फायदा उठाकर प्रताप सिंह ने बम का पिन खींच प्राचार्य पर फेंकना चाहा, पर कुछ विलंब हुआ और दुर्भाग्य से वो बम प्रताप सिंह के हाथों में ही फट गया।
1: विस्फोट की आवाज से उजागर सिंह प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि बम निशाने पर यानी प्रिंसिपल साहब पर फेंक दिया गया है और उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया। इस बात को समझकर उन्होंने बत्ती पुनः चालू कर दी और प्रांगण एक बार फिर रोशनी में नहा गया।
0: पंडाल में रोशनी आने के बाद सभी ओर अफरा तफरी मच गई। देखने पर मालूम पड़ा कि खून के तालाब के बीच अचेत अवस्था में प्रताप सिंह पड़ा है। थोड़ी देर मौत से लड़ने के बाद वहीं पंडाल में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए।
1: मुख्य स्विच के पास तैनात उजागर सिंह सकते में खड़ा था। धमाके के बाद की सारी परिस्थिति और फिर अपने साथी प्रताप सिंह की इस हालत को देखकर वो बहुत गहरे सदमे में आ गया था। अपनी जगह से हिला तक नहीं, जबकि चारों ओर सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और पंडाल लगभग खाली हो गया था। अपने साथी की इस हालत ने उसे सुन्न कर दिया था।
0: मुख्य स्विच के पास उजागर सिंह को देख पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला समझ में आते देर न लगी और उजागर सिंह पर हत्या का षड्यंत्र करने के आरोप में मुकदमा चला।
1: मुकदमे के फलस्वरूप उजागर सिंह को फांसी की सजा मिली। एक गद्दार को सजा देने की योजना में प्रताप सिंह ने अपनी जान दे दी, साथ ही उसके साथी उजागर सिंह को भी फांसी के तख्ते पर उसका साथ देने के दोष में झूल जाना पड़ा। दोनों साथी नसीब और अपनी उम्र के जोश के तूफान में खो गए हमेशा हमेशा के लिए।

0: विवेक आयु की परिपक्वता के साथ ही आता है। पर बताओ, अगर इन सब घटनाओं में विवेक का इस्तेमाल किया गया होता तो क्या हमारे तुम्हारे पास कहने के लिए इतना कुछ होता तारीख?
1: मैं तो बस यही कहूंगी इतिहास, कहने को बहुत हुए अफसाने, यूं ना हुआ कि कुछ बदहवास हो, न हो जिंदगी में कुछ पचकाना सा, तो क्या फिर एहसास हो। मर जाएंगे हम भी तुम्हारी ही तरह एक दिन यारों, न हो कोई परवाह नहीं, और हो तो हमारी मौत भी खास हो।
0: वाह वाह, क्या बात है। और इसी के साथ अब हमारे चलने का समय हो गया है। मिलते हैं आजाद हिंद के अगले कार्यक्रम में। तब तक आपके लिए पेश है ये देशभक्ति गीत।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व पर रेडियो रिपोर्ट।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ मैं हूँ फराज।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां 29 जुलाई की शाम गुरु पूर्णिमा पर्व में दो प्रस्तुतियां हुई। पहले शास्त्रीय गायन हुआ, कलाकार थे सिद्धार्थ बेलमन्यू और साथी।

0: और गुरु पूर्णिमा पर्व की दूसरी प्रस्तुति रही कथक की। कलाकार थीं डॉक्टर निवेदिता पंड्या और साथी।
1: यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन पर्व पर मुझे प्रस्तुति के लिए यह पवित्र मंच प्रदान किया गया। मैं अपनी शिष्याओं के साथ अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके समक्ष राम शबरी प्रसाद।

आएंगे रघुवीर यहाँ पर, बलकल भेष धराए, सिर पर होगी जटा, हाथ में भारी धनुष उठाए, मुख पर होगा तेज मगर आंखों में सहज उदासी, रक्षक पितु सम लगेंगे तुझको और ममता फिर मासी, चंदन का एक तिलक भाल पर होगा कुछ सिमटा सा, अधरों पर मुस्कानत होगी पर मन कुछ बिखरा सा, पांव खड़ाऊ नहीं मिलेंगे नंगे पग शत दल से, ऐश्वर्य कोई ना दिखेंगे बिल्कुल सहज सरल से, श्वेत बिंदु श्यामल मुखड़ी पर और लटा एक बिखरी, आएंगे वे यही पूछते कहाँ है माता शबरी, कहाँ है माता शबरी, कहाँ है माता शबरी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

पिछले कार्यक्रम में नटखट विवेकानंद के बाल्यावस्था की बातें जानकर आपको भी हंसी आ गई होगी। बचपन से ही वे किसी बात को बिना सही तरह से समझे नहीं मानते थे। प्रश्न पे प्रश्न कर वे अगर जवाब से संतुष्ट होते तो ही बात को मानते थे। छुआछूत जातिगत भेदभाव से वे घृणा करते थे। शरारती तो वे थे, पर मनपसंद की बातें हो तो घंटों ध्यान लगाकर सुनते या करते थे। आइए उनके बचपन की कुछ और बातें जानें।

0: एक पेशावरी मुस्लिम नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ बाबू के मुवक्किल थे। वे नरेंद्र के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। उनके आने का समाचार पाते ही नरेंद्र उनके पास आ जाता और उनकी गोदी में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़े और ऊंट की सवारी की भ्रमण कहानियां एकाग्र चित्त से सुनता।
1: चाचा जी, वहाँ लोग ऊंट की सवारी क्यों करते हैं? वहाँ बग्गियाँ नहीं चलती क्या?
2: ओए नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ओए वहाँ तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान, ओए सड़के ज्यादा है नहीं, सो लोग ऊंट पर ही एक जगह से दूसरी जगह को जाती है।
1: हाँ, पर ऊंट तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना?
2: ओ इसीलिए तो मेरा बच्चा, वो वहाँ पहुँचने में बहुत महीना लग जाते
1: हैं। फिर वो खाते पीते क्या हैं? लंबे सफर से थक जाते होंगे।
2: ओए होए, ओए वहाँ बीच बीच में सराय बना होती, वहीं पर हम रुकते हैं, आराम करता है, ओए फिर चलना शुरू करते हैं, और सफर भी रात को ठंडा ठंडा में करते हैं, दिन में बहुत तेज गर्मी होते हैं और तेज धूप होते हैं।
1: पर बड़ा मजा आता होगा ना चाचा जी? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना? मैं भी ऊंट की सवारी करूंगा।
2: ओए हमारा बच्चा, ओए तुम अभी बहुत छोटा है, बस दो उंगल बड़ा होने को मांगते है, फिर हम तुमको जरूर ले जाएगी।
0: आग्रह की अधिकता से वो कभी कभी दूर से ही बोलता।
1: चाचा जी देखिए, मैं रात भर में दो उंगल बढ़ गया हूँ, अब आप मुझे ले चलिए।
2: ओए देखो तो, ओए हमारा बच्चा वाकई में बहुत बड़ा हो गई, अरे तुम तो दो उंगल ऊंची हो गई, ओए अब तो ले जाना ही पड़ेगी, ले जाना ही पड़ेगी। ओए हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, ओए तब तक ये मिठाई खा लो बच्चा, ओए तुम्हारे ही वास्ते लाए है, तुमको पसंद है ना?
1: लाइए लाइए, कहाँ है, मैं दोनों ही खाऊंगा।
0: नरेन बड़े चाव से चाचा की गोद में बैठकर मिठाई खाते और वहां बैठे दूसरे लोग इस अनाचार को देखते और सिहर जाते। परिवार में भी इस बात को लेकर बवंडर मचता, पर विश्वनाथ बाबू कट्टरपंथी ना थे, वे इस बात को हंसकर टाल देते।
3: विश्वनाथ बाबू के दफ्तर में भिन्न भिन्न समाज के मुवक्किल आते थे, उनके लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी। एक दिन कमरा खाली देखकर नरेंद्र वहां आया और हुक्के की नली में मुंह लगाकर कश खींचने लगा। विश्वनाथ ने मुवक्किलों के साथ कमरे में दाखिल होकर नरेंद्र को हुक्का पीते देख लिया।
4: बिले, ये क्या हो रहा है?
1: बाबा, सब कहते हैं दूसरी जाति के लिए रखा हुआ हुक्का नहीं पीना चाहिए। मैं तो देख रहा था ऐसा करने पर क्या होता है, मैं तो वैसा ही हूँ, ये छत टूट तो नहीं पड़ी। मैं तो परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो क्या होगा।
5: नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है।
1: क्यों, क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का क्यों नहीं खाता? बाबा कहिए ना, क्या होता है?
0: विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए उसे प्यार से कहा,
4: बिले तू बड़ा दुष्ट हो गया है रे।
3: नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति को तोड़कर दूसरे ही दिन उसके स्थान पर एक शिव मूर्ति की स्थापना कर दी। माता का अनुकरण कर वे प्रतिदिन शिव पूजा करते थे। कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिव मूर्ति को घेरकर ध्यानस्थ होकर बैठे रहते। यह खेल नरेंद्र को बहुत भाता था। उस समय उनके मन में क्या चलता था वही जाने। एक दिन ध्यान से उठकर उदास होकर माँ के पास गया और कहा,
1: माँ मुझे शिवजी के दर्शन क्यों नहीं होते? सचमुच क्या मैं दुष्ट हूँ? इसीलिए शिवजी ने मुझे अपने पास से हटा दिया है।
6: ऐसा किसने कह दिया रे तुझे?
1: मैं अगर साधु हो जाऊं तो क्या शिवजी मुझे अपने पास लौट आने देंगे?
6: हाँ हाँ क्यों नहीं।
3: यह बात परिवार की महिलाएं सुन रही थीं, वे अवाक रह गईं।
7: बहू ये तुमने क्या कह दिया है बेटे से? एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी संन्यास लेने को कह रही हो? कैसी माँ हो तुम?
3: यह बात अनजाने में कह जाने के बाद माँ का हृदय किसी अनजान डर से कांप उठा। उसी पर किसी के टोकने पर वह और विचलित हो उठी। अपने दादा की तरह अगर नरेंद्र भी संसार छोड़कर चला गया तो? पर मन ही मन शिव का ध्यान लगाकर उन्होंने इस डर को मन से हटा दिया और कहा,
6: देखो भाई भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना, मैं उसमें बाधा देने वाली कौन हूँ?
1: तब तो मैं सन्यासी ही बनूंगा।
0: बचपन से ही लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते उन ग्रंथों का बहुत सा भाग उन्हें याद हो गया था। वे कभी कभी सुमधुर स्वर में उन्हें सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। कभी कभी भिक्षु गायकों से सीखे हुए राधा कृष्ण या सीताराम के गीतों को गाकर घर वालों और अपने पिता के मित्रों को आनंद प्रदान करते। लाड़ प्यार से पले नरेंद्र स्वतंत्रता प्रिय होने पर भी उनके बाल चरित्र में अपने माता पिता के नाना प्रकार के सद्गुणों का समावेश हो गया था। घर में नीति शास्त्र एवं लोकाचार का कठिन नियम ना होने पर उनका चरित्र अपनी स्वाभाविक मधुरता के साथ स्वतः ही विकसित हो रहा था।
3: श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के अलौकिक कार्यों की कथाएं सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। माता से उन्होंने सुना कि हनुमान जी अमर हैं, वे अभी भी जीवित हैं। तब से उन्हें देखने के लिए नरेंद्र के प्राण छटपटाने लगे। एक दिन वे माता के साथ कथा सुनने गए। कथाकार पंडित जी नाना प्रकार से हास्य रस मिलाकर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कथा खत्म होने पर नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा,
1: पंडित जी आपने कहा हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में ही रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनके दर्शन पा सकूंगा?
8: हाँ बेटा, केले के बगीचे में ढूंढने पर तुम उन्हें पा सकते हो।
3: फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर के पास वाले केले के बगीचे में केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया पर हनुमान जी नहीं आए। अंत में लाचार होकर शाम ढलते घर वापस आए। माँ को सारी घटना सुनाकर इसका कारण पूछा। बालक के विश्वास पर चोट न करना ही माता ने उचित समझा और बेटे को प्यार से चूम कर कहा,
6: ओले बेटा बेटा तुम दुखी मत हो, शायद देखो शायद आज हनुमान जी वो राम जी के किसी काम से कहीं दूसरी जगह पर चले गए होंगे, हाँ इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिले। किसी और दिन मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। ओ बेटा मेरा।
0: बालक शांत हुआ। उसने फिर कभी हनुमान जी से मिलने की कोशिश की या नहीं ये तो ज्ञात नहीं, पर हनुमान जी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव उनके मन से कभी लुप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक युवक को विवेकानंद कहा करते थे।

0: महावीर के चरित्र को आदर्श बनाओ। हर घर में महावीर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इस दुर्बल जाति के सम्मुख उन्हीं का आदर्श रखना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के लोदों से। मैं चाहता हूं हर युवा महावीर जैसा ताकतवर हो।
1: बोध या विचार शक्ति के कुछ और बढ़ने के बाद उनमें साधु या भिखारियों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण दिखाई पड़ा। उनके आने पर वे उनके निकट दौड़ जाते, उन्हें कोई रोक नहीं पाता और जो भी मिलता उन लोगों को दे देते थे। एक दिन नई धोती पहनकर साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज हुई।
2: नारायण हरि, नारायण हरि, अरे कोई है?
3: आओ बाबा, अंदर आओ।
2: बेटा, कुछ पहनने ओढ़ने का मिल जाए तो।
3: हाँ हाँ, लो ना, मेरी यह धोती बिल्कुल नई है, आज ही तो पहना है, ये ले लो।
2: तुम्हारी ये छोटी सी धोती मैं कैसे पहनूंगा बेटा? पर तुम्हारा दिया दान मेरे सर आंखों पर, लाओ मैं इसे अपने माथे पर लपेट लूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
4: साधुओं के आने पर नरेन को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर खिड़की से वे उन्हें बुलाकर जो कुछ मिलता दे देते थे और घर के लोगों को हरा दिया समझकर खुश हो जाते।
1: दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी और स्वर्णमयी को वे हमेशा छेड़ा करते। दोनों हैरान परेशान होकर नरेन को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती, पर पकड़ न पाती। उन्हें और भी तंग करने के लिए नरेन किसी गंदे नाले में उतर जाता या किसी कूड़े के ढेर पर चढ़ जाता। बहने उनका पीछा करती।
5: रुक जा बिले, इधर आ, आज तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी। मेरे कपड़े में अपना गंदा हाथ क्यों पोछा, बोल।
6: ओह, मेरी किताब तूने ही छुपाई है, निकाल दे जल्दी, नहीं तो मैं माँ को कह दूंगी।
5: एक बार पकड़ लूं तो तेरी खैर नहीं बिले। स्वर्ण, तू उधर से जा, उधर जाकर पकड़, मैं इधर से इसका रास्ता रोकती हूँ।
3: आओ आओ ना, आओ पकड़ो मुझे, इस गंदी नाली में उतरो, तब तो पकड़ पाओगी मुझे। अच्छा चलो, मैं ही निकल आता हूँ, पर मेरे कपड़े और पैर गंदे हो गए हैं, मुझे छुओगी क्या?
6: हाँ हाँ पकड़ूंगी, रुक, बिल्कुल पकड़ूंगी।
3: पकड़ोगी तो ये लो, मैं कूड़े के ढेर पे चढ़ गया, अब आओ यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
7: माँ देखो ना, परेशान कर रहा है माँ, किताब माँ देखो ना माँ।
1: दोनों बहनें हार कर रोते रोते अंदर चली जाती हैं।
4: दत्त भवन में अनेक पालतू जानवर थे। नरेन को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। विलायती सफेद चूहा, बंदर, बकरा, कबूतर, काकातुआ और अनेक तरह तरह की चिड़िया थीं। घर की गाय के साथ नरेन की पक्की दोस्ती थी। उसके गले में माला पहनाकर, माथे में सिंदूर लगाकर, शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और वो गाय भी उनके शरीर पर मुंह रगड़कर प्यार जताती थी।
1: सन्यासी होने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुआ वस्त्र को कॉपीन की भांति लपेटकर वे घूम रहे थे। उसे देखकर माँ ने पूछा,
5: क्यों रे बिले,
8: है? ये क्या कर रहा है?
3: माँ, मैं शिव हो गया हूँ। अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ।
8: अरे क्यों भला?
3: मैंने सुना है कि ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों के बालों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। पर मैं तो कल भी ध्यान करने बैठा था, मेरे बाल तो बड़े ही नहीं, ना ही जमीन में घुसे। क्यों माँ?
8: बेटा, एक आध घंटा या एक दो दिन में जटाएं नहीं बढ़ती, कई साल लग जाते हैं।

0: नरेंद्रनाथ के पास खेलों की कमी ना थी। उनका एक प्रिय खेल था राजा बनने का खेल। अपने संगी साथियों के साथ पूजा घर जाने वाली ऊंची सीढ़ी पर यह खेल चलता था।
1: मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठूंगा। तू मंत्री है, इस पर बैठ। तू तो कोतवाल है, वहाँ बैठ। सेनापति, तुम इधर आकर बैठो। और तुम सब सभासद हो, नीचे बैठो। अब दरबार शुरू होगा, सब लोग मुझे प्रणाम करो।
2: प्रणाम महाराज।
1: मंत्री, राज्य का क्या समाचार है?
3: प्रजागण परम सुखी है महाराज।
1: सेनापति, कहो क्या कहना है?
4: महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, आए दिन हमला करके प्रजा को लूट लेता है।
1: उस दुष्ट आत्मा का सर काट दो।
0: तुरंत कुछ बच्चे डाकू को पकड़ने दौड़ते और वो सदर दरवाजे से भागकर जान बचाता। राजा सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते।
3: वोरा, पकड़ो उसे, पकड़ो।
5: इसी तरह खेलते खिलाते नरेंद्र बड़ा हो रहा था। साथियों ने सर्वसम्मति से उसे नेता मान लिया था। जहां भी जाते, जो भी करते, सब बच्चे नरेंद्र का ही कहा मानते। उम्र में बड़े बच्चे भी उसी को नेता मानते थे।
0: नरेंद्र बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। उसके एक सहपाठी पड़ोसी के घर चंपा का एक पेड़ था। अक्सर नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़कर डाली में पांव फंसाकर और सिर नीचे लटकाकर झूलता था। एक दिन उस घर के मालिक दादाजी राम रतन बसु ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा चंपा की नरम डाली टूट जाने पर नरेन को चोट लग जाएगी। वो बाहर आकर नरेन को समझाते हुए कहते हैं,
6: बेटा नरेन, इस तरह चंपा की डाली पर नहीं झूलते, नीचे आ जाओ, मत चढ़ो पेड़ पर।
1: क्यों क्यों, इस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है?
6: नीचे तो उतरो, बतलाता हूँ।
1: ये लीजिए, आ गया, अब बताइए।
6: उस पेड़ पर एक ब्रह्मराक्षस रहता है, भयानक गुस्सेल है, पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़ देता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: दादाजी के अंदर जाते ही नरेन फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा।
7: नरेन, सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? ब्रह्म राक्षस गर्दन मरोड़ देगा।
1: अरे आने दे ब्रह्म राक्षस को, मैं उसके शरीर पर थूक कर उसे वशीभूत कर दूंगा।
7: नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
1: तू भी जैसे गधा है। कोई आकर एक बात कहके डरा गया और तू उसी पर विश्वास करने लगा।
7: तो तू नहीं मानता ब्रह्म राक्षस को?
1: तेरे दादाजी की बात अगर सही होती तो वो बहुत दिनों पहले ही मेरी गर्दन मरोड़ देता। मैं तो अक्सर झूलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा वो। जा जा जा, डरपोक कहेगा।
0: बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्ध प्रगतिशील मन। अतः उनका मानसिक विकास और भी तेजी से और समृद्ध हुआ था। रामायण और महाभारत की कहानी, देवी देवताओं की कथा एवं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन में लाल प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनकी सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा चित्र खिंच गई थी। इसलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं सुंदर भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे।
5: रामायण पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि एक बार घर के पास रामायण गायकों के एक दल द्वारा एक पद विशेष को गाते समय कई पंक्तियां भूल जाने से अशुद्ध रूप से गाने पर नरेंद्र ने पदों को शुद्ध रूप से गाकर सभी लोगों से प्रशंसा पाई थी। गायकों ने भी अपनी भूल मानकर श्रोताओं से माफी मांगी थी और नरेंद्र को मिली थी ढेर सारी मिठाइयां।
0: उनके महाभारत पाठ के संबंध में भी एक मर्म स्पर्शी घटना जानी जा सकती है। सन 1869 में दत्तग्रह के तत्कालीन मुखिया नरेंद्र नाथ के छोटे दादाजी काली प्रसाद दत्त मृत्युशैया पर पड़े थे। आखिरी समय में उनमें एक अंतिम इच्छा जगी कि मृत्यु पूर्व परिवार के बच्चों में से किसी के मुख से महाभारत का पाठ सुनेंगे। लज्जावश कोई भी बालक या बालिका पाठ करने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने सबसे छोटे नरेंद्र से पाठ करने के लिए कहा। वे तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में विशाल काय महाभारत को समाहित किए हुए दादाजी के कमरे में आए और अपनी मधुर वाणी में महाभारत के कई पन्ने पढ़कर सुना दिए।
5: केवल अंतिम घड़ी में ही नहीं, उसके पहले भी दादाजी ने नरेंद्र के मुख से कई दिनों तक संपूर्ण रामायण का पाठ सुना था। पाठ के समय माँ भुवनेश्वरी देवी भी उपस्थित रहा करती थी।
0: परलोक की ओर आंखें पसारे हुए वृद्ध ने अपने इस कुल तिलक के महाभारत पाठ से उल्लासित होकर आशीर्वाद दिया।
8: बेटा, समय आने पर तुम निश्चय ही बड़े आदमी बनोगे। हाँ।
9: मेरे बेटे को यही आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सच के पथ पर चले और मानवता की सेवा करे।
8: तुम्हारी जैसी माँ पाई है इस बालक ने, इसे कौन रोक सकेगा। अवश्य ही ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब आपको बता दें कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनेगा कार्यक्रम जीवन सौरभ, अक्षय निधि। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:10 से। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से। वतन का राग ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8 बजे से। 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आमने सामने। सुबह 9 बजे वागर्थ में सुनिएगा मुशायरा, विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा रचना पाठ 9:30 से। दस बजे आप सुनेंगे परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट में सुनिएगा रफीनामा। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा आपको सुनवाएंगे 10:30 से। हबीब तनवीर पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी सुनिएगा दिन में 11 बजे से। और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद आप सुन सकेंगे 11:30 से। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद।